0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बुधवार 24 जून रेडियो मॉरिशस पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6 बज रहे हैं। समय हुआ है समाचार का।
3: आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज रजनी जी से। नमस्कार।
4: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को सागर द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। बरतानी प्रधानमंत्री सखर स्टामर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की बात की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी। लेखक एवं पुराने विदेश मंत्री रोकलो डिलेस्था के अनुसार मॉरिशस को अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के वास्ते सखर स्टामर के उत्तराधिकारी से उम्मीद। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडाप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान। 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिक

0: प्राथमिकता वाली स्थलों पर किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक नेशनल शोरलाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी होगा, एक वास्तविक गेम चेंजर। विदेश समाचारों में जर्मनी में ट्रेन सेवाएं ठप, रेडियो सिस्टम में खराबी, पूरे देश में रेल यातायात प्रभावित। भारत में मानसून में की धमाकेदार एंट्री हुई, 13 दिनों का लंबा इंतजार खत्म, आज दिल्ली यूपी में भारी बारिश आंधी का अलर्ट। और फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे इस प्रकार, क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया, पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से, जबकि इंग्लैंड घाना का मैच ड्रॉ रहा 0-0। बता दें कि वर्ल्ड कप जगत में पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोल स्कोरर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 41 साल की उम्र में रचा इतिहास, 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनी हैं। संक्षिप्त समाचार यही पर समाप्त हुआ, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में मौसम का हाल।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मस्करीन्स के दक्षिण में एक काफ़ी ज़ोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी, मुख्य रूप से हवाई ढलानों पर और ऊंचाइयों पर। दोपहर बाद में सेंट्रल प्लाटू पर बारिश होती रहेगी, अन्यत्र भी आंशिक रूप से वर्षा होती रहेगी। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 3.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में तथा लगून में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:39 पर सूर्यास्त है, जबकि 7:00 सूर्योदय। धन्यवाद, नमस्कार।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: की बेला ताजगी भरी शुरुआत,
4: एक नई शुरुआत एक नए दिन के साथ। यहाँ पर हम भी आ गए हैं आपका साथ देने के लिए रेडियो मॉरिशस पर। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। आज है बुधवार 24 जून, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 6:05 होने को हैं। भोर की बेला इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं और आशा करते हैं ये नया दिन आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करे, सकारात्मक रूप से आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहे और ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की इस भोर की बेला कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं। जहां कहीं से भी आप साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को शुभ दिन हम कहेंगे। और आज इस ओर तो मौसम सवेरे सवेरे हल्की हल्की बरसात हो रही है और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा है, सवेरा का वक्त है शायद इसलिए। तो इस बदलते मौसम में आप भी अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बता दें आपको कि कुछ क्षणों में हम बढ़ेंगे कार्यक्रम सनातन धारा की ओर और फिर लगभग 6:20 पर सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आप सुन पाएंगे विशेष कार्यक्रम। अभी के लिए सनातन धारा इस कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य सुपाल मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी को हम सुनते हैं।
5: आइए सुनिए श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।

सायं। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस सनातन धारा कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। गीतोक्त जीवनम, ईश्वर और ब्रह्म का विवेचनम, गीतासार को आगे बढ़ाते हुए बहुत सुंदर से कहा गया। भारतीय शास्त्र में जीवन, ऐश्वर्य और ब्रह्म विषयक चर्चाएं बार बार हुई है। ब्राह्मणों और उपनिषदों में तो कोई बार इन विषयों का विवेचन हुआ है। वेदांत में जीवन और ब्रह्म के बीच माया का भी वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, अभय बीज सिंह सुहति कैसे, ब्रह्म जीवन बीज माया जैसे। कबीर दास ने बड़े सरल शब्दों में यही बात इस प्रकार कही है, जल में घट है, घट में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा फट जल, जलहीन समाना, एतत कैसे गी यानी। अर्थात एक घड़ा जल में तैर रहा है, उस घड़े के भीतर भी जल है, यदि घड़ा फूट जाए तो जल फिर जल में समा जाता है। यह तत्व ज्ञानी ही जानते और कहते हैं। यह बाहर का जल ब्रह्म है, घड़ा माया है जो शरीर के रूप में है, और घड़े के भीतर का जल जीव है। शरीर रूपी घड़े के फूट जाने पर यानी माया का आवरण हट जाने पर जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है। घड़े के भीतर का जल बाहर के जल का ही अंश है, तुलसीदास जी ने यह कहा है। ऐश्वर्य अंश जीवनम अविनाशी, इस प्रकार की सरल और बोधगमय भाषा में गीता में भी उपनिषदों का तत्व वर्णन किया गया है। 13वें अध्याय में उल्लेख है, उपदिष्टान्तु संताः च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मते ही चाचुष्टोतम दिव्यम पुरुषम परम। अर्थात पुरुष इस देह के में स्थित हुआ भी पर ही नहीं, केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और व्यर्थात संपत्ति होने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने का भ्राता, जीव रूप में बोधता तथा ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने का महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद धन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता के सिद्धांत अनुसार ब्रह्म ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है। अभी कहे गए श्लोक में यह स्पष्ट है कि वह परम पुरुष परमात्मा ही भोगने के समय जीव, सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार के समय ऐश्वर्य और निर्विकार अवस्था में ब्रह्म कहा जाता है। इसमें भोक्ता शब्द जीव का उपदृष्टा, अनुमता भ्राता, और महेश्वर शब्द ऐश्वर्य का और परमात्मा शुद्ध ब्रह्म का वाचक है। परम पुरुष के विवेचन होने से सब पाप के रूप में इन्हें तीनों रूप का वर्णन 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्नों में से 3 के उत्तर में आया है।
ब्रह्म क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात परम अविनाशी सचिदानंद धन परमात्मा ब्रह्म है। अध्यात्म अर्थात आत्मा या जीव क्या है? उसके उत्तर में उन्होंने बताया है कि अपना भाव यानी जीवन आत्मा है, वह अधिक यज्ञ कौन है? इसका उत्तर में देते हुए उन्होंने कहा, अधिक यज्ञो हम, अर्थात मैं ईश्वर ही इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। इस बात को अवतार का कारण बतनाने के पहले के श्लोक में कहा गया है, अयोग्यहम अध्यात्मनाहम भूतामैश्वर्यम सनः प्रकृति स्वभाधिष्ठाम स्वभ्यानम महात्मनाम, अर्थात मैं अश्विन शाखा स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब प्राणियों का ऐश्वर्य होने पर भी अपनी प्रकृति को जीवन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। आगे चलकर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो मैं कृष्ण के रूप में साधारण मनुष्य का दिखाई दे रहा हूँ, वह मैं ऐसा नहीं पर असाधारण ईश्वर्य हूँ। इसी प्रकार उन्होंने ऐश्वर्य और ब्रह्म का अभेद गीता में कई स्थानों पर बतलाया है। एक उदाहरण लीजिए, अह आत्मां गुड़ाकेशम सर्वभूतात्स्य स्थिर अहमादित्यम मध्ये च भूतानां अंतम एव च, अर्थात हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। इसके अतिरिक्त यह बतलाने वाले श्लोक भी है कि एक सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। मत परमात्म परम तरम या नित्यतम तम धनंजय मही सर्वमितम प्रोक्ताम सूत्रम तमणिगणा एवं तपायाभ्याम अहम सर्वे निगृह व्याकुलम जुसम सह अमृत चैव मृत्युश्च सदसाचिदानंद अर्जुन। भाव यह है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त कुछ भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के समान मुझ में गुंजा हुआ है। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। हे अर्जुन, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। यह सब कुछ वासुदेव है। वसुदेवम सर्वमीतः, अभेद के इस आधार पर कुछ दार्शनिक जीवात्मा को घटाकाश, घटे में रहने वाला आकाश, ईश्वर्य को मेघावास, बादल में रहने वाला आकाश और ब्रह्म को महाकाल, सर्वत्र फैला हुआ अनंत आकाश के रूप में दृष्टांत दे करके अपनी बात समझाया करते हैं। जैसे एक ही आकाश नाम भेद से तीन तरह का प्रतीत होता है,

इसी प्रकार एक ब्रह्म में ही तीन प्रकार की कल्पना है, वह व्याख्या समझाने के लिए मान्य तो जरूर है, परंतु वास्तव में ब्रह्म में ऐसा विभाग नहीं किया जा सकता। आकाश विकारिक है, उसमें विकार संबंधित भेद संभव है।

0: विकार संभव नहीं, वास्तव में वह बड़ा गहन विषय है। भगवान ने भी समझाने के लिए कहा है, मम वांछते जीवलोकम्, जीवन आत्मा मेरा ही अंश है, परंतु वह किसी प्रकार का अंश है वह समझना कठिन है। गीता में कहे गए साधनों द्वारा परमात्मा की और महान पुरुषों की दया से ही इसका तत्व जाना जा सकता है। इससे यमराज ने निश्चित गीता से कहा है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्रयाह वार्यन्ति बोधः, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष के समीप जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। भगवान ने भी कहा, तद्वित्यम प्राणतातेन परदेश्यम तसेयकम उदेश्यान्ति ते ज्ञानम ज्ञानास्ति तदेशनम्। तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्काष्ट भय से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जानो। वे मर्म न जानने वाला ज्ञानी ज्ञान मुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। इतना होने पर भी गीता में कुछ ऐसा शब्द है जिनके भेद का प्रतिपादन भी होता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: अभी आप सुन रहे थे श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से कार्यक्रम सनातन धारा।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सनातन धारा सनातन धर्म मंदिर परिषद की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए हम आचार्य जी को धन्यवाद देते हैं, आचार्य सुपाल मिश्रा जी को। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। रॉयल रोड रुईदालिया जुमन प्लेंदेरोश के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, खासकर प्लेंदेरोश के रूट रॉयल रुईदालिया और जुमन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 24 जून को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और चलिए, यहाँ पर 6:20 हो चुके हैं और अब सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में हम सुनेंगे विशेष कार्यक्रम गहलोत राजपूत महासभा की प्रस्तुति में। कार्यक्रम को जो है प्रस्तुत करेंगे पंडिता रघुबर जी, तो आइए उनको सुनते हैं और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर।
3: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

सुनते हैं आदरणीय श्रोताओं को पंडिता ज्योति भोला रघुबीर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से इस शुभ प्रभात बेला में सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष्य में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, महर्षि स्वामी दयानंद जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश एक अति लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। भारत के अलावा दुनिया के विभिन्न देशों में इस महान ग्रंथ की बड़ी लोकप्रियता है। मानव सत्य और असत्य का निर्णय करके जीवित रहने वाली प्राणी है। मनुष्य सत्य को भली भांति समझकर ग्रहण कर सके और असत्य को त्याग दें, इसी उद्देश्य से महर्षि स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ताकि जो सत्य है उसे सत्य बतलाया जाए और जो मिथ्या है उसे मिथ्या साबित किया जाए। वास्तव में जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, उसे वैसा ही कहना तथा उसे वैसे ही लिखकर मानव समाज को बतलाना महर्षि स्वामी दयानंद जी का प्रमुख उद्देश्य था। महर्षि जी ने सत्य को प्रकाश माना है, क्योंकि वे कहते थे जहाँ सत्य है वही धर्म का प्रकाश है, वही आनंद और शांति है, निर्भयता तथा सुखपूर्ण जीवन है, और जहाँ असत्य है वहाँ अंधकार, अन्याय, भय, भ्रम, पाप, अशांति और मृत्यु है। प्रमाणों सहित सत्य और असत्य का विवेचन करने वाले ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश एक अद्भुत ग्रंथ है। आज भारत की सभी प्रांतीय भाषाओं के अलावा विश्व की कई प्रसिद्ध भाषाओं में इस अनुपम ग्रंथ का अनुवाद किया गया है, ताकि अन्य धर्म को मानने वाले भी अपनी भाषा के माध्यम से सत्यार्थ प्रकाश का सत्य ज्ञान ग्रहण कर सके। आज यह देखा जा रहा है कि इस महान ग्रंथ का गहरा अध्ययन करके श्रेष्ठ मानव की हैसियत से जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की वृद्धि हो रही है। सत्य विद्या का प्रकाश दिखाने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता बढ़ाता हुआ मानव समाज को सही मार्ग दिशा दिखा रहा है। श्रोताओं, गंभीरता पूर्वक इस ग्रंथ का अध्ययन करने से हर बार कोई न कोई नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है। सत्यार्थ प्रकाश को 14 समुलासों में विभाजित करके लिखा गया है। प्रत्येक समुलास की शिक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक है। इस ज्ञानवर्धक ग्रंथ के अध्ययन किए बिना हमारा जीवन सफलतापूर्वक पूर्ण होना कठिन है, क्योंकि असत्य को त्याग कर सत्य के प्रकाश में आने से मानव उन्नतिशील होता है। स्वामी जी एक आदर्श राष्ट्रवादी थे और उन्होंने वेद को महत्व दिया। स्वामी जी ने धार्मिक अनुष्ठान का निरीक्षण किया और सही व गलत का अंतर बताया। उन्होंने ब्रह्मचर्य एवं आत्मसंयम को महत्ता दी और ईश्वर की बनाए हुए सिद्धांतों पर विशेष बल दिया। स्वामी जी ने भारतीय जनता का सही जीवन व्यापन करने के लिए मार्गदर्शन किया। स्वामी जी पाषाण पूजा का बड़ा खंडन किया और पंच महायज्ञों तथा अन्य यज्ञों का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया। वे मानते थे कि संसार में सत्यवादी वक्ता का सम्मान हो और असत्य बोलने वालों को सदा अपमान एवं तिरस्कार मिले। श्रोताओं, विद्वानगण का प्रमुख कार्य उपदेश एवं लेख के

0: माध्यम से सभी लोगों के सामने सत्य और केवल सत्य का स्वरूप प्रस्तुत करना था, लोगों का सत्यार्थ को ग्रहण करना था और मिथ्यार्थ का परित्याग करना, मनुष्य को सदा आनंद की प्राप्ति हो और समस्त मनुष्य जाति की उन्नति हो। सत्य से ही विद्वानों का मार्ग प्रशस्त होता है। सभी लोगों को सर्व सम्मत होकर एकता को स्थापित करना चाहिए। जो बलवान होते हैं वे निर्बलों की रक्षा करते हैं और उन्हीं को मनुष्य कहते हैं। स्वामी दयानंद जी ने वेद के सिद्धांतों का प्रसार किया और लोगों को शिक्षा प्रदान की। उन्होंने ईश्वर के सच्चे गुणों को उभारा, जातिवाद अंधविश्वास को मिटाया और भाईचारे को बढ़ावा दिया। सत्यात प्रकाश जयंती के अवसर पर हम अपने समस्त आर्य बंधुओं से यही आग्रह करते हैं कि आप अवश्य ही इस ग्रंथ का विशेष रूप से अध्ययन करें और अपनी संतानों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि आज के भ्रमित छली अनविश्वासी असत्यवादी और दुराचारी जनों से दूर रहने का सही मार्गदर्शन हो। श्रोताओं, देव दयानंद जी ने संपूर्ण सत्य विद्याओं का मंथन करके सत्यार्थ प्रकाश सदृश बहुमूल्य रत्न हमें प्रदान किया है। रत्नों से जड़ित उस अनमोल ग्रंथ से सत्य विद्याएं ग्रहण करना हमारा लक्ष्य है, अर्थात परम कर्तव्य है। इन्हीं विचारों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: देश जून 2026। इस प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुर्खियां इस प्रकार है। उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को शागस द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। बरतानी प्रधानमंत्री सर कैर स्टॉर्मर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी। लेखक एवं पुराने विदेश मंत्री जॉन क्लोड डेलेस्टॉक के अनुसार मॉरिशस को अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सर कैर स्टॉर्मर के उत्तराधिकारी से उम्मीद। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान। इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक नेशनल शोरलाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी होगा। राष्ट्रीय सभा में आज भी बजट बहस जारी। बहस के दूसरे दिन कल 19 लोगों का वक्तव्य हुआ। विदेश समाचारों में जर्मनी में ट्रेन सेवाएं ठप, रेडियो सिस्टम में खराबी, पूरे देश में रेल यातायात प्रभावित। और भारत में मुंबई में मॉनसून की धमाकेदार एंट्री, 13 दिनों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। आज दिल्ली यूपी में भारी बारिश आंधी।

0: का अलर्ट। और फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे, क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया, पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से। 6 बजे से कोलंबिया और कोंगो के बीच मैच खेला जा रहा है, जबकि वर्ल्ड कप जगत में पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोली स्कोरर। एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही है जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को शागस द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। बरतानी प्रधानमंत्री सर खैर स्टामर द्वारा पिछले सोमवार को अपने त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेखक एवं पुराने विदेश मंत्री रॉकलो डिलेस्थाट ने समझाया कि मॉरिशस अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सर खैर स्टामर के उत्तराधिकारी की सहायता पर निर्भर है। फिर भी अगली बरतानी सरकार को इस विधेयक का समर्थन दिलाने के लिए बरतानी संसद को मनाने के लिए काफ़ी कोशिशें करनी होगी। ये बात भी है कि उनका कार्यकाल काफ़ी छोटा हो सकता है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का आम चुनाव 2029 के लिए निर्धारित है। जोंकलोते ने इस खबर को सुनते हैं जिनसे बात की हमारी सहयोगी राजमिला सीतामणि ने, विवरण सुमेरा अकबर अली।
1: Son successeur, ça m'étonnerait que dans l'état actuel des choses où il aura besoin de pacifier le parti.
2: अब उनके बाद जो ये पद संभालने वाला है, मैं दंग रहूंगा कि क्या पार्टी में सहमति बन पाएगी ताकि वो फिर से शागुस मामले को मद्देनजर रखे। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि वो अगले चुनावों से पहले ट्रांजिशन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री बन रहे हैं। असल खतरा अगले मतदान के बाद आएगा।
0: राज्यसभा में आज भी बजट बहस जारी है। बहस के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए। कल विपक्षी सांसद जोना बेहोंजे ने एक सोवरेन फ्यूचर फंड कायम किए जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि पर्यटन मंत्री ऋषा ढिवाल ने बजट 2026-2027 के प्रावधानों की सराहना की। उधर लिबा पार्टी के सांसद रविराज बिचुक ने सरकार द्वारा उठाए जा रहे मजबूती कदमों की सराहना की। बजट 2026-2027 की प्रस्तुति के कुछ दिन बाद पिछले शुक्रवार को फेडरेशन दे ट्रावेयर दे सेक्टर पब्लिक के प्रवेश टीएसपी ने कल एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया। इसके दौरान श्रमिक संघ ने सरकार द्वारा घोषित मुख्य कदमों और मॉरिशस के श्रमिकों व परिवारों पर उनके प्रभाव पर चर्चा की। प्रियंका हरी की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण। रियाज चतु के अनुसार पेंशन सुधार नेशनल पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड NPPF से जुड़ी एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती है, फिर भी CTSP प्रस्तावित टारगेटिंग सिस्टम के विरुद्ध है। उसका मानना है कि ये एक ऐसा कदम है जिससे जनता में कुछ लोग ज्यादा गरीब हो सकते हैं। CTSP के अध्यक्ष रियाज चतु ने कहा,
3: actuellement les 14 000, dans budget annoncé les 16 000 et quelques comme budget fini voté, mais en 2029 50% population qui pas de travail qui paye n'a revenu les pour tous 11 575. Nous disposer rentre dans une discussion pour trouver un meilleur plan de pension pour travailler secteur privé.
2: जिन राज्यों की ओर से जिन सकारात्मक मुद्दों को रेखांकित किया गया उनमें मैटरनिटी लीव और महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव शामिल। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कदम 2019 से CTSP की ओर से की जा रही मांग को पूरा करने आए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने पिछले शुक्रवार को अपने बजट भाषण में 15 बार रेजिलियंस मजबूती शब्द का इस्तेमाल किया। उनकी सरकार मॉरिशस के लिए यही कदम उठाना चाहती है। उनके अनुसार पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी के लिए यही कोशिश बढ़ाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती की ओर बढ़ सके। जलवायु की आपातकालीन स्थिति, इनके प्रभाव और तटीय इरोजन के अनुकूल कदम उठाना है। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपये का प्रावधान है। इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक नेशनल शोरलाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी होगा। ये एक वास्तविक गेम चेंजर हो सकता है। कुछ अन्य समाचारों की ओर बढ़ते हैं। मॉरिशस में कल से रिलीजन

0: फॉर पीस इंटरनेशनल की अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हुई, जिसका आयोजन काउंसिल ऑफ रिलीजन्स के सहयोग से किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में दुनिया भर के धार्मिक नेता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, शांति और सामाजिक सामंजस्य जैसी समकालीन चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। अनिशा मदाया की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू।
1: विभिन्न धार्मिक परंपराओं के प्रतिनिधि एक ही मंच पर साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए। शांति, संवाद और विभिन्न समुदायों तथा देशों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना।
2: Pela nous peut causer un petit peu un problème actuel, comme par exemple nous avons l'intelligence artificielle, nous avons la question de la guerre, de la paix dans le monde, nous avons un thème qui concerne un peu toute l'humanité et qui m'aide à une religion capable d'apporter cette contribution.
1: 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में प्रतिभागी कई वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे, जिनमें संघर्ष, असमानताएं, जलवायु परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इन चर्चाओं के माध्यम से रिलीजन फॉर पीस का उद्देश्य विभिन्न आस्था समुदायों के बीच सहयोग को मजबूत करना है, ताकि शांति, मानव गरिमा और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
3: मॉरिशस में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता है जो विभिन्न धर्म के लोगों के बीच महत्वपूर्ण है।
4: Among people of faith.
5: Humanism is missing, compassion and humanism.
3: इंसानियत नाम की चीज गायब होती जा रही है, इसीलिए इतने सारे मसले हैं। लोगों का कत्ल किया जा रहा है, जंग है, लोग बैठकर बात करने का सब्र नहीं रखते, बल्कि छोटी बात के लिए हिंसा करते हैं।
5: They use violence for the smallest thing.
1: उद्घाटन समारोह में उपस्थित गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने अपने संबोधन में कहा कि मॉरिशस अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यही विशेषता इस टापू को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी के लिए एक आदर्श स्थल बनाती है।
6: Ban valeur religieuse et spirituelle capable de jouer un grand rôle.
3: दुनिया में जो मसले हैं, इनके हल ढूंढने के लिए मजहबी और रूहानी अकदारों की बड़ी अहमियत है। ये सम्मेलन इंसानियत के लिए अहम है। मैं सभी सिफारिशों को मद्देनजर रखूंगा।
1: आने वाले दिनों में सम्मेलन के कार्य विभिन्न विचार विमर्श सत्रों और संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जारी रहेंगे, जिनमें अलग अलग देशों से आए धार्मिक नेताओं और विशेषज्ञों की भागीदारी होगी।
0: 4-5 दिनों से क्यूपिप के कई इलाकों में जलापूर्ति में कटौती लाई जा रही है, बावजूद इसके कि जल वितरण के लिए नई समय सारणी लागू की गई है। ये स्थिति बरकरार है और निवासी काफी नाखुश हैं और इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। हर बार कटौती के चलते क्यूपिप के मेयर ताशियाना लाचमानापिले कपुलू ने अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने सेंट्रल वाटर अथॉरिटी को एक औपचारिक शिकायत दर्ज की और स्पष्टीकरण की मांग कर रही है, तथा साथ में आपातकालीन कदम उठाने की भी मांग कर रही है, ताकि लोगों को ज़्यादा नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो। सुमेरा अकबर अली।
7: Mofin comprend qu'il y a un problème de valve de port.
3: टेक्नीशियनों ने बताया कि वाल्व में कुछ खराबी थी, नल से पानी नहीं आ रहा है। मसला ये है कि आवाम से कहा गया है कि पानी की सप्लाई मुकर्ररा वक्त पर की जाएगी, लेकिन ये लगता है कि इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। ये सही नहीं है कि आप एक वाटर टंकी की मांग करें, लेकिन कई दिन बीत जाने पर आपके यहाँ कोई ट्रक नहीं आती। इसके अलावा रोज आपको एक नया रेफरेंस दिया जा रहा है। CWA मांग कर रही है कि दोबारा घर पर नया इंस्टॉलेशन करें। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो भी फौरन।
7: Beaucoup pas capable à faute faire ça et surtout là tout de suite, surtout qui de l'eau lit une nécessité dans la vie de tous les jours.
0: उधर सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने समझाया कि सूखे के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो रही है और देश के कई इलाके इससे प्रभावित हैं। CWA की संचार अधिकारी सुनील गोपाल ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में कोशिशें की जा रही हैं, ताकि उपभोक्ताओं के लिए नाखुशी को सीमित करने के वास्ते जहां तक हो सके नियमित रूप से जल वितरण किए जा सके। एक बार फिर से सुमेरा अकबरेली को सुनते हैं।
3: हमें बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। वीकेंड के दौरान ये मसला और भी संजीदा बन गया।

0: खासतौर पर गए शनिवार को क्यूपी फ्लोरियाल और वाक्वा में हम सभी शिकायतों पर काम कर रहे हैं। हम सर्विस रिजर्वॉयर पर करीब से निगरानी रख रहे हैं जो इन इलाकों में पानी की सप्लाई करते हैं। हमारे कर्मचारी भी उन जगहों पर जा रहे हैं जहां प्रेशर नहीं है। हम वाल्व ऑपरेशन भी कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी जब पानी को बंद करते हैं तो पाइपों में हवा आ जाती है। ये छोटी समस्याएं हैं लेकिन जल आपूर्ति पर इनका बड़ा असर है। जिन लोगों के यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, जो पहली मंजिला पर रहते हैं या जिनके टैंक पहली मंजिला पर हैं, हम इन लोगों के यहाँ पानी टंकियाँ भेज रहे हैं जब तक कोई टेक्निकी हल ना मिले।
1: और मौसम संबंधी ये जानकारी, मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एक एंटीसाइक्लोन का असर मॉरिशस पर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मेटेरोलॉजिस्ट यशवीर रामलखन के अनुसार अगले 3 दिनों के लिए स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। पूरे इलाके में ठंड और अस्थिर हवाएं चलेंगी। समुद्र में दक्षिण पश्चिमी इलाकों में समुद्र खराब ही रहेगा। 3 मीटर ऊँची लहरें उठेंगी। कुछ इलाकों में समुद्र में जाना मुश्किल होगा। उन्होंने हमारी सहयोगी अंजलि सिरतनफुरचंद को अतिरिक्त जानकारियां दी।
0: एक एंटी साइक्लोन हमारे इलाके के नजदीक है, इसीलिए ठंड महसूस की जा रही है। हल्की बरसातें हो रही हैं, खासतौर पर हवाई ढलानों और ऊंचे इलाकों में। आने वाले 3 दिनों के दौरान ऐसा ही ठंड मौसम बरकरार रहेगा जब तक ये एंटी साइक्लोन इलाके में मौजूद रहेगा। जो ही वो दूर जाएगा, रह रहकर बारिश होगी, खासतौर पर देश के पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में। समुद्र खराब ही रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में और आमतौर पर दूर समुन्द्र में न जाने की दरखास्त करते हैं।
1: और इसी के साथ बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। जर्मनी की ट्रेन राष्ट्रीय रेलवे कंपनी डॉयचे बैन ने मंगलवार शाम को संचार प्रणाली में आई गंभीर खराबी के कारण पूरे देश में सभी ट्रेनों को रोक दिया। इस वजह से जर्मनी भर में रेल यातायात पूरी तरह ठप हो गई है। और कंपनी ने बताया कि डिजिटल रेडियो सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रेनों को निकटतम स्टेशन पर रोक दिया गया। यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। भारत में नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बैठक के 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद कल ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें इन सभी सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा, बदलते वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की भूमिका बहुत अहम है। ये सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। भारत की अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाना, ग्लोबल साउथ विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को समर्थन देना और एक सुरक्षित, मजबूत और समावेशी दुनिया बनाने में योगदान देना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अपनी कप्तानी में भारत को T20 विश्व कप 2024 और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा को पिछले 2 दशक में भारतीय क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम को राष्ट्रपति भवन में रोहित शर्मा को सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह द्वितीय में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन मरणोपरांत और पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने सम्मान प्राप्त किया। वहीं टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारतीय कलाकार आर माधवन को भी राष्ट्रपति मुर्मू ने कल कलमों से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ।

विभिन्न भाषाओं में भारतीय सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए। और समाचारों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भारत में ही रहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब मुंबई सहित महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में आगे बढ़ चुका है। आज दिल्ली यूपी में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। तपती धूप, उमस और भीषण गर्मी से बेहाल मुंबई करों के लिए आखिरकार वो सुखद पल आ ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 13 दिनों की देरी के बाद कल माया नगरी मुंबई में अपनी आनंदपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा दी। सुबह की शुरुआत गरज चमक और झमाझम बौछारों के साथ हुई जिसने शहर की आबोहवा में एक नई ताजगी और सुकून घोल दिया। और विश्व फुटबॉल कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे इस प्रकार हैं। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से। इंग्लैंड गाना का मैच ड्रॉ रहा 0-0, जबकि सुबह 6 बजे से कोलंबिया और कोंगो के बीच मैच खेला जा रहा है। ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप जगत में पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोल स्कोरर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 41 साल की उम्र में रचा इतिहास, 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल दाग कर उन्होंने यूएसबीओ का रिकॉर्ड तोड़ा और उसने कैरियर की 975 गोल पूरे किए। मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार है। मास्कारेंस के दक्षिण में काफ़ी जोरदार आंधी साइक्लोन है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और ज़्यादा बादल गिरने लगेंगे। बारिश भी होगी मुख्य रूप से हवाई ढलानों पर और ऊँचाइयों पर। दोपहर बाद में बारिश होती रहेगी मुख्य रूप से सेंट्रल प्लाटू पर और अन्यत्र आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 3.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। दक्षिण में 3.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में और लगुनों में भी न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 7:45 बजे सूर्योदय, जबकि शाम 5:39 पर सूर्यास्त।

0: मौसम संबंधी नई जानकारियों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद साथ ही हम कहेंगे अपने टेक्निकी सहयोगी फैजन को। कुछ ही समय में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: बैलेंस रोड प्लेन मायो में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के जनाब यूसुफ लक्ष्मण जो ईसुप नाम से भी जाने जाते थे, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके बेटे जनाब ईशाइद लक्ष्मण के घर बैलेंस रोड प्लेन मायो से उठाकर दफनाने के लिए प्लेन मायो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फनरल टुडे एट 10 AM। रुथ रॉयल बुबासे में ला शपेल एलियंसन्स में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री क्षत्रपति कलाचंद, जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे और पहले क्राउनलैंड चोरी थोंगबा रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे ला शपेल एलियंसन्स रुथ रॉयल बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले वाले दिवत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8:30 AM। एंग्रे मार्शियल स्ट्रीट कुले में

73 साल की 73 years old की श्रीमती तारा कुतवारू, श्रीमती तारा कुतवारू पैदाशी नाम कुसा जो रानी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री रवि कुतवारू के घर आगरे मास्याली स्ट्रीट ओकुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM। रोथ रॉयल इजी दो रोज में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री आत्मप्रीत सिराज जो मातो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर रोथ रॉयल इजी दो रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थुदोदूस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 12:30 PM। बोपलॉन रोड कैलबास में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कलावती देवी जीवन पैदाशी नाम सिदानी जो सबिता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री कवि जीवन के घर बोपलॉन रोड कैलबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस त्रियोले के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर टू बी एवेन्यू बेलरोज में 68 साल के 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती उमावती हरगोबीन पैदाशी नाम राधोआ जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के दो बजे उनके पति श्री रोहित हरगोबीन के घर नंबर 2 B Avenue Belrose से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तैयारों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8 PM। नंबर 11 स्टैनले कैट्रोबोर्ड में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री दिलराज मोहाबीर सिंह जो राज नाम से भी जाने जाते थे और कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन के पुराने पर्सनल मैनेजर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के दो बजे उनके घर नंबर 11 Avenue Stanley Catterbone से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8 PM। रोथ रॉयल बोनाके में 101 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनमंत्या भिनिक पैदाशी नाम सिपुल जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी और श्री मनु भिनिक की माँ थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर रोथ रॉयल बोनाके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 8 PM। बेल रिव रोड एमिताज फिनिक्स में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमंत कुमार तोवाक पैदाशी नाम जो अनिल नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ है आज दिन के एक बजे उनके घर बेलरिव रोड एमिताज फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गजे वोद कॉफोखो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शुक मेरुविन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस बुधवार 24 जून 2026 पायुत आर्य समाज में दिन के 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। गायत्री जयंती के संदर्भ में वाल्टो रोड मोताइलोंग के वेद माता गायत्री शक्ति पीठ बुधवार 24 जून को सुबह 9 से दिन के 12 बजे तक 24 कुंडिया गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहा है। गायत्री जयंती के संदर्भ में प्लेन दे रोश के सरस्वती मंदिर द्वारा बुधवार 24

इस जून को शाम 6:30 बजे से रात्रि के 8 बजे तक महायज्ञ, गायत्री चालीसा, कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया गया है।

0: BBC Radio 24 hours a day.
1: घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 6:58 हो रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ ज़रूरी विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। सेबी जो है इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है, खासकर पॉइंटो साहब के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है। पॉइंटो साहब के खास कर सोहन लेन, रुत कुछ का एक हिस्सा, पॉइंटो साहब के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, खासकर पॉइंटो साहब के सोहन लेन, लारुत कुछ, यहाँ पर आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर आज बुधवार 24 जून को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3:30 के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ ही इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है मौसल मौ लेडी बॉकली सुयाक NHDC तेरासिन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर गुरुवार 25 जून को सुबह के साढ़े आठ से दोपहर के तीन बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली के सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्य की वजह से बिजली के सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी दो विज्ञप्तियाँ सीबी की ओर से।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए, आज है बुधवार 24 जून, घड़ी मिला लीजिए सवेरे के 7:03 हो रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। सुबह का नजराना इस प्रोग्राम को लेकर हम आपकी सेवा में आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चलिए, सवेरे का समय है। सवेरे सवेरे जो है हर कोई व्यस्त होता है, पूरे दिन में क्या करेंगे, किस तरह से अपने दिन को आगे ले जाएंगे, इन्हीं सभी विचारों के बीच, घर के कामों के बीच, काम पर अपने सफ़र पर निकलने के बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। प्रार्थना यही करेंगे कि आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और ये दिन जो है आपके जीवन को सकारात्मकता से भर दे। चलिए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के सुबह का नजराना प्रोग्राम को हम आरंभ करते हैं।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: मन जितना शांत हो उतना जीवन स्पष्ट दिखता है। धैर्य हर परिस्थिति को आसान बना देता है। शांत व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है। स्मरण रखिए कि हर समस्या का हल होता है, बस खुद को स्थिर रखना सीखिए।

0: चलिए घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 7:10 हो रहे हैं और चलिए अब अरविंद से जानते हैं स्पोर्ट्स के दुनिया में क्या हो रहा है और हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की ओर।
1: स्पोर्ट्स न्यूज। वर्ल्ड कप 2026 में रोमांच बढ़ने लगा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिकॉर्ड बनाते हुए क्रिटिक्स का मुंह बंद किया। इंग्लैंड के लिए रियलिटी चेक। गाना ने थ्री लायंस का दहाड़ना बंद किया और क्रोएशिया के कप्तान लुका मोड्रिच के लिए डबल सेंचुरी इंटरनेशनल कप। पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कह सकते हैं फॉर्म तो टेम्पोरेरी है पर क्लास परमानेंट है। रोनाल्डो इज बैक। अपने दूसरे मैच में रोनाल्डो का जादू चल पड़ा। 6 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी बना CR7। जब रोनाल्डो चमकता है तब पोर्चुगल पछाड़ता है। 5-0 से सिलेसाओ ने उज्बेकिस्तान की धुलाई की। उज्बेकिस्तान का पहला वर्ल्ड कप है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। रोनाल्डो का डबल, नूनो मेंडेस का एक गोल, नेमातोव का ऑन गोल, फिर राफेल लियाओ का गोल चेष्टा को पूरा कर पाया। गाना ने इंग्लैंड को रोका। पहले मैच में 4-2 की जीत के बाद द थ्री लायंस कुछ ज्यादा ही दहाड़ रहे थे। गाना के सामने इंग्लैंड की टीम गोल स्कोर करने में नाकाम रही। इंग्लैंड 0 गाना 0 ब्रूटल रियलिटी चेक, ऐसा टोमास टुगेल ने कहा। जिस तरह से इंग्लैंड ने क्रोएशिया को हराया था पहले मैच में, उससे उम्मीदों और उत्साह का स्तर काफी बढ़ गया था, लेकिन गाना के खिलाफ मैच इंग्लैंड के लिए हकीकत का एक कड़ा सामना साबित हुआ, क्योंकि गाना की शारीरिक ताकत, बेहतर तालमेल और लड़ते रहने की क्षमता इंग्लैंड के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना नामुमकिन था। ग्रुप एल में इंग्लैंड आगे है 4 अंकों के साथ। गाना के पास भी 4 अंक हैं। क्वालिफिकेशन के लिए काफी हैं, पर किस नंबर पर यह जानना बाकी है, क्योंकि क्रोएशिया ने भी अपनी पहली जीत दर्ज की। एम्ब्लेमैटिक कप्तान लुका मोड्रिच के लिए ऐतिहासिक दिन था। क्रोएशिया के साथ उसका 200वां मैच, डबल सेंचुरी पूरी की। 1-0 से क्रोएशिया ने पनामा को हराया, मतलब पनामा वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाएगा, जबकि क्रोएशिया के चांसेस अभी तक हैं। इसी ग्रुप में इंग्लैंड का आखिरी मैच पनामा के खिलाफ है और क्रोएशिया खेलेगा गाना के खिलाफ। दोनों मैच इस शनिवार को एक ही समय रात्रि के 1 बजे। अभी ग्रुप के का मैच चल रहा है, मेक्सिको और कोंगो डेमोक्रेटिक।

0: रिपब्लिक के बीच फर्स्ट हाफ में स्कोर 0-0 था। आज ग्रुप बी के ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच खेले जाएंगे। दोनों मैच एक ही समय रात के 11 बजे एक ही समय, ताकि कोई हेर फेर ना हो। बोस्निया का मुकाबला कतार से होगा, स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से, और ग्रुप सी के मैच भी आज खेले जाएंगे। यहाँ पर ग्रुप का टॉप पोजीशन दाव पे है, ब्राजील और मोनाको और मोरक्को के पास 4-4 अंक हैं, स्कॉटलैंड के पास 3 अंक हैं, आईसी के पास कोई अंक नहीं है। आईसी के खिलाफ मोरक्को की टीम को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, पर ब्राजील को स्कॉटलैंड से बचना होगा। इन सब मैचों पर आपको थोड़ी देर बाद 7:30 बजे RM2 और 8:30 बजे RM2 पर ज़्यादा जानकारियाँ देंगे वर्ल्ड कप स्पेशल में। प्रीमियर लीग से कुछ खबरें। ट्रांसफर न्यूज, गैरी ओनील इप्सविच का नया मैनेजर बन गया है। वो पहले वुल्व्स और बोर्नमुथ और स्ट्रासबर्ग में था। केरन मैकेना का स्थान लेगा इप्सविच में। अर्जेंटीना का स्टार खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज एटलेटिको मैड्रिड छोड़ना चाहता है। अपना सपना पूरा करने के लिए बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मेन और रियल मैड्रिड उसके पीछे हैं। हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड ने रियल मैड्रिड को 130 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दिया था, जिसे ठुकरा दिया गया। क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट का राजकुमार युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में है। T20 सीरीज के लिए पहली बार वैभव को इंडिया की सीनियर टीम में जगह मिली है। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच और इंग्लैंड में T20 सीरीज। वैभव टीम इंडिया के लिए एशिया कप में भी खेलेगा। उधर भारतीय महिला टीम कल T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का सामना करेगी। टेबल में 3 मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया की मैम, उनके पास है 6 अंक। इंडिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के पास 4 अंक। हर ग्रुप से केवल 2 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। इंग्लैंड को रोका गाना ने और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू चल पड़ा। देखते हैं आगे क्या होगा। आज भी अनेक मैच हैं। ज्यादा जानकारियां 7:30 बजे RM2 पर, और भूलिएगा नहीं 8:30 बजे स्पेशल वर्ल्ड कप, ये भी RM2 पर जरूर सुनिएगा। आगे दीजिए नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: धन्यवाद अरविंद इन सभी जानकारियों के लिए जो स्पोर्ट्स से जुड़ी रही।
2: 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सवेरे के 7:15 बज रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से 2 विज्ञप्तियाँ सुन लीजिए। प्लेंदेरोश के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, प्लेंदेरोश के खासकर रॉयल रोड, रुदालिया, रुजुमन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि आज बुधवार 24 जून को यहाँ पर सवेरे के 9 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच, ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही पिछित व्यज्य पॉइंट साहब यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहक खासकर मौसल मौले जौदें, बुगेन विलिये, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी आज बुधवार 24 जून को सुबह के 9 बजे से दोपहर के 12 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी 2 विज्ञप्तियाँ CEB की ओर से। चलिए सुबह का नजराना, ये प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस पर चल रहा है और अब बारी है आपको बताने की कि आज कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन पाएंगे। अभी के लिए यह है सुबह का नजराना। थोड़ी देर में जो है लगभग 7:40 से शामिल करेंगे आपके डेडिकेशंस, जिसके लिए बहुत सारे मैसेजेस हमें सवेरे से ही मिल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। 8 बजे आप सुन पाएंगे भोजपुरी में समाचार और शोक समाचार। 8:15 बजे हम लेकर आएंगे आ खेल खेले हम, ये कार्यक्रम और खेल खेले हम। इस कार्यक्रम में आपको तो पता ही है एक छोटा सा क्विज होता है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। और फिर 8:50 पर आप किरण जानकी से सुन पाएंगे हमारी धरोहर,

इस कार्यक्रम को, और एक भोजपुरी गीत के साथ सुबह का नजराना ये कार्यक्रम जो है समाप्त हो जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे समाचार, उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेगी रत्ना। 10 बजे हो गए

अच्छा, और उसके बाद सैदा की पेशकश में आप सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोजा। दोपहर के 12 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी विश्वा सौंदर्य लाहिरी। 12:30 बजे प्रीति की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी भाषा में प्रोग्राम। दोपहर के 1 बजे तमिल भाषा में प्रोग्राम आप सुन पाएंगे आरसी द्वारा। 1:45 बजे गुजराती कार्यक्रम आप सुन पाएंगे अमिता से। 2:30 बजे से उषा आपका साथ देगी आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद यह कार्यक्रम जारी रहेगा। दोपहर के 4 बजे शिरीष की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे मराठी कार्यक्रम विविधा। 5 बजे फारे की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे खेती बाड़ी नामक इस कार्यक्रम को। 5:15 बजे से रोशन और उषा आपका साथ देंगे अंताक्षरी इस कार्यक्रम में। 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। 6:30 बजे हाका भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे डेविड। 7 बजे युवरासन की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे तमिल भाषा में प्रोग्राम। 7:30 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे राजेंद्र। 7:50 पर नितिन बापू द्वारा आप सुन पाएंगे मराठी कार्यक्रम गीत गंगा। 8:10 पर रोशनी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम को। 8:40 पर आप सुन पाएंगे अविनाश की पेशकश में महफिल शब इस प्रोग्राम को। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच प्रताप आपका साथ देंगे भोजपुरी तड़का इस प्रोग्राम में। और 11 बजे से सुनहरे पल इस प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे गिनीशा को। और 12 बजे से कल सवेरे तक आपके मनोरंजन के लिए खूबसूरत गाने तराने जो है यहाँ चलते रहेंगे। तो ये थी रूपरेखा रेडियो के प्रोग्रामों की। रेडियो मॉरिशस पर जुड़े रहिए, साथ देते रहिए, और इस गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

चलिए, चिट्ठियों का ज़माना गया, अब तो मैसेजेस का ज़माना है, फ़ोन कॉल्स का ज़माना है, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने का ज़माना है ना। ऐसा है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम अब दुनिया के कोने कोने में पहुंच गए हैं। शायद ही ऐसा कोई दुनिया का कोना होगा जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची होगी, है ना। और कभी कभार होता है ऐसा है कि दुनिया भर की, जगत भर की खबर हमारे पास होती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे से जो है संपर्क में आना भूल गए हैं। संपर्क में आना यानी कि फेस टू फेस बात करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, क्योंकि फ़ोन पर बात करना, मैसेजेस के ज़रिए बात करना, ये तो आम सी बात हो गई है। जब हम प्यार की बात करते हैं, अपनेपन की बात करते हैं, तो फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस जो है ये दूरियों को बनाए रखते हैं। वहीं पर इन दूरियों को मिटाने के लिए कभी कभार ज़िंदगी से फ़ोन को थोड़ा सा दूर करना ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने रिश्तों के और भी करीब आ सके, और भी नज़दीक जा सके, है ना। चलिए, यहाँ पर देखते ही देखते 7:30 बज चुके हैं। कभी कभार कोशिश ये भी होनी चाहिए कि रिश्तों में दूरियाँ जो है कम हो, रिश्तों में अपनापन जो है ज़्यादा हो। फ़ोन और ये जो गैजेट है आजकल हमारे बीच दूरियों को बढ़ा रहा है, कम्युनिकेशन को कम कर रहा है। सो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से हम हमेशा दूर रहें जो हमारे रिश्तों में दूरियां लाए, जो हमारे रिश्तों में दरार लाए। और अभी के लिए गाने तराने आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन हम लेकर आए हैं, जैसे कि ये अगला गाना यशोदास जी की आवाज़ में।

जी हाँ, एक खूबसूरत सी सुबह पूरे दिन की दिशा को बदल देती है। एक खूबसूरत सा सवेरे सवेरे जो एहसास होता है, पूरे दिन को देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। एक अच्छा विचार हमारे सभी कर्मों को पॉजिटिविटी में सकारात्मकता में बदल देता है। और बस हंसने से कहते हैं, मुस्कुराने से कहते हैं कि आधी से ज़्यादा परेशानियाँ जो है ऐसे ही चुटकियों में गायब हो जाती हैं। तो कभी कोशिश कीजिएगा। ऐसा होता है कि कभी कभार ना हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, काम का प्रेशर होता है, या नेगेटिविटी नहीं भी होती है, काम के प्रेशर के कारण हम सोचते हैं कि हमारे आसपास बहुत नकारात्मकता छा गई है। क्योंकि कभी कभार होता है कि काम का बोझ होता है, जिम्मेदारियाँ होती है, तो ऐसे में हम समझ नहीं पाते हैं कि किस दिशा में जाए, क्या करे क्या नहीं। तो बस इन्हीं सभी विचारों को दूर भगाने के लिए बस एक छोटा सा काम है, बस मुस्कुराते रहना है। जिसे भी देखे, देखकर प्यार से मुस्कुराए, क्योंकि आप जब मुस्कुराते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। अपने आप से बातें करें, जी हाँ, अपने आप को वो कहे जो आप अपने जीवन में अपने आप से चाहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम सिर्फ बुरा बोलते रहते हैं, बुरा सोचते रहते हैं, नहीं ये नहीं हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा सोचा था, ऐसे क्यों हो गया। तो ये सारी बातों को जब हम सोचते हैं ना, तो ऐसा होता है कि हम नेगेटिविटी से और घिरने लगते हैं। ऐसे में अगर कुछ अच्छा हमारे आसपास हो भी रहा है, हम उसे देखते नहीं है, क्योंकि हमारी आँखों पर जो है नेगेटिविटी का पर्दा छाया हुआ होता है। तो हो सके तो इस नकारात्मकता को दूर करें और जो है पॉजिटिविटी को अपने जीवन में अपनाएं। और जहाँ तक हो सके अपने बारे में एटलीस्ट आप अच्छा बोलें, क्योंकि जब हम अपने बारे में अच्छा बोलते हैं तो अच्छा अपने आप में होने लगता है। जी हाँ, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ भला हो, कुछ बुरा ना हो, और सबका जीवन जो है बहुत अच्छे से आगे चलते रहे। और हम यही प्रार्थना भी करेंगे ईश्वर से कि जिस भी परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं, ईश्वर जो है उन परिस्थितियों से निकलने में आपकी सहायता करे। तो चलिए, ये जो गाना है इसके तुरंत बाद आपके डेडिकेशंस हम शामिल करेंगे, तो तैयार रहिएगा हमारा साथ देने के लिए। किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो बस आपके बेस्ट विशेज हम तक पहुंचाइए और हम आपके अपनों तक इन्हें पहुंचाएंगे।

और चलिए यहाँ पर 7:40 ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे जो श्रोता हैं, अपने अपना नाम सुनना चाहते हैं, अपने अपनों का नाम सुनना चाहते हैं, डेडिकेशंस में यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो उन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जो मना रहे हैं अपना जन्मदिन, या फिर अगर आप अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं तो हमारी पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल तो शादियों का सीज़न भी है, तो नए जोड़ों को, न्यूली मैरिड कपल्स को हमारी पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। आपका जीवन हंसी खुशी से बीते, प्यार से बीते, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, प्रेम हो, ऐसी कामना हम करेंगे। और चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। शोभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है सवेरे सवेरे ठंड के मौसम में हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। गाना जाता है अनुषा और शवीना के।

नाम कहती है कि जब भी हम हमारे रेडियो मॉरिशस पर या रेडियो मनोरंजन पर टिकटॉक पर वीडियोस करते हैं, लाइव करते हैं, तो वह हमारे साथ जुड़ती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी, और आपको भी हम शुभ दिन कहेंगे। यहाँ पर यह खूबसूरत सा मैसेज आया है, आई लव माई फ्रेंड्स। ओके, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती, यूं ही तो कच्चे धागे हैं, मगर धागों से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। वाह, बहुत खूब माला जी, इन सुंदर शब्दों के लिए, इस सुंदर पोइट्री के लिए। यकीनन दोस्त जो है हमारे जीवन की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं, और आप तो हमारे लिए रेडियो मॉरिशस का पूरा परिवार है। कोई चाची है, कोई नानी है, कोई दादी है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई दोस्त है, कोई सहेली है। देखिए इस रेडियो के ज़रिए कितने रिश्ते हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, और सभी रिश्तों में प्रेम और अपनापन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही आपका प्रेम बरसता रहे, और आपका जो विश्वास है रेडियो मॉरिशस MBC रेडियो के प्रति बना रहे। और चलिए यहाँ पर ये अगला गाना आपके नाम हम करते हैं माला जी। ऐसे आप अपना नाम लिखना भूल गई है, लेकिन हमें पता चल गया ये मैसेज किसकी ओर से आया है। सभी सुमारू परिवारों के नाम इस अगले गाने को हम करते हैं। और चलिए यहाँ पर शुभ दिन यहाँ पर कह रही है हमें ललिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया ललिता जी यहाँ पर आपके इस प्यार के लिए। सुप्रभात सुमी जी, कैसी है आप? बहुत ठंड है यहाँ पे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? ये उषा भी है, ये परी भी है, इनका दो दो नाम है हमें पता है। परी जी, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक है, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टर नवीन निश्चल का कोई गाना मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे। और राइट, और आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे। रोजबल से जो है अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पर कह रही है कि अगला गाना सभी बच्चों के लिए, और चलिए बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार के लिए हम गाना यहाँ पर चलाएंगे आप सभी के लिए। और भूलेगा नहीं, 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, या तो फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251705 पर। बहुत से लोग कभी कभार जो है मैसेज का नंबर पूछते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि मैसेज का जो नंबर है वो हम थोड़ा धीरे धीरे दें, ताकि आप नंबर को नोट कर पाए। 5251705 है नंबर हमारा। और चलिए दोस्ती की बात हुई है, तो दोस्ती पर ये गाना हो जाए आप सभी प्यारे दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय।

जी हाँ, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे, फिर भी हम ये साथ निभाएंगे, जब भी मौका मिलेगा यहाँ पर आते रहेंगे, आप लोगों का साथ हम देते रहेंगे। और चलिए, यहाँ पर जितने भी सुनने वाले आपके परिवार के सदस्य, आप सभी जन्मदिन मना रहे हैं, जिनका भी जन्मदिन है, सभी को हमारे रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे। और यहाँ पर नाती सुब्रो मंडल अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सुब्रो, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपकी नानी शीला और नाना साजन की ओर से। मामा है हेमा, पापा है बादल, सभी मंडल परिवारों की ओर से शुभ्रो आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। वंशील अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वंशील, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं आई है आपकी परदादी केशवंती जी की ओर से, साथ में आपकी दादी है सरिता, पापा है अविश, फूफू आशनी, नंदिनी, लव्या, व्योम, सभी बीमत परिवार और सभी कुलीचंद परिवार की ओर से वंशील आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्मदिन का ये अवसर जो है बहुत अच्छे से बीते आपके लिए, आप जीवन में तरक्की करे, प्रगति करे, ऐसी कामना हम करते हैं। और आज शर्विन अपना जन्मदिन मना रहे हैं। शर्विन, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है मामा पूर्णिमा, पापा सुनील, दादी विद्यावती, चाचा चाची, क्यूपिप के सभी सूरत परिवार की ओर से, दागोचे के सभी बिहारी परिवार की ओर से, खासकर फूफू सुनीता की ओर से, साथ में है संदीप, प्रिया, श्रवण। और श्रविन, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर आपकी वाइफ भावना की ओर से। तो चलिए, जन्मदिन का ये अवसर है, बहुत हंसी खुशी से ये पल जो है बीते, ऐसी कामना हम करते हैं। और जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम।

तो चलिए एक बार फिर से जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी को जो मना रहे हैं अपना जन्मदिन। यहाँ पर हमारे चाचा अंगिरा दुबलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपके प्यार भरे साथ के लिए। अगला तराना आपके नाम हम करते हैं और आपकी ओर से हमारे सभी सुनने वालों के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। लक्ष्मी जी बॉम्बू से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपने हमें कॉल किया। और चलिए यहाँ पर लीला बौशेरी जी फ़ोन किया था लेकिन बात करते करते लाइन कट गई, कोई बात नहीं, आप दोबारा जो है कोशिश कर सकते हैं। ऐसे तो डेडिकेशंस का जो समय है ये भी समाप्त हो रहा है। मीला जी निवग्रोव से हमारा साथ दे रही है, बच्चे जो लंदन में रहते हैं, अगला गाना उनके नाम किशन है, कोही है, रोशना है, प्रीतम, कृषि, खुशी, जेसिका और आपके मॉरिशस के पूरे परिवारों के नाम। और यहाँ पर उमा जी क्यूपिप से साथ दे रही है, हैप्पी बर्थडे विश कर रही है, बर्थडे विशेस फ्रॉम रतन परिवार। ओके, पर किसका जन्मदिन है उमा जी आपने ये नहीं लिखा, तो चलिए रतन परिवार में जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज शर्मा जी त्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर मैसेज के लिए सूरज जी, आपको भी शुभ दिन हम कहेंगे। हमारे भाई माहिन जी पालमा से साथ दे रहे हैं, प्रणाम आपको भी भाई। और चलिए ये अगला गाना आपकी ओर से हमारे सभी सुनने वालों के नाम करते हैं और सभी को आपकी ओर से शुभ दिन हम विश करते हैं। और ये छोटी सी पोयम आई है, जो अच्छा है वो अकेला है, जो झूठा है उसके पास दुनिया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी मौदालबे से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है इस पोयम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही गाना आपकी ओर से करुणा अमृता और सभी दोस्तों के लिए। और इसी गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं

नमस्ते। फजरे के 8 बजकर बाब सुना भोजपुरी में समाचार। सबसे पहले स्थानीय खबर। हाउ विधेयक से जुड़ा अनिश्चितता बढ़ते जात पा जेकर बदौलत यूनाइटेड किंगडम के देने से मॉरिशस के सागर द्वीप समूह के वापसी पर ही समझौता के अमल में आने जा सकी। बरतानी प्रधानमंत्री सखैर स्टॉमर देने से कल सोमवार के अपन त्याग पत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसा स्थिति बनल बा। लेखक आर पुराना विदेश मंत्री रॉकर डेलेस्थाक समझाइलन कि मॉरिशस अब ई प्रक्रिया के आगे बढ़ाए खातिर कैट स्टॉम्बा के उत्तराधिकारी की सहायता पर ही निर्भर बा। फिर भी आवत बरतानी अगला बरतानी सरकार के ई विधेयक के समर्थन दिलाए खातिर बरतानी संसद के मनाए खातिर काफी कोशिश करे के पड़ी। ई बात भी बा कि उनकर कार्यकाल काफी छोटा हो सकेला काहे कि यूनाइटेड किंगडम के आम चुनाव 2029 खातिर निर्धारित बा। राष्ट्रसभा में आज भी बहस जारी बा। दिन के 11:30 पर ही कार्य जारी रखा जाए। काल बजट पर ही बहस के दूसरका दिन पर ही 19 लोग के वक्तव्य होल। विपक्षी सांसद जाना बेहौजे एगो सोवरेन फ्यूचर फंड कायम किए जाने के प्रस्ताव रखंग जेकन से वर्तमान में कुछ समृद्धि के इस्तेमाल काल के बदलाव खातिर

करा जा सकी। पर्यटन मंत्री ऋषा देवाल बजट 2026-2027 के प्रावधान की सराहना करलन। वो मॉरिशस गंतव्य के टिकाऊ विकास के उल्लेख करलन और आगे बतैलन कि देश नवा नवा मंडी खोजे के चाही, जैसे कि पूरब यूरोप, रूस और गल्फ के देश में। हुआ लेबा पार्टी के सांसद रावी राज बिचू बोलन की सरकार के कार्यकाल के शुरुआत से ही वित्तीय कंसोलिडेशन मजबूती करल जात बा। ओ कृषि उद्योग के गतिशील बनाए खातिर निर्धारित कदम आर मैटरनिटी आर पैटर्निटी लीव के विस्तार के भी सराहना करलन। प्रधानमंत्री गलसुख के अपन बजट भाषण में 15 हला रेजिलियंस मजबूती शब्द के इस्तेमाल करलन जा। उ सरकार मॉरिशस खातिन ई कायम करे चाहता उनकर सरकार मॉरिशस खातिन ई कायम करे चाहता उनकर अनुसार पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी खातिन ये कोशिश बढ़ावल जाता जमें जस्ती से जस्ती मजबूती के दिन है बढ़े सकब स जलवायु के आपातकालीन स्थिति ओकर प्रभाव और तटीय इरोजन के अनुकूल कदम उठाए के। हाई बरिस बजट में कोस्टल इरोजन अडाप्टेशन प्रोग्राम खातिर 4 बिलियन रुपया के प्रावधान बा। इस तरह से 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाका के पुनर्वास करल जाए जिनकि देश के 17 प्राथमिकता होला स्थल पर ही करल जाला। बाकी एकर अलावा एगो नेशनल शोर लाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी बा। एगो वास्तविक गेम चेंजर हो सकी। मॉरिशस में कल से रिलीजन्स ऑफ पीस इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू होल बा जेकर आयोजन काउंसिल ऑफ रिलीजन के सहयोग से करल गल। 3 दिन लेक चले होला ई बैठक में दुनिया भर के धार्मिक नेता लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, शांति और सामाजिक सामंजस्य जैसन समकालीन चुनौती पर ही चर्चा करत हवन सा। 4-5 दिन में से क्यूपिप के कई इलाका में जलापूर्ति में कटौती आनल जात बा। बावजूद एकर कि जल वितरण खातिर नवा समय सारिणी कैलेंडर लागू करल गल बा। स्थिति बरकरार बा आ निवासी लोग काफी नाखुश हवन सा एकर बारे में नई समझ में आवत आओ लोग की हर हला कटौती के चलते क्यूपिप के मेयर ताशाना लाचना भिले कबोडू बोलन अपन आवाज बुलंद करलन। वो सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के एगो औपचारिक शिकायत दर्ज करलन और स्पष्टीकरण के मांग करलन। एकर संगे संगे आपातकालीन कदम उठाए के मांग भी करलन जमें आदमी लोग के जस्ती नियमित रूप से पानी मिले सकी। हुआ सेंट्रल वाटर अथॉरिटी समझाई ले बा कि सूखा के चलते ऐसा स्थिति पैदा हो गल बा और कि देश के कई इलाका एकर से प्रभावित बा। सीडब्ल्यूए के संचार अधिकारी सुनील गोपाल आश्वासन देलन की हई दिशा में कोशिश करल जात बा जमें उपभोक्ता लोग खातिर नाखुशी के सीमित करे खातिर जहां लिख हो सकी नियमित रूप से जल वितरण करल जा सकी। मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पायो जाल होला एगो आंटी साइक्लोन के असर मॉरिशस पर ही पड़ता थे। मौसम विज्ञान केंद्र के देने से बोला कल बा क्या हुआ 3 दिन खातिर स्थिति ऐसने रही। पूरा इलाका में ठंडा ठंडा करी और अस्थिर हवा भी चली। समुद्र में दक्षिण पश्चिम इलाका में समुद्र खराब हो जाए, 3 मीटर ऊंचा लहर उठे, कुछ इलाका में समुद्र में जाए के भी काफ़ी कठिन हुई। आर मौसम की ही बात करी ला सा लेकिन दूसर दिस के समाचार में ई प्रमुख बा। यूरोप में जानलेवा गर्मी के लहर के प्रभाव आते हुआ पर ही रेड अलर्ट घोषित करल कर बा। ढेर जना नदी झील तट के दिने राहत पाए खातिर जात हवन सा निकलत हवन सा। गल गुरुवार से फ्रांस में भारी गर्मी के लहर के चलते डूबे के कारण 40 जना के मरनी हो गल बा। हुआ प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोनी बोलन की कईन प्रमुख शहर में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बा और कि कईन यूरोपीय देश में गर्मी के लहर चरम लेक पहुंच गल बा। स्पोर्ट्स आर युवा मंत्री मारिना फिरारी बोलन कि तैरे जाए बखत चाहे अनसुपरवाइज्ड इलाका में नहीं जाए के और सावधानी बरते के तापमान 43 डिग्री पार कर गल बा। अब लेक फ्रांस, स्पेन और इटली सबसे प्रभावित इलाका रहल बा। फ्रांस में जून के महीना सबसे गर्म महीना रहल बा। जर्मनी के राष्ट्रीय रेलवे कंपनी डाइचे बान मंगर के सांझ के संचार प्रणाली में आर खराबी के कारण पूरा देश में सब ट्रेन के रोक देवल गलबा। भारत में नई दिल्ली में 19वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक के 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद कल ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संगे बैठक लगैलन। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही पोस्ट करके बोलन कि सब सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर बहुत ही खुशी होल बा।
और स्पोर्ट्स से संबंधित

0: ये खबर फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेला गल मैच के नतीजा ही प्रकार बा क्रोएशिया पनामा के 1-0 से हरा देलक, पुर्तगाल उज्बेकिस्तान के पराजित करलक 5-0 से, जबकि इंग्लैंड गाना के बीच जो मैच खेला गल वो ड्रॉ रहल। आर ई भी बता दे जा कि वर्ल्ड कप जगत में पहला हला क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतिहास रच दिलन। आर पुर्तगाल के नंबर एक फुटबॉल खिलाड़ी भी गोल स्कोर बन गल हन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 बरिस के उम्र में इतिहास रच दिलन, 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करे होला दुनिया के पहलका खिलाड़ी बन गलन। उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल दाके वो यूसेबियो के रिकॉर्ड तुलन और अपन कैरियर के 975 गोल पूरा कर दिले हवन। आर ई भी बता दे जा कि कोलंबिया और कोंगो के बीच आज फजीरे 6 बजे से मैच खेला जात रहल और एकर में नतीजा ई प्रकार से बोलल जात बा, कोलंबिया कोंगो से के 1-0 से हरा देली बा। भोजपुरी के समाचार ही ये पर ही पूरा भर ध्यान देला जा, बहुत ही धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: दिन के 1:30 उनकर घरे ओथोयाल इसी दो होश से उठा के क्रियाक्रम खाते दो दो दूस के शमशान भूमि ली जा जाए। बोपलों रोड कालबास में 79 बरिस के श्वसन जिसने फौके श्रीमती कलावती देवी जीवन जिनका नाम से सीधा नहीं रहल और जिनका सविता भी बोला तलंजा गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर बेटा श्री कवि जीवन के घरे भोपलों रोड कालबास से उठा के क्रियाक्रम खातिन तेमनी स्त्रियोले के शमशान भूमि ले जा जाए। निमेरो 2 बे अवेनी बेलरोज में 78 बरिस के 68 के श्रीमती उमावती हरगोबिन जिनका नाम मामजेल राधोआ रहल और जिनका अनीता भी बोला तलंजा गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर पति श्री रोहित हरगोबिन के घरे निमेरो 2 बे अवेनी बेलरोज से उठा के क्रियाक्रम खातिन त्रियानों के शमशान भूमि ले जाल जाए। निमेरो 11 अवेनी स्टैनले 4 बोर्ड में 73 बरिस के 67 के श्री दिलराज मोहबीर सिंह जिनका राज भी बोला तलंजा और वो आगे कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन में एक्स पर्सनल मैनेजर रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के दो बजे उनकर घरे निमेरो 11 अवेन्यू स्टैनले 4 बोर्ड से उठा के क्रियाक्रम घातेन गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जाल जाए। बेलरिव रोड एमिताज फिनिक्स में 67 बरिस के 67 के श्री हेमंत कुमार तोवाकेल जो जिनका अनिल भी बोले तलंजा गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर घरे बेलरिव रोड एमिताज फिनिक्स से उठा के रिजर्वर रोड कॉन्फुखो की शमशान भूमि ली जा जाए। जितना लोग गुजर गल हवन सा उनकर परिवार के संगे उन लोग के दुख बांटा था ऐसा।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: बाकी सब गंगा।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

चलिए यहाँ पर बुधवार 24 जून सुबह का नजराना के सेकंड आवर में दूसरे घंटे में आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ सुमी और आपका साथ हम दे रहे हैं रात के नहीं सुबह के 9 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। और चलिए आ खेल खेले हम में। कब से हम सोच रहे थे कि क्या सवाल पूछे, शायद इसलिए कन्फ्यूजन में सवरे के बजाय रात के मुँह से निकल गया। चलिए होता रहता है, कभी कभार जबान जो है थोड़ी सी फिसल जाती है। और आज का सवाल बड़ा ही सिंपल सा है, बड़ा ही आसान सा है। हमने ऐसे सवेरे इनका गाया हुआ एक गाना चलाया लेकिन इनके बारे में बात नहीं की। आज बॉलीवुड के एक

0: मशहूर गायक अपना जन्म तिथि मना रहे हैं, क्योंकि आज ही हमारे बीच नहीं है तो इनकी जन्म तिथि है आज। आज बॉलीवुड के एक मशहूर गायक सेलिब्रेट कर रहे, नहीं नहीं आज नहीं आज नहीं, इनफैक्ट आने वाले दिनों में, यानी कि आने वाले दिनों में यानी कि अगले महीने की 22 तारीख को, अगले महीने की 22 तारीख को जो है एक बहुत ही पॉपुलर जो है इनका जन्मदिन है। हम एक गाना चलाएंगे और हम आपको बताएंगे कि इस गाने को सुनकर बताएं कि ये गाना किस फिल्म का है, और गायक का तो नाम हम बाद में आपसे जान ही लेंगे क्योंकि ये इतने मशहूर गायक है कि आपको पता ही चल जाएगा, बस हमें आप हमें इस गाने के फिल्म का नाम बताएं। ये गाना बहुत ही पॉपुलर है, हमारे रेडियो पर हमेशा चलता रहता है और इस गाने की इतनी फरमाइश होती रहती है कि क्या कहें। तो ये गाना किस फिल्म का है, छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है तो जवाब हम तक पहुंचाइए, और 4028085। चलिए देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्ते।
1: हेलो बहन जी नमस्ते।
0: जी कौन बोल रही है?
1: फुलवंती पापा।
0: कैसी है फुलवंती जी?
1: ठीक हूँ बहन, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल, गाने के बोल भी शुरू नहीं हुए आपका फोन आ गया, तो बताइए कौन सी फिल्म का गाना है ये?
1: धर्म करम।
0: धर्म करम आपने देखी है ये फिल्म?
1: देखी है कभी कभी।
0: कभी कभी यानी कि बहुत पहले देखी होगी शायद।
1: हाँ।
0: और इस गाने को किसने गाया है?
1: मुकेश।
0: हाँ ओके, चलिए आपके जवाब को हमने नोट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले कॉल की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन पर कौन है। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार सिमी जी।
0: नमस्ते जी, कौन है?
2: मैं सरिता हूँ कफरबोन से।
0: कैसी है सरिता जी?
2: मैं ठीक हूँ, और आप?
0: बिल्कुल ठीक। जो गाना अभी,
2: ठंड का मौसम है। हाँ। यहाँ बहुत ठंड
0: चारों ओर।
2: जी मेरा जवाब है धर्म करम।
0: धर्म करम, अच्छा ये फिल्म का नाम तो हमने पूछा था, क्या आपको पता है इस फिल्म में कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है?
2: राज कपूर जी, रेखा
0: ओके,
2: और रणधीर कपूर।
0: ओके, आपको तो जबान ही याद है
2: जी जी
0: आपने फिल्म देखी है यानी के?
2: जी हाँ बहुत बार।
0: ओके,
2: बहुत अच्छी फिल्म है।
0: ओके
2: जी,
0: और किसने गाया है इस गाने को?
2: जी
0: गाने को किसने गाया है?
2: मुकेश।
0: ओके चलिए
2: जी,
0: आपके
2: जी,
0: जवाब को भी हमने नोट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी,
2: आपको शुभ दिन। आप
0: शुभ दिन। चलिए एक और श्रोता की ओर बढ़ते हैं। हेलो नमस्ते।
3: हेलो सुमी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, जो गाना चल रहा है बताइए जल्दी जल्दी कौन सी फिल्म का है?
3: धर्म करम का है वो, तो मतलब जबानी याद है ना, रोज लगभग ये गाना चलता ही रहता है।
0: हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें फिल्मों के नाम याद नहीं रहते हैं, गायक भी याद रह जाते हैं।
3: हाँ लेकिन ये गाना ये फिल्म जब नई नई आई थी तो हमने देखा था इस फिल्म को,
0: थिएटर में जाकर देखा था।
3: हाँ थिएटर में जाकर देखा था।
0: अच्छा बताइए उस समय थिएटर में जाकर फिल्म देखने में किस तरह का अनुभव होता था, अभी तो एक बहुत आम सी बात हो गई है।
3: हाँ आम, उस समय मतलब कि बहुत बहुत अच्छा लगता था क्योंकि परिवार के साथ दोस्तों के साथ जाते थे और फिर यहाँ का माहौल ही कुछ अलग सा था।
0: ओके
3: हाँ, और टिकट भी उतना नहीं था ना उस समय में,
0: 50 रुपया या 25 पैसे
3: का टिकट बिकता था बहुत साल पहले की, तो बहुत से लोग जाते थे, एक दिन में आप 3 बार जाकर फिल्म देखकर आ सकते थे।
0: 3 बार यानी कि एक ही टिकट? हाँ, पर 3 बार।
3: हमारे यहाँ पर थिएटर था ना।
0: हाँ, अच्छा।
3: जो बाबा आदाय घर के पास ही था, दूर नहीं था।
0: ओके,
3: तो खासकर रविवार के दिन हम बहुत मित्रों के साथ, हर रविवार को पड़ोसियों के साथ हम जाते थे।
0: यानी कि रविवार आपका फिल्म देखते देखते ही बीतता था।
3: हाँ, देखते देखते निकल जाता था।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी, शुभ दिन आपको,
3: आपको भी शुभ दिन। हाँ।
0: और यहाँ बहुत सारे जवाब मैसेज के जरिए भी आ रहे हैं। ट्रियोले से शिमला जी लिखती है आंसर है धर्म करम, देवी जी ने लिखा है धर्म करम। नमस्ते सुमी जी, शुभ दिन आपको भी, धन्यवाद देवी जी इस जवाब के लिए। धर्म करम और गाना है बाय मुकेश। थैंक यू फातिमा जी आपके भी जवाब के लिए, निवग्रोव से आप हमारे साथ जुड़ी हुई है। माला जरी जी आपके भी जवाब के लिए धन्यवाद, आपका जवाब भी है धर्म करम। आई बिलीव धर्म करम एक ऐसी फिल्म है जो हमारे सुनने वालों को जैसे कि उनके माइंड में बस गई है ना, उनके जहन में बस गई है, तो गाना चलते ही फिल्म का नाम जो है जहन में आ गया। हेलो नमस्कार।
4: हेलो नमस्कार
0: जी, कौन है? कैसे है आली जी?
4: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक, और बताइए क्या है जवाब?
4: धर्म करम।
0: ऑल राइट, चलिए धर्म करम आपके भी जवाब को हमने नोट कर लिया है। आपने देखी है ये फिल्म?
4: बहुत जमाने की बात है, मैंने देखा है सिनेमा हॉल में।
0: ओके, आपने भी सिनेमा हॉल में देखा है, ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अली जी आपके जवाब।

0: के लिए शुभ दिन कहेंगे आपको। और यहाँ पर एक और जवाब, हेलो नमस्ते, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो,
1: हम हैं तारा।
0: कैसी है तारा जी?
1: ठीक है, आप ठीक है?
0: बिल्कुल ठीक है तारा जी, क्या है जवाब आपके पास?
1: धर्म करम।
0: धर्म करम, ऑल राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखी है ये फिल्म?
1: हाँ देखी।
0: लाइन कट गई यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए, हमने जो सवाल किया था, ये जो गाना है किस फिल्म का है? जी हाँ, 70 के सालों में आई फिल्म धर्म करम का है, और 1975, 1 दिसंबर 1975 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राज कपूर साहब ने, फिल्म को डायरेक्ट किया था रणधीर कपूर साहब ने, और फिल्म में रेखा थी, साथ में अन्य बड़े बड़े कलाकार भी थे, जैसे कि राज कपूर साहब तो थे ही, रणधीर कपूर साहब तो थे ही, रेखा थी, दारा सिंह थे, जगदीश राज थे। फिल्म की कहानी लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। फिल्म में संगीत दिया था राहुल देव बर्मन साहब ने, और जो है ये फिल्म अपने टाइम के पॉपुलर फिल्मों में से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के सभी ने सही सही सही जवाब दिया। और चलिए, इसी गाने का, इसी फिल्म का ये दूसरा गाना आप सबके नाम हम करते हैं, आप लोगों ने साथ दिया इसके लिए।

0: जी हाँ, तेरे हम सफर गीत है तेरे, ये गीत ये संगीत जीवन की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। और गानों की अगर बात करें, संगीत की अगर बात करें, तो जिस भी मूड में हम होते हैं वैसा ही कोई ना कोई गाना हमें सुनने को दिल करता है। और ऐसे ही गानों के साथ, गानों को सुनते सुनते ज़िंदगी का ये सफ़र भी कट जाता है। चलिए सुबह का नजराना ये प्रोग्राम है और अब बारी है इस अगले तराने की। अगला जो तराना है 100 Days, इस फिल्म से लिया गया है। अगर आपको याद होगी, फिल्म में माधुरी दीक्षित नज़र आई थी, साथ में जाकी श्रॉफ थे। लता जी, एसपी बालासुब्रमण्यम जी की आवाज़ों में ये खूबसूरत सा तराना। इसमें एक और एक्ट्रेस थी, हम चाहते हैं अगर आपको पता है तो मैसेज में हमें बताएं कि कौन थी वो एक और एक्ट्रेस। 5251705 है नंबर हमारा।
1: तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी।
0: ऐसे इसमें जावेद जाफरी भी थे।

0: एक्चुअली हमने पूछा था कि इस फिल्म में एक और एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित के अलावा, उसका नाम बताए। बस ऐसे ही कोई क्विज नहीं, हमने सोचा कि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए हमारे श्रोताओं के साथ। तो यहाँ पर सरिता जी आपने तो जवाब दिया है माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ, वो तो है ही। हमने पूछा था एक और एक्ट्रेस है जिनका नाम हमने नहीं बताया, तो शिमला जी ने हमें सही जवाब दिया है, मुनमुन सेन। यस शिमला जी, थैंक यू सो मच। इसमें मुनमुन सेन रहती हैं, जिन्हें मार कर शायद दीवार में दफना दिया जाता है, कुछ ऐसी ही कहानी होती है इस फिल्म की 100 डेज। तो चलिए यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए, और ये दिखाता है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, बड़े ही गौर से हमें सुन रहे हैं, सिर्फ गाने ही नहीं हमारी बातों को भी सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।
0: और अगला जो गीत है सौदागर फिल्म का तराना है, आशा जी की आवाज में, सजना है मुझे सजना के लिए। हम तो ये मानते हैं कि अगर आपको सजना है, आपको अच्छा दिखना है, तो ये आप अपने लिए करें, अपनी खुशी के लिए करें, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं वही खुशी हम औरों तक भी पहुंचा पाते हैं।

0: तो चले इसी के साथ अब बारी है किरण जानकी जी से, हम सुने हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में औरत लोग के अंतर्राष्ट्रीय दिन 24 जून के मनावल जाला। ई दिन के घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव करले रलन। कितने पूर्वी अफ्रीकी देश ई दिन के घोषणा के रिजोल्यूशन पर हस्ताक्षर करले हवन सा। आज साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य जन सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में बा, उमें एक तिहाई से जस्ती औरत हवन सा और ई एवरेज से ऊपरे बा, लेकिन ई काफी नहीं बा। ई बात के प्रमाण बा कि औरत लोग के भागीदारी लगातार ई संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में शामिल होवता, उलोग के भागीदारी, उलोग के सदस्यता और उलोग के प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी बा। कहे कि ई एगो ऐसा रास्ता है जहाँ पर कोई अकेले नहीं सकी चले, चाहे औरत और पुरुष लोग के साथ ही साथ चले के तब जाके ई दुनिया भर में कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के जोन सही शक्ति बा उ नजर आए। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हमेशा से बोले हवन कि जेंडर इक्वालिटी यानी कि औरत और मर्द के बीच फर्क ताकत के सवाल है और ऐतिहासिक दृष्टि से ताकत ज्यादातर मर्द लोग के हाथ में है। जेंडर इक्वालिटी यानी औरत और मर्द के बीच बराबरी और औरत के बराबर भागीदारी और लीडरशिप के क्षेत्र में आज बहुत आवश्यकता बा और एगो सुरक्षित शांतिपूर्ण और सतत दुनिया खातिर ये बहुत जरूरी बा कि हमनी सब कोई ये बात के ख्याल रखब जा कि औरत लोग के हर मंच हर कदम पर शामिल करल जाए, उ लोग के आवाज़ सुनल जाए और उ लोग के योगदान के आदर करल जाए। औरत लोग डिप्लोमेसी यानी कूटनीति में बहुत योगदान देवेलन जा और ये सफल रहेला। महिला लोग के लीडरशिप के तरीका और उ लोग के प्राथमिकता उच्च किस्म के नतीजा सामने प्रस्तुत करे।

ला और उ लोग के फैसला लंबा समय तक चलेला और उ लोग सब कोई के आत्मसात करके चलेलन सा। रिसर्च से ये पता चलल बा कि औरत लोग शांति बातचीत में जस्ती अच्छा से काम करेलन सा और ऐसा शांति संधि तय करेलन सा जो मजबूत रहेला लंबा समय तक टिकेला। औरत लोग जब मंत्रिमंडल और संसद में रहेलन सा तो उ लोग आम जनता लयिका पर्यावरण ये सब के हित में फैसला लेवेलन सा और सामाजिक ढांचा के और मजबूत बनावेलन जा। संयुक्त राष्ट्र अच्छा उदाहरण देवता दुनिया भर के और औरत लोग के बराबर अधिकार उ लोग के संगठन के अंदर जस्ती ताकत देवे पर भेदभाव के दूर करे पर बहुत जोर देवता। जहाँ तक औरत पर हिंसा के बाद बा त उ लोग के आवाज सुने पर जस्ती से जस्ती काम करल जाता। त ई रहल कूटनीति में औरत लोग के भागीदारी। आशा करत है जा कि ई दुनिया में एगो समय आए जब औरत और मर्द के बीच कोनो भेदभाव नहीं करल जाए, दोनों जना संगे सब फैसला लियन जा, चाहे उ कूटनीति रही, चाहे उ राजनीति रही, चाहे उ देश रही, समाज रही या परिवार रही। कार्यक्रम के ध्यान से सुन ल जा। बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलब जा। नमस्ते।

0: किरण जानकी जी को हम धन्यवाद देते हैं हमारी धरोहर इस कार्यक्रम के लिए। और जितने भी सुनने वाले हमारे साथ सवेरे से जुड़े हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह का नजराना इस कार्यक्रम में आप हमेशा साथ देते हैं। सिर्फ सुबह का नजराना कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि जितने भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर, आप सभी उसमें भाग लेते हैं। इतना प्यार आपका साथ मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते ये अंतिम भोजपुरी गीत आप सबके नाम हम करते हैं। किरण जी अभी नारियों के अधिकारों पर बात कर रही थी, उनके योगदान पर बात कर रही थी, तो चलिए ये गाना सभी नारियों के नाम, सभी चाची नानी दादी, हमारे सभी बहनों के नाम जो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। 9 बजे जो है आप सुन पाएंगे समाचार, और उसके बाद आज की चर्चा इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे। रत्ना की प्रस्तुति में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप लाइव देख पाएंगे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, 10 बजे हम आपसे दोबारा मिलेंगे। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से। ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर जुड़े रहिएगा, साथ देते रहिएगा।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। चौबीस जून बुधवार का दिन और इसी के साथ रजनी बीकनजी हमारे साथ उपस्थित हो चुकी हैं समाचारों को लेकर। नमस्ते रजनी जी।
2: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। राष्ट्रीय सभा में आज भी बजट बहस जारी, दिन के 11:30 बजे कार्य जारी रखे जाएंगे। कल बजट पर बहस के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए। विपक्षी सांसद जोना बेरांजे ने एक सुवरेन फ्यूचर फंड कायम किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि वर्तमान में कुछ समृद्धि का इस्तेमाल कल के बदलावों के लिए किया जा सके। पर्यटन मंत्री ऋषा जीवाल ने बजट 2026-2027 के प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने मॉरिशस गंतव्य के टिकाऊ विकास का उल्लेख किया और आगे बताया कि देश नई मंडियां तलाश रहा है, जैसे कि पूर्वी यूरोप, रूस और गल्फ। उधर लिबा पार्टी के सांसद रविराज बिचुक ने कहा कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से वित्तीय कंसोलिडेशन किया जा रहा है। उन्होंने कृषि उद्योग को गतिशील बनाए जाने के लिए निर्धारित कदमों और मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव के विस्तार की भी सराहना की। उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को शागस द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाया जा सकेगा। बरतानी प्रधानमंत्री सर खैर स्टॉमर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान। इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा, जो कि देश के 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर संबंधित हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं विदेशी समाचारों की ओर। यूरोप में जानलेवा गर्मी का लहर का प्रभाव जारी है। वहां पर रेड अलर्ट घोषित कर दिए गए हैं। बहुत से लोग नदियों, झीलों और तटों की ओर राहत पाने के लिए निकल पड़े हैं। पिछले गुरुवार से फ्रांस में भारी गर्मी की लहर के चलते डूबने का के कारण 40 लोगों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि अब तक फ्रांस, स्पेन और इटली सबसे प्रभावित इलाके हैं। और फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत खेले गए मैचों के नतीजे इस प्रकार हैं। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से, जबकि इंग्लैंड घाना के बीच जो मैच खेला गया वो ड्रॉ रहा 0-0।

0: और आज सुबह 6 बजे से कोलंबिया और कोंगो के बीच मैच खेला गया और इसमें कोलंबिया ने कोंगो को 1-0 से हरा दिया। जबकि ये भी कह दें कि वर्ल्ड कप जगत पे पहली बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, वे बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोल स्कोरर। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: बुधवार का दिन है, 24 तारीख जून महीना, और आज की चर्चा कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर इस वक्त हम सीधे प्रसारित हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताते, MBC के तीसरे चैनल पर आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख पाएंगे और MBC के रेडियो मॉरिशस फेसबुक पेज पर भी आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फॉलो कर पाएंगे। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ठंड ने बिल्कुल ज़ोर पकड़ लिया है और ठंड के मौसम में बहुत सारी बीमारियों के साथ हम अपने शरीर के साथ अब बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए पूरी तरह से हम जूझते हैं। और इसी के समय हम टीकाकरण पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जहाँ पर टीकाकरण के लिए बहुत ही लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसी पर आज का ये कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे, कितने प्रकार के टीके होते हैं और किस बीमारी को कौन सा टीका लगना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर बसावन, डॉक्टर दाऊशंकर पांगे बसावन, जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम बल देंगे टीकाकरण पर। तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
1: टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य लोगों को गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाना है। टीके शरीर को पहले से तैयार कर देता है, और ताकि जब कोई वायरस आते हैं शरीर में या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं
0: जी,
1: तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको जल्दी से पहचान कर उसका मुकाबला कर सकते हैं। इसी बीमारी होने का खतरा और उसी गंभीरता को दोनों कम करने के लिए
0: टीके लगाए जाते हैं। तो डॉक्टर जी, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो इम्यून और टीकाकरण, ये दोनों, क्योंकि इम्यूनाइजेशन में भी हम टीकाकरण पर बल देते हैं, तो इम्यूनिटी और टीकाकरण, इसमें क्या संबंध है?
1: इम्यूनिटी शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है।
0: अच्छा।
1: टीकाकरण इस इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर को बीमारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करती है। इसीलिए टीकाकरण को इम्यूनिटी बढ़ाने का और एक सुरक्षित और प्रभावित माध्यम माना जाता है।
0: अच्छा।
1: मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक सोल्जर है, जब वो जंग पर जाते हैं तो अगर वो खाली हाथ जाते हैं तो उसका मरने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो खाली हाथ हैं।
0: सही।
1: और लेकिन अगर हम उसको तलवार देते हैं तो तलवार के साथ जब वो जाता है तो उसका मरने का

0: चांस कम हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में हमारे जो सोल्जर हैं वो हमारे इम्यूनिटी हैं, और जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज को देते हैं, को पैदा करते हैं जो तलवार की तरह है।
1: मतलब वो उसे तैयार करता है पूरी तरह से, और वो एक तरह से उसको कवच पहनाया कह सकते हैं कि हाँ। जिस तरह से वो तैयार कर रहा है ताकि हमारा शरीर उन बॉडीज के साथ लड़ सके।
0: हाँ।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर जी, आजकल देखा गया है कि ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, अब इराडिकेट हो चुकी हैं, पर फिर भी उसके लिए टीकेकरण लगाए जाते हैं, यानी टीकेकरण के अभियान किए जाते हैं, तो इसका क्या क्या महत्व है?
0: जो बीमारी हैं हमारे देश में नहीं हो सकते हैं, पर अन्य देशों में हो सकता है, और जब अंतरराज्य पर जाते हैं वहाँ पर ये बीमारी हो सकती है, तो कोई भी समय ये रोग ये बीमारी वापस आ सकती है, तो हमको ये सावधान रहना है। टीकाकरण करके हम इम्यूनिटी यानी कि देश का इम्यूनिटी करते हैं,
1: मतलब उनको सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश में है कि हाँ। वो अब हमारे कंट्री में फिर से ना आए। इसीलिए वो अभियान चलाए जाते हैं, और मतलब आपको वो टीके लगाना बहुत ज़रूरी, बहुत अनिवार्य हो जाता है। और जैसे हम कह सकते हैं कि हर वर्ष टीकाकरण लगाए जाते हैं, और जब बच्चों की बात आती है तो जन्म के समय 5 साल के बच्चों में कौन कौन से टीके लगवाने बहुत ही अनिवार्य हैं?
0: जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चों में तरह वैक्सीन करते हैं, ओरल वैक्सीन है और वैक्सीन जो सुई
1: हाँ।
0: ये भी हैं, वो हैं BCG, हेपाटाइटिस बी, पोलियो, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल, मेजुला रूबेला, और बूस्टर वैक्सीन भी दिए जाते हैं। ये सब एक कैलेंडर से होता है, एक रिपोर्ट से होता है, जब बच्चे का एक कॉट होता है उस कॉट में सभी वैक्सीन का कब कब करना है ये सब तैयार करके उसको
1: दिया जाता है
0: इसके पेरेंट को दिया जाता है। तो फिर पेरेंट ये कॉट लेकर जाते हैं जो डिस्पेंसरी हैं या सेंटर के पास जाते हैं
1: जी।
0: वहाँ पर अपने बच्चों का टीकाकरण करते हैं, और ज़रूरी है कि वो समय तक अच्छा ये, क्योंकि कुछ डोजेस हैं जो हम लगाते हैं, और फिर उसका बूस्टर डोज 3 महीने के बाद देना चाहिए या 2 साल के बाद, तो ये सब इस रिपोर्ट कार्ड में
1: दर्ज होता है,
0: दर्ज
1: उसमें
0: होता है।
1: अच्छा।
0: और जाकर कर देते हैं।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई बच्चों को बुखार आ जाता है, और जब वो टीकाकरण मतलब उनको उस दिन टीका लगाना है, उस दिन वे जाते हैं, और उस दिन वो टीका नहीं लगा पाते, तो ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बुखार के समय टीके नहीं लगवाए जाते, तो अगर वो स्किप हो जाता है, जैसे आप बता रहे हो कि वो रिपोर्ट कार्ड के अनुसार ही वो लगाना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर वो डेट स्किप हो गई तो क्या करना चाहिए?
0: ये घबराने की बात नहीं है, जो माता पिता उसके बच्चों का टीकाकरण अच्छे समय पर नहीं किए तो क्या करना चाहिए, फिर से डिस्पेंसरी हैं, मेडिक्लिनिक हैं, जो भी हेल्थ सेंटर्स
1: जहाँ पर आप करते हैं अपना टीका, जी जी,
0: वहाँ पर जाइए और उनको बोलिए कि ये उसका ये इसीलिए ये रिपोर्ट कार्ड
1: रखना बहुत ज़रूरी है।
0: तो जब रिपोर्ट कार्ड डॉक्टर को देंगे तो वो देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन नहीं हुआ है, किस किस वैक्सीन नहीं हुआ है, और रात्रापाज वैक्सीन

0: करते हैं, जो नहीं किया वो करेंगे, और इसके द्वारा बच्चों का कोई ये वैक्सीन कर सकते हैं बच्चों को, और इम्यूनिटी बढ़ाएगी जैसे
1: बिल्कुल। डॉक्टर जी, अभी थोड़ी देर पहले आप पोलियो की बात कर रहे, तो पोलियो के बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा बताएं, पोलियो क्या है और इसे समाप्त करने का कैसे, मतलब इसका इतना महत्वपूर्ण, इतना बल क्यों दिया जा रहा है?
0: पोलियो एक वायरल बीमारी है जो परमानेंट पैरालिसिस

0: रोटरी क्लब जो सब देशों में है, ये इसका एक एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है. जब तक पोलियो पूरी तरह समाप्त नहीं होता तो रोटरी ने एक ऑफ लिया, जैसे जो भी हम
1: एक प्रण लिया मानिए,
0: जो भी जैसे मैं रोटरी पंपलेमूस में हूँ और जो भी रोटरी क्लब है मॉरिशस में और अन्य देशों में
1: जी,
0: सब क्या करते हैं, एक फंड होता है, एक फंड होता है जो जहां हम पैसे रखते हैं,
1: एक फंड रेजिंग होता है,
0: होता है और उसको पोलियो प्लस में डालते हैं. जब पोलियो प्लस में डालते हैं तो ये फंड ट्रिपल हो जाते हैं, जैसे कि 2-1. अगर हम 10 रुपया डालते हैं तो वो 30 रुपया हो जाएगा वैक्सीन बनाने में मदद करेगा. और यहाँ जब हम पोलियो के देखते हैं तो पहले से लगभग 350,000 केसेस थे, अभी 125.
1: ये आप मॉरिशस के आंकड़े की बात बता रहे हैं या विश्व भर के?
0: विश्व भर में.
1: अच्छा,
0: विश्व भर में जब हम देखते हैं चाइल्ड हेल्थ, तो विश्व भर में ये पोलियो एक तरह की बीमारी है कि सिर्फ 2 देशों में अभी एंडेमिक है.
1: अच्छा,
0: सारे पूरे
1: विश्व से
0: ये एराडिकेट हो गया.
1: ओके,
0: एराडिकेट हो गया.
1: हाँ हाँ.
0: और ये एराडिकेशन के बाद फिर भी पोलियो, देखो मॉरिशस में जब हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं उसका वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन करते हैं, पोलियो एक ओरल वैक्सीन भी है.
1: अच्छा, जो मतलब ड्रॉप्स देते हैं.
0: तो ये सब इम्यूनिटी देता है और पोलियो बचाने के लिए. तो आजकल 99% का मामला से कम हो गया है,
1: मतलब बहुत ही हद तक उसे कम समाप्त कर दिया गया है,
0: कम हो गया है. ये सब एंड पोलियो नाउ रोटरी के माध्यम से किया गया है,
1: उनके सहयोग से, रोटरी क्लब जो काम कर रहा है स्पेशली पोलियो को ख़त्म करने का, जो उन्होंने प्रण लिया है. और ये विश्व भर में जितने भी रोटरी क्लब्स हैं ये सभी ओर उन्होंने इस अभियान को जारी रखा है. और जब हम पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो के मामले में दुनिया में बहुत कम ये हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही ज़्यादा इसको सतर्क रहना है इस बात को लेकर. क्या ऐसा कभी हो सकता है कि वो रिटर्न हो डॉक्टर जी, कभी ऐसा हो सकता है कि ये वापस आए?
0: जब तक दुनिया का आखिरी पोलियो मामला समाप्त नहीं होता
1: तब तक
0: चांस है कि ये वापस से फिर आए. तो अगर हम देखते हैं जो 2 देश में हैं, वहाँ पॉवर्टी प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉवर्टी का और जंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए कठिन होता है. अभी ईरान का जंग हो रहे हैं
1: जी,
0: तो उसका चांस है उसका फैलने के लिए, क्योंकि जो जहां कम सैनिटरी है, कम
1: प्रिकॉशंस
0: हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो वहां पर ये फैल सकता है. और अगर वो फैल सकता है
1: तो फिर वो बढ़ भी सकता है.
0: और अन्य दूसरे देशों में भी जा सकता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो एक तरह से ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो हम कहते हैं ना कि अगर किसी को लग जाए तो उसे ठीक करना, पूरी तरह से ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन सा लगता है. और इसीलिए रोटरी क्लब जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है इसे पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने के लिए. और जैसे डॉक्टर जी ने भी बताया कि अब केवल 1500 1,500,000 मामले पूरे विश्व भर में,
0: जैसे 100 वेंसैंक,
1: अच्छा, यानी 125
0: 125 है। हाँ, अभी का स्टैटिस्टिक,
1: हाँ हाँ,

0: 3,50,000 से
1: घटकर
0: 125 हो गया है,
1: मतलब 1.5-1.25 लाख तक मामले अभी भी है और इसे जड़ से मिटाने के लिए बहुत सारे ऐसे अभियान किए जा रहे हैं। पर जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि कुछ देश यानी लगभग 2 देश ऐसे हैं जहां पर ये पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका है और इसीलिए ये बिल्कुल एक गंभीर समस्या है। चलिए इसी के साथ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जी बता रहे थे बिल्कुल जो हम पहले के समय में काटजोन या काट अभी तो काट ब्लू और कौतोगोज मैं समझती हूँ जो बच्चों के कार्ड होते हैं जहाँ पर जो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जहाँ पर वैक्सीनेशन के सारे डेट्स को लिखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बड़े हो गए अब तो वैक्सीनेशन लगाना नहीं है, पर डॉक्टर जी कई बार ऐसा होता है कि वो कार्ड यहाँ वहाँ अगर गुम जाए, क्या वो कार्ड को रखना और पूरी तरह से संभाल कर रखना बाय द एंड तक वो अनिवार्य है, ज़रूरी है?
0: ये बहुत ज़रूरी है कार्ड का अच्छी तरह से रखना। क्यों ये कार्ड उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये कार्ड में सारे रिकॉर्ड होते हैं, सारे वैक्सीन का रिकॉर्ड होते हैं
1: जी।
0: और देखो जब हम भविष्य जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो हमको भी ये वैक्सीन जो किया है ये सब वो पूछते हैं,
1: एक रिकॉर्ड होता है,
0: रिकॉर्ड होता है तो वो पूछते हैं अगर ये वैक्सीन किया। 2 तरह के होते हैं, एक बच्चों के लिए और दूसरे जो यात्रा पर जाते हैं, जो विदेश पर जाते हैं। तो हम देखते हैं जो कंट्री हैं, डिफरेंट कंट्री हैं, उसका डिफरेंट रिक्वायरमेंट हैं।
1: बिल्कुल
0: रिक्वायरमेंट हैं, जो जैसे एक कंट्री येलो फीवर हेपेटाइटिस बी, दूसरे कंट्री एक दूसरे बीमारी के लिए उसका इम्यूनिटी, क्योंकि वहाँ ये बीमारी है
1: इसीलिए उसके लिए एक एंटीकोर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर जी अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, फिलहाल बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन लगा देने के बाद हल्का सा बुखार आता है, हाथ में सूजन आ जाती है, क्या ये नॉर्मल है? और अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो माता पिता को क्या करना चाहिए?
0: हल्का बुखार, इंजेक्शन वाले जगह पर दर्द होना, ये बात संकेत नहीं है, ये मामूली बात है, क्योंकि थोड़ा ये होता है। ये क्योंकि ये एक बात है कि शरीर एक रिएक्शन कर रहे हैं, ये देखे ये वहाँ पर एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, हमको उनको डिटेक्ट करना है। तो ये सब हमारे इम्यूनिटी काम करता है उसको चेक करने के लिए। तो जब चेक करते हैं तो वो बोलते हैं ओके, क्योंकि ये सब हमारे मेकानिज्म, हमारे होल बॉडी का मेकानिज्म है। जब हमको बुखार आती है एक साइन है, जैसे अभी के लिए हम चेक करते हैं कैसे हैं, पर अगर हम देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स, ये उसका ट्रिगर था ओके, अभी के लिए ये बीमार है तो कुछ दवाई देना है। तो ये सब होता है, तो पेरेंट्स को
1: घबराने की कोई बात नहीं
0: है,
1: क्योंकि कई बार जैसे मान लीजिए जो पेरेंट्स पहली बार पेरेंट्स बने हैं या पहले बेबी के साथ, डेफिनेटली हर अभिभावक अभी हर माता पिता को ये टेंशन हो जाती है कि बच्चे को बुखार बहुत तेज हो चुका है, और खासकर वैक्सीनेशन के बाद कई बार ऐसे हो जाता है कि पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है कि अब इसमें क्या करना चाहिए। तो क्या डॉक्टर को दिखाना आवश्यक हो जाता है या ऐसा कुछ, ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पर कोई वो पैनिक डेवलप ना हो?
0: यदि टीका लगाने के बाद बहुत तेज बुखार होते हैं, तेज बुखार यानी कि लाओ 38,
1: हाँ बिल्कुल 39-40 तक पहुंच जाता है जी,
0: जाते हैं, अगर वो सांस लेने से दिक्कत होता है, अगर गंभीर एलर्जी होता है, तो या ये तीनों मामले में
1: उसको
0: डॉक्टर को तुरंत जाकर दिखाना है, जो भी सबसे करीब है उसको जाकर देखना है।

0: क्योंकि ये रिएक्शन जैसे सांस लेने से दिक्कत होता है, ये सब एक गंभीर अच्छा नहीं है। हमको देखना है कि क्या कर
1: क्या रिएक्शन हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई है। तो ये जो तीन बातें आपने बताई कि अगर कोई एलर्जी होती है, कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बुखार हद से ज़्यादा तेज़ है, तो बेशक ऐसे मामले में आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक और आज हम टीकाकरण पर बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने बात की बच्चों के टीकाकरण के विषय में, अब हम बात करेंगे बड़े बुजुर्गों के टीकाकरण के विषय में। तो ज़रूर आप हमारा साथ दीजिए, आज की चर्चा कार्यक्रम को जारी रखते हैं एक गीत के बाद।
2: आज की

0: आज की चर्चा का कार्यक्रम आप सुन पा रहे हैं इस वक्त रेडियो मॉरिशस पर MBC के तीसरे चैनल पर, इसका सीधा प्रसारण और MBC के रेडियो मॉरिशस फेसबुक पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस वक्त तकनीक पर हमारे साथ बने हुए हैं फैजान, साथ है हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरूसा और हमारी प्रोड्यूसर शीतल लुबिन। और इसी के साथ आज हम बात कर रहे हैं टीकाकरण पर। जी हाँ, टीकाकरण का अभियान बहुत ही हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसे बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है, अवगत कराया जाता है, और इसी के साथ टीकाकरण कई सारे ऐसे केंद्रों में भी लगाया जाता है। और जब हम बच्चों की बात करते हैं, साथ ही साथ अभी बड़े बुज़ुर्गों की बात करते हैं, तो बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी ये प्रावधान किया जाता है कि विंटर सीज़न आने से पहले, यानी बस ठंड शुरू होने से पहले टीकाकरण के लिए बहुत ही उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर जी से कि डॉक्टर, अभी जैसे वयस्क और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको टीका लगाना क्यों आवश्यक हो जाता है?
1: बस बड़े बुजुर्गों से क्यों बोलते हैं ना, समय के साथ साथ इम्यूनिटी भी कम हो सकती है। कुछ बीमारियों बुजुर्गों में अधिक गंभीर हो सकती हैं, इसीलिए उनके लिए भी कुछ टीका बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये एंटी फ्लू वैक्सीन होते हैं,
0: ग्रिप जिसे कहते हैं,
1: क्योंकि बुजुर्गों में कुछ कुछ बीमारी अधिक होती हैं, जैसे कि फ्लू होता है, तो इसीलिए एंटी ग्रिप वैक्सीन कैंपेन जो मॉरिशस में हुआ वो मई और जून के
0: अंतराल में, हाँ,
1: कुमोसमा लिवेया,
0: हाँ, जैसे शुरुआत में विंटर सीजन की शुरुआत में
1: लगाया जाता है। और बाकी वैक्सीन जो हैं वो इमरजेंसी रूप में देते हैं। तो हमको ये फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, टेटानस बूस्टर और COVID-19 बूस्टर दे सकते हैं
0: जी।
1: पर ये डिपेंड करता है क्योंकि लोग एक साल में एक वैक्सीन करते हैं वो ठीक है,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: पर ज़्यादा वैक्सीन करने से वो नहीं, they don't like it।
0: तो और कई बुजुर्गों का ऐसा मानना है कि भाई मैं बीमार नहीं हूं तो मुझे वैक्सीनेशन क्यों लगाना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर जी?
1: देखो, जब मैं पेशेंट को देखता हूं जो सिक्योरिटी सोशल केयर के द्वारा, तो हम घर घर पर जाते हैं, टीकाकरण लगाते हैं। तो वहां पर जब हम कुछ कुछ बुजुर्ग वो खुश हो जाते हैं जब हम आते हैं, फिर वैक्सीन खुश हो जाते हैं। और कुछ होता भी है कि वो बोलते हैं मैं कभी नहीं वैक्सीन किया हूँ, क्यों करूँ, अगर मैं करूँगा तो
0: ज़्यादा
1: बीमार हो जाऊँगा, और मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव उनके सोचने का है कि अगर मैं टीकाकरण करूँ तो मेरा हड्डी कमजोर हो जाएगा, मैं कुछ नहीं, ये एक जानलेवा, ये बीमारी लाएगा, ये एक सोच है, गलत सोच है। पर इसमें हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये वैक्सीन क्या है
0: और क्यों लगाना चाहिए,
1: क्यों लगाना चाहिए। ये सब जैसे एंटी फ्लू वैक्सीन जो हम देते हैं वो लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। तो लाइफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जैसे हम पहले एक्सप्लेन किया, हम ये बीमारी वायरस को लेते हैं, उसके अंदर को न्यूट्रल

0: पैरालाइज करके एक डोज में इंजेक्शन बनाते हैं. ये इंजेक्शन हम शरीर में डालते हैं तो शरीर में ये वायरस एटेन्यूएटेड है तो इनएक्टिवेटेड है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मल्टीप्लेट नहीं कर सकता है. तो जब ये वैक्सीन शरीर में डालते हैं हमारे सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम जैसे हमारे सोल्जर,
1: हाँ जी,
0: वो जाता है और पहचान लेता है,
1: डिटेक्ट कर लेता है
0: कि ये फॉरेन बॉडी हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमको उसको मारना है. तो एंटीबॉडीज बनाते हैं जैसे सोल्जर का तलवार.
1: बिल्कुल.
0: तो इसके साथ जब हम देखते हैं तो ये इम्यूनिटी एंटीबॉडी जो बनाते हैं बॉडी में एक मेमोरी होता है. मेमोरी इस सेल होता है जो जब ये बीमारी का असली बीमारी को हमें हो जाता है तो क्या होता है बॉडी ये वही बीमारी है ना जो
1: आया था
0: तो ये
1: तब उसे तैयार करता है, मतलब शरीर को और मजबूत बना देता है
0: तो इससे जब हम बुजुर्गों के साथ ये एक्सप्लेन करते हैं ये क्या है जो हम दे रहे हैं तो फिर वो ज्यादा
1: उन्हें समझ में आता है.
0: हाँ.
1: उन्हें समझ में आता है और उसके लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं.
0: तो
1: डॉक्टर जी, ये जो फ्लू का इंजेक्शन है या औंची ग्रिप का जो इंजेक्शन है वो किस उम्र वालों को ज्यादातर दिया जाता है? मतलब जो जो बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि किस उम्र वालों को ये लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है?
0: अगर हम देखते हैं तो मॉरीशस का मामला, हर साल हम इन्फ्लुएंजा का कैंपेन करते हैं और कैंपेन से 60 एंड अबव
1: यानी जो 50-60 साल से ऊपर के जो है उनके लिए जरूरी है.
0: उनके लिए
1: पर जो लोग 50 के और 60 के बीच में है क्या उन्हें भी लगाया जाता है?
0: हाँ, जैसे कि प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट होते हैं वो भी जरूरी है क्योंकि बच्चे के लिए उसको प्रोटेक्शन मदर
1: और बच्चे के लिए,
0: दोनों माँ और बच्चों के लिए दोनों उसका सुरक्षा होना है. और जो भी डिजेबल भी हैं जो घूम फिर नहीं सकते हैं तो वो भी इम्यूनिटी उसका इम्यूनिटी कम होता है तो उसको भी टीकाकरण
1: जरूरी है,
0: एंटी फ्लू वैक्सीन का जरूरी है.
1: और ये जो डोजेज है, मतलब एक बार जब आपने औंची ग्रिप का इंजेक्शन लगाया तो ये कितने समय के बाद उन्हें दोबारा से लगाना चाहिए?
0: हम एक साल में एक बार करते हैं.
1: अच्छा, मतलब उसका कवर हो जाता है एक साल के लिए पूरा.
0: क्योंकि अगर हम देखते हैं डिजीज को देखते हैं, बीमारी को देखते हैं, ये वायरस क्या होता है, जब विंटर आता है, विंटर का सीजन जुकाम का सीजन ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो इसीलिए विंटर के पहले मई और जून में हम टीकाकरण करते हैं. जब टीकाकरण करते हम बचते हैं बीमारी से, पर हो भी सकता है पर उसका रिजल्ट कम है. उसका जो शरीर फाइट करता है बीमारी को गंभीर नहीं बनाता है. तो फ्लू वैक्सीन के लिए जब हम एक साल करते हैं तो नेक्स्ट साल मई और जून में ही होता है.
1: अच्छा.
0: क्योंकि ये वायरस क्या होता है वो डिफरेंट तरह के स्ट्रेन में इवॉल्व करते हैं. जैसे कि आज इस साल के वैक्सीन है, नेक्स्ट साल के डिफरेंट होगा.
1: मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है तो उसमें वो इवॉल्व करते हैं.
0: तो सेम वैक्सीन नहीं है.
1: अच्छा, मतलब फिर हर बार अगला so, मतलब
0: लैबोरेटरी में काम करते हैं जैसे ये वैक्सीन बनाते हैं
1: जी.
0: वो इवोल्यूशन, वायरस का इवोल्यूशन प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसे इवॉल्व करते हैं
1: उसके अनुसार
0: वैक्सीनेशन
1: तैयार किया जाता है. और जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे गर्भवती महिलाओं में भी टीका लगाया जाता है, वैसे देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं को हर पांचवें और आठवें या सातवें महीने में उन्हें टेटनस का भी इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये किसके लिए होता है?

0: इससे इसे लगाना क्यों जरूरी होता है?
1: ये माँ को बचाने के लिए और बच्चे को भी सुरक्षित रखने के लिए है। टेटानिस, डिफ्टेरिया भी है और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी है।
0: अच्छा।
1: ये तीनों हम गर्भवती महिलाओं के लिए करते हैं। जब हम देखते हैं टेटानस, जब हम हमको चोट लगता है तो टेटानस वैक्सीन होता है जो भी डिस्पेंसरी है, और टेटानस वैक्सीन 2 साल के लिए शरीर में अच्छा है, 2 साल का इम्यूनिटी देता है।
0: अच्छा, मतलब उसका डोज उतने दिनों तक आपके शरीर में एंटीकोर बना के रखता
1: है। और 2 साल के बाद जब चोट होता है तब उसको फिर से करना है। तो गर्भवती महिलाओं के ये टिटानस का ये डोज जो देता है वो उसको बचाने के लिए और बच्चों को
0: एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना कर रखता है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप यात्रा के बारे में बता रहे थे, तो इस पर आप थोड़ा सा और हमें दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि मतलब यात्रा पर जाने से पहले कई सारे लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, मुझे ये लगाना ज़रूरी नहीं है। तो अगर मान लीजिए अगर किसी ने इंजेक्शन ना लगाया या वैक्सीनेशन नहीं किया तो क्या सारी संभावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं?
1: ये निर्भर होता है कि किस देश में आप जा रहे हैं। कुछ देशों में येलो फीवर, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी या टाइफाइड का टीकाकरण की आवश्यकता है।
0: अच्छा।
1: तो ये ओब्लिगेटरी है कुछ देशों में, क्योंकि वहाँ पर ये बीमारी है।
0: Okay.
1: तो जब हम वीज़ा लगाते हैं ये सब करते हैं, वो बोलते हैं हमको कि ये वैक्सीन करना है। यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह लेना उचित है। मॉरीशस में ये प्रोसीजर वैक्सीनेशन सेंटर जो पोलवी में म्यूचुअल एड बिल्डिंग में होता है, और क्लिनिक भी में जो प्राइवेट क्लिनिक होता है वो वहाँ भी पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाइए उसको या उसको फ़ोन करें, सलाह लीजिए कि आप किस देश में जा रहे हैं,
0: कौन सा इंजेक्शन आपको लगाना चाहिए।
1: वो बताएंगे आपको कौन कौन सा इंजेक्शन लगाना है और कितने समय से कि पहले ये जाने के पहले, कितने समय जाने के पहले से ये टीकाकरण करना है। मेरा ओपिनियन, इन माय ओपिनियन, जाने के पहले लगभग 3-4 महीने से पहले या उससे अधिक फ़ोन करिए, आप इन्फॉर्मेशन ढूंढिए, ले लीजिए कि मैं इस देश में जा रहा हूँ या रही हूँ, तो मुझे कौन सी टीका लगाना चाहिए और क्या क्या उसका ये समय जो है, क्योंकि कुछ टीका एक हफ्ते के बाद काम करते हैं, एक हफ्ते के बाद सही है, कुछ टीका नहीं है, कुछ टीका दो डोज होना चाहिए।
0: अच्छा, मतलब एक टीका नहीं, उसके कंप्लीट दो राउंड होने चाहिए, तब जाकर उसका असर शुरू होता है,
1: तब उसका असर बॉडी को, इम्यूनिटी को मजबूत कर देता है। जैसे हम जाते हैं विदेश, वहाँ पर जो भी हैं जो इस बीमारी के साथ हैं, तो हम इस जगह पर जाते हैं तो हमको पता नहीं है कहाँ ये बीमारी है, कहाँ नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और जो देश हैं जो अंडर डेवलप्ड देश जो हैं, वहाँ जब हम जाते हैं तो बहुत सी ये जैसे हेपेटाइटिस ए भी बोला है, ये बहुत होता है जो
0: बड़ी मात्रा में पाया जाता है,
1: सैनिटेशन ये सब। तो हम होटल में रहते हैं
0: पर फिर भी
1: हम लोगों से मिलते हैं,

0: बिल्कुल उनका कांटेक्ट में है,
1: कांटेक्ट में है, तो अगर ये हेपेटाइटिस उसको मिलता है और वो कुछ उसका असर नहीं है, ये भी होता है कि
0: कारिया में, हाँ
1: कारिया होते हैं, तो हम देखते हैं लोगों को वो कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ बड़ बीमारी उसके साथ है, तो ये भी होता है। तो अगर हम इस
0: कांटेक्ट में आते हैं,
1: तो हमको ये बीमारी हो सकता है,
0: लगने के चांसेस पूरे रहते हैं
1: चांसेस। इसीलिए पहले बोलते हैं ना प्रिकॉशन,
0: जी बिल्कुल, हमें अपने आप को तैयार रखना है कि इस बीमारी से हमें बिल्कुल अगर कांटेक्ट में आते भी हैं तो वो बीमारी आपको असर नहीं करेगी। और डॉक्टर जी मान लीजिए, मतलब जब बाहर जाते हैं यूजुअली जब हम टीकाकरण करवाते हैं बच्चों को, वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसमें भी उम्र होती है कि एक सर्टन उम्र के मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लगाना ज़रूरी नहीं है, पर एक सर्टन एज के बाद लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है?
1: ये क्यों होता है, क्योंकि बच्चे में जब छोटे हैं तो उसका कैंपेन जो जैसे रिपोर्ट कार्ड जैसे वो कुछ कुछ टीका लगाते हैं, तो इससे वो सब टीका करते हैं
0: जी,
1: उसका इम्यूनिटी होता है इस जो भी बीमारी है। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये डिफरेंट हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी जब हम बच्चे थे तो अभी से टिक नहीं
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो जब देखते हैं बड़े बड़े लोग में तो वो कुछ जैसे येलो फीवर है, जैसे हेपेटाइटिस है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर देना चाहिए।
0: ओके,
1: जो हम बच्चे में वैक्सीनेशन की, जब हम बड़े हो जाते हैं तो
0: उसे ये बूस्ट करना है,
1: बूस्ट करना है। ये बूस्ट करने से क्या होता है, ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है।
0: सही बात,
1: क्योंकि हम जो विदेश जाते हैं तो वहाँ एक्सपोजर है,
0: बिल्कुल,
1: तो इस एक्सपोजर से हमको सावधान रहना है। तो सावधान रहने से क्या, प्रोटेक्शन होना चाहिए
0: क्योंकि आप कहीं पर भी जा सकते हो और ये सारी चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती है आपको, कब कहाँ पर इसका असर हो जाए ये पता नहीं होता, इसीलिए आपको अपनी तरह से पूरी तैयारी दिखानी है। डॉक्टर जी मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जब COVID-19 आया था, COVID-19 के बाद एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया गया था, कैंपेन्स चलाए गए थे टीकाकरण के लिए, और ये बहुत ज़रूरी था सभी के लिए क्योंकि एक तरह से हम विश्व भर में एक ऐसे युद्ध से मतलब जूझ रहे थे जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर हम कह सकते हैं कि COVID-19 के बाद वैक्सीनेशन पर जो इंसानों का जो विश्वास है वो थोड़ा डामाडोल हुआ, क्योंकि अब वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी लोग बहुत सोचते हैं कि कहीं ये उसका दुष्प्रभाव उनके शरीर पर ना पड़े, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: कोविड के दौरान लोगों ने टीकों का महत्व समझा, क्योंकि ये कैंपेन जो हुआ वो मॉरिशस में सिर्फ नहीं,
0: पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर में, बिल्कुल।
1: साथ ही कुछ गलत जानकारियों से लोगों उसका उस पर डाउट किया, पर जब हम कोविड वैक्सीन को एक तरह से देखते हैं वो जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे महिलाओं में उसका पीरियड डिसबैलेंस होता है जो साइड इफेक्ट किया, इसीलिए ये वो
0: घबराहट
1: होती
0: एक डर,
1: है,
0: हाँ।
1: एक डर होते हैं, तो सही वैज्ञानिक जानकारी पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोविड को देखते हैं तो वैक्सीन एक जैसे कोविड हुआ 3 महीने के बाद वैक्सीन शुरू हो गई थी, तो अगर हम देखते हैं एक वैक्सीन को अच्छी तरह से तैयार करके ये सालों लग जाते हैं, पर हमारे पास वक्त टाइम नहीं
0: बिल्कुल,
1: था
0: बिल्कुल,
1: तो इसीलिए कुछ कुछ साइड इफेक्ट हुए, पर ये मेरा सोच है कि अभी क्योंकि ये वैक्सीन हम जो डेवलप

0: वैज्ञानिकों डेवलप करते हैं
1: बिल्कुल
0: वो इवोल्यूशन के द्वारा हैं
1: बिल्कुल।
0: और कोविड एक ऐसा बीमारी थी कि वो जल्दी इवॉल्व कर रहा था,
1: बहुत ही जल्दी,
0: एक स्ट्रेन का वैक्सीन किया दूसरे स्ट्रेन हो गया,
1: हो गया बिल्कुल, एक, हो गया। हाँ जी, बिल्कुल।
0: तो इसीलिए बहुत लोगों का जान चली गई इसके साथ, क्योंकि एक स्ट्रेन एक देश में था, एक दूसरे देश में दूसरा स्ट्रेन था, और हम टीकाकरण करते थे,
1: एक तरह से देखा जाए तो पैनिक का एक बहुत बड़ा सिचुएशन बना हुआ था।
0: तो ये एक मेली मेलो था, जैसे हम देखते हैं कोविड का, ये एक मेली मेलो था, क्योंकि एक स्ट्रेन का वैक्सीन तैयार हुआ, दूसरे स्ट्रेन आ गया, और दूसरे स्ट्रेन था
1: तैयार होते होते, मतलब अब तीसरी या चौथी बार हम लोग को ये असर, तीसरी वेव, चौथी वेव आती गई ऐसे ही।
0: तो इसीलिए लोगों ये टीकाकरण पर विश्वास थोड़ा
1: सा डामाडोल हुआ बिल्कुल। और डॉक्टर जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल, अभी समय बहुत कम रह गया है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे जो श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है, इस पर बल थोड़ा देते हुए आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश है कि टीकाकरण एक सुरक्षित, प्रभावित और जीवन बचाने का उपाय है। अपने बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों को का टीकाकरण समय पर करवाइए। सही जानकारी पर भरोसा कीजिए और अफवाहों से बचाइए, क्योंकि गलत, जब हम टिकटॉक देखते हैं, जो भी
1: जो गलत अफवाहें हैं उससे हमें बचना है,
0: तो इससे हमें बचना है
1: बिल्कुल।
0: तो सही वैज्ञानिकों जो भी प्रोग्राम हैं, जहाँ डॉक्टर आते हैं, कुछ स्पीच करते हैं, वहाँ से जानकारी लेते हैं वैज्ञानिकों से।
1: और कई कई बार ऐसा होता है कि मन में आपके सवाल आए तो सही इंसान से आप वो सवाल पूछें, ऐसा ना हो कि आप जो जानकार व्यक्ति नहीं है आप उनसे सवाल पूछते हैं और आपको गलत धारणाओं से पाला पड़ता है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जब कैंपेन्स चलाए जाते हैं या आपके सेंटरों में जब डॉक्टर्स आते हैं, वर्कशॉप्स हैंडल करते हैं, वहाँ पर आप जाकर ये सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मैं समझती हूँ डॉक्टर उसका सही जवाब आपको दे सकते हैं। तो
0: और एक अंत में मैं बोलना चाहता हूँ
1: जी,
0: एक स्वस्थ मॉरिशस और एक स्वस्थ दुनिया के लिए हम सब मिलकर योगदान दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: टीका लगवाइए, सुरक्षित रहिए।
1: बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर जी आपने, और बिल्कुल टीका आपके सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आए दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसे टीके बनाने के लिए, जिससे कि हम अपने शरीर को सुरक्षित रख सके और आने वाले जो बीमारी जो इवॉल्व होती जा रही है दिन ब दिन, उसके लिए हम अपने शरीर को तैयार कर सके। तो इसके लिए डॉक्टर बसावन को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारी तकनीक पर हमारा सहयोग दिया फैज़ान ने, और साथ ही साथ उरुसा और शीतल लुबिन जो हमारी प्रोड्यूसर रही, साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता इस वक्त टीवी और रेडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और बेशक आने वाले दिनों में ऐसे ही कार्यक्रमों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: स्टूडियो में आगे रजनी उनसे मिलते हैं जहां इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। राज्यसभा में आज भी बजट बहस जारी। दिन के 11:30 बजे कार्य जारी रखे जा रहे हैं। कल बजट पर बहस के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए। विपक्षी सांसद रुआना बेहौजे ने एक सुवरेन फ्यूचर फंड कायम किए जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि पर्यटन मंत्री किशोर जिवाल ने बजट 2026-2027 के प्रावधानों की सराहना की। उन्होंने मॉरिशस गंतव्य के टिकाऊ विकास का उल्लेख किया। उधर लेबर पार्टी के सांसद रविराज बिचुक ने कहा कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से वित्तीय कंसोलिडेशन मजबूती की प्रक्रिया चलाई जा रही है। उन्होंने कृषि उद्योग को गतिशील बनाए जाने के लिए निर्धारित कदमों, मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव के विस्तार की भी सराहना की। इस साल बजट में कोस्टल इरोजन एडाप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान है। इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिक वाले स्थलों पर पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक नेशनल शोर लाइन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम भी होगा जो एक गेम चेंजर हो सकता है। मस्कारेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक एंटी साइक्लोन का असर मॉरिशस पर पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों के लिए स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। पूरे इलाके में ठंड और अस्थिर हवाएं चल रही हैं। समुद्र में दक्षिण पश्चिमी इलाके में समुद्र खराब ही रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कुछ इलाकों में समुद्र में भी जाना काफी मुश्किल होगा। विदेशी समाचारों की ओर एक बार फिर से मौसम की ही बात करते हैं, लेकिन गर्मी की यूरोप में जानलेवा गर्मी की लहर का प्रभाव है, जहां पर रेड अलर्ट घोषित है। बहुत से लोग नदियों, झीलों और तटों की ओर राहत पाने के लिए निकल पड़े हैं। पिछले गुरुवार से फ्रांस में भारी गर्मी की लहर के चलते डूबने के कारण 40 लोगों की मौत हुई है। वहां के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लिकोनी ने कहा कि कई प्रमुख शहरों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर है। बता दें कि अब तक फ्रांस, स्पेन और इटली सबसे प्रभावित इलाके हैं और फ्रांस में ही इन पिछले दिनों 43 डिग्री सेल्सियस पार कर गया ये तापमान। रुख करते हैं भारत। भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम को राष्ट्रपति भवन में रोहित शर्मा को सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह द्वितीय में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में की हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। गायिका अलका याग्निक को राष्ट्रपति मुर्मू ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारतीय कलाकार माधवन को भी राष्ट्रपति मुर्मू के कर कमलों से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। विभिन्न भाषाओं में भारतीय सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए। और फुटबॉल विश्व कप के चलते आज ग्रुप ए, बी और सी की टीम मैदान पर उतर रही है। आज रात कनाडा का मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड के साथ, मेक्सिको खेलेगा चेक के साथ और ब्राजील खेलेगा स्कॉटलैंड के साथ। ये भी बता दें कि फीफा विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया। पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को पराजित किया 5-0 से। इंग्लैंड घाना का मैच ड्रॉ रहा 0-0 और आज सुबह 6 बजे कोलंबिया का मुकाबला हुआ था कोंगो के साथ, कोलंबिया ने कोंगो को 1-0 से हराया। और ये भी बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा इतिहास, बने पुर्तगाल के नंबर 1 गोल स्कोरर। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार।

0: रामारोज शामुनी में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती दुली जो सीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे सुनील प्रवीण दुली के घर रामारोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। अवेन्यू फ्लॉम्बॉयंट इजी दो रोज में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद देव जो आता जो मुंशी नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके भाई श्री हरिदेव सोआता के घर अवेन्यू फ्लॉम्बॉयंट इजी दो रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। श्रीमय मात्या क्लेमेंसिया में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेश रामकालावन जो दानेश नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री संदेश रामकालावन के घर श्रीमय मात्या क्लेमेंसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रॉयल रोड बनाके में 108 साल के 101 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनमत्या भिनिक पैदाशी नाम सिपुल जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी और श्रीमानु भिनिक की मां थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर रोथवायल बनाके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: बुधवार 24 जून घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:07 होने को हैं। भक्ति धारा इस कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर हम आप सबकी सेवा में जुड़ चुके हैं, आप सबका साथ देने के लिए आ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और सवेरे से आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। श्रोताओं, भक्ति धारा ये जो कार्यक्रम है चलेगा दिन के 11 बजे तक, और आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम विनय अंजलि भी डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में। श्रोताओं, कहते हैं जीवन में कभी कभार कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो हमें एक ही बार मिलते हैं, और जब हम उन्हें गंवा देते हैं तो पुनः जीवन भर हमें जो है प्रतीक्षा करनी पड़ती है ऐसे अवसरों के लिए। इसलिए कहते हैं ना कि जीवन में जो भी अवसर हमें मिलते हैं, फिर चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सभी अवसरों का लाभ हमें उठाना चाहिए। सभी अवसरों के बारे में हमें अवश्य सोचना चाहिए। क्या पता कौन सा अवसर हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जा दे, क्या पता कौन सा अवसर हमारे लिए ईश्वर ने स्वयं भेजा है जिसके द्वारा हम सफलता को प्राप्त कर पाए, जीवन में आंतरिक सुख को प्राप्त कर पाए, जीवन में जो है एक सुखी जीवन व्यतीत करने का ये एक मार्ग हो। तो इसलिए किसी भी छोटे बड़े अवसर को हमें कभी भी जो है जाने नहीं देना चाहिए व्यर्थ में, और उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ निष्ठापूर्वक हर एक कार्य को करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन जो है सफलता की ओर जाए, हम जीवन में सफल हो। तो चलिए, इन्हीं कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का श्री गणेश हम करते हैं।

0: रेडियो मॉरिशस पर
1: विघ्नों के हर्ता भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम को आरंभ किया। कहते हैं ना कि आरंभ अच्छा हो तो अंत भी अपने आप में अच्छा ही होता है, और हर एक आरंभ के लिए, हर एक शुरुआत के लिए पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है, पूरी विश्वास के साथ। उस ईश्वर पर एक अटूट विश्वास हो तो जीवन में हम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अब समय हुआ है हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में, सुने कार्यक्रम विनय अंजलि।
0: लीजिए सुनिए डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।

प्रिय श्रोतागण सादर नमस्ते। विनयांजलि में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करेंगे डॉक्टर सतीश प्रकाश के गाए एक भजन से। आप इस भजन का आनंद उठाइए।

आज का मंत्र आधारित है ऋग्वेद की एक ऋचा पर, जो इस प्रकार है। ओम सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुर परिवृता दधिरे दिविक्षयम ताम आविभास नमसा सुवृत्ति भीर्महो आदित्याम अदितिम स्वस्तये। भाव है कि यजमान को चाहिए कि गुणों से प्रकाशमान सबके बुद्धि चाहने वाले जो विद्वान यज्ञ में आते हैं उनकी ओर कुटिल कर्मों से रहित ज्ञान प्रकाश में रहने वाले महान विद्वानों और विदुषी स्त्रियों की हव्य अन्न और उत्तम स्तुतियों से अपने कल्याण के लिए सेवा करें। पहला शब्द मंत्र का है सम्राज्य, अर्थ है कि अपनी सद्विद्या सद्ज्ञान सद्गुणों और शुभ कर्मों से प्रकाशमान यशस्वी होवे। सुवृद्ध अपने ज्ञान कर्म से सबको बढ़ाने वाले बने, उन्नति करने वाले बने। यज्ञम यज्ञ को अपरिवृता कुटिलता रहित अकुटिलता दिवी ज्ञान प्रकाश से दधिरे धारण करते हैं। महान श्रोताओ, जब कोई यजमान यज्ञ करने के लिए बैठता है तब वह स्वाहाकार के मंत्रों के उच्चारण से पहले स्तुति प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्रों के पाठ के बाद स्वस्ति वाचन के मंत्रों का उच्चारण करता है। स्वस्ति का सामान्य अर्थ है कल्याण, दूसरों की भलाई। वह स्वस्ति वाचन के मंत्रों द्वारा सबके कल्याण की कामना करता। अभी जो मंत्र हमने पढ़ा उस मंत्र में परमात्मा से इसी कल्याण की कामना की गई है। कहा जा रहा है हे परमेश्वर, आपकी कृपा से जो अपनी सद्विद्या सद्ज्ञान सद्गुणों और शुभ कर्मों से प्रकाशमान यशस्वी हैं, अपने शुभ कर्मों से अपनी तथा दूसरों की उन्नति करने वाले हैं, यज्ञ को प्राप्त होते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, जो कुटिलता रहित हैं, उच्च सम्मान के पद पर जो विराजमान है यानी मोक्ष पद को प्राप्त करने के योग्य हो गए हैं, हम लोग उन महान तेजस्वी पुरुषों और अखंड वेद विद्या या तेजस्विनी स्त्रियों को नमस्कार करते हैं, अन्न पान आदि द्वारा तथा उत्तम प्रशंसा के योग्य वचनों द्वारा हम उनकी सेवा करें, जिससे वे हमें कल्याण का मार्ग दिखावें और हम भी उन जैसे गुण कर्म स्वभाव वाले होकर सुख को प्राप्त कर सकें। प्रिय श्रोताओं, इस ऋचा के माध्यम से यजमान प्रार्थना कर रहा है सम्राजो ये सुवृधो, जैसे सूरज के निकलने से रात का अंधकार समाप्त हो जाता है, सूर्य का प्रकाश चहुं ओर फैलकर धरती को प्रकाशमय बना देता है, दीन हो जाता है और उजाले में सभी लोग जीवन में उन्नति करने के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने अपने काम में लग जाते हैं, वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से भरपूर विद्वान और विदुषी लोग सूर्य के समान ही अपना ज्ञान प्रकाश देकर सबको उन्नति करने का रास्ता बताते हैं। श्रोताओ, ऐसे उत्तम कर्म करने वाले विद्वान विदुषियों की विनम्र भाव से हम

प्रशंसा करें और उनका सत्कार करें। मंत्र में एक शब्द आया अपरिवृता। अपरिवृता का अर्थ है जिसमें कुटिलता न हो, कुटिलता से जो खाली हो, जिसका स्वभाव टेढ़ा होता है, दूसरों को वह छलता है, धोखा देता है, वह कुटिल होता है, दुष्ट होता है। मंत्र में उपदेश है कि विद्वान विदुषी अपरिवृता यानि कुटिलता से रहित हों, अच्छे स्वभाव वाले हों। ऐसे ही विद्वान विदुषी दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, उन्नति करने का मार्ग बताते हैं। जिन विद्वान विदुषियों में छल और कुटिलता नहीं होती, वही अपनी शिक्षाओं से, अपने उपदेशों से, अपने सुंदर वचनों से सबका कल्याण कर सकते हैं। श्रोताओं, जब एक बालक या बालिका को कोई माँ बाप, एक अच्छे अध्यापक, एक अच्छे अध्यापिका के हाथों में सौंप देते हैं, तब उन्हें यह आशा होती है कि यह अध्यापक या अध्यापिका मेरे बच्चे के मन और मस्तिष्क का अपने अच्छे ज्ञान से, सुज्ञान से, सज्ञान से निर्माण कर देगा। उसके कल्याण के लिए, बच्चे की भलाई के लिए वह ऐसी शिक्षा देगा कि उस शिक्षा को आचरण में उतारने से बच्चे का जीवन सुख से भर जाएगा। इस मंत्र में उपदेश है कि इसे निश्चल और कुटिलता से रहित विद्वानों और विदुषियों की हम प्रशंसा करें, उनका सेवा सत्कार करें। इतिहास साक्षी है कि ऐसे उत्तम गुरुओं में अपने शिष्यों का जो कल्याण की भावना रही, उस कल्याण से बहुतों का भला हुआ। इस संदर्भ में हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आपने गुरु विरजानन का नाम सुना होगा। गुरु विरजानन बड़े निश्चल और कुटिलता रहित थे। उन्होंने स्वामी दयानंद को ऐसा ज्ञान दिया कि उस ज्ञान को प्राप्त करके स्वामी दयानंद महर्षि बन गए और असंख्य जनों के गुरु बनकर उन सब का कल्याण किया। इस मंत्र में यही उपदेश है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे ऐसे गुरु हों, ऐसे अच्छे शिक्षक हों जो हमारा कल्याण कर सके। श्रोतागण, अच्छे शिक्षकों, अच्छे डॉक्टरों, अच्छे बैरिस्टरों, अच्छे इंजीनियरों और अच्छे उद्योगपतियों को किसने बनाया, यह प्रश्न आपके सामने है। क्या आप नहीं जानते कि इन सब के निर्माण में अच्छे विद्वान विदुषी अध्यापक अध्यापिकाओं का हाथ है? उन्होंने उनको सज्ञान देकर उनके दिमाग के बल को बढ़ाया, उनमें शक्ति का संचार किया और उनके द्वारा कई लोगों का कल्याण किया। विश्व का कल्याण सच्चे विद्वान ही कर सकते हैं। इसलिए ऋग्वेद की यह ऋचा उपदेश दे रही है कि हे यजमान, तुम ईश्वर से प्रार्थना करो कि तुम्हें सच्चे विद्वान विदुषियों के उपदेश हमेशा प्राप्त होते रहे और तुम ऐसे विद्वानों की प्रशंसा और सेवा सत्कार से कभी वंचित न रहो। सौभाग्य है कि हम अपने ऋषि मुनियों के उपदेशों को धर्म ग्रंथों में प्राप्त करते हैं और उन उपदेशों के आधार पर हम अपना हित कर लेते हैं, अपना कल्याण कर लेते हैं। यदि उन अकुटिल महात्माओं ने इस प्रकार की शिक्षाएं अपने ग्रंथों में न दी होती तो हमारा कल्याण कदापि नहीं होता। इसलिए हम ऐसे विद्वानों को सदा आदर की दृष्टि से देखें और परमात्मा से प्रार्थना करते रहें, विनय करते रहें कि हमारे देश में ऐसे अकुटिल छल रहित विद्वान विदुषी पैदा होते रहें। इस कार्यक्रम को टेक्नीशियन के रूप में सजाया श्रीमती अंजू लक्ष्मण जी, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आपने इसको सुना, आपके प्रति

आभार व्यक्त करते हैं। अंत में आप आदरणीय पंडित वाल्मीकि महेश जी के स्वर में एक बहुत ही मधुर भजन सुनेंगे और हमें अनुमति देंगे। हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गंगू की प्रस्तुति में कार्यक्रम विनय अंजलि।
1: श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर गंगू जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम विनय अंजलि। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर गंगू जी को हम धन्यवाद देते हैं। भक्ति धारा, यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर। दिन के 10:33 हो चुके हैं। और श्रोताओं, भक्ति की यदि हम बात करें तो भक्ति अपने आप में यह शब्द बहुत छोटा लगता है सुनने में, लेकिन इस शब्द में बहुत ही गहराई छुपी है। क्योंकि भक्ति ऐसा नहीं है कि बस ईश्वर के सामने बैठना ही भक्ति है, ईश्वर के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करना ही भक्ति है। भक्ति तो हमारे हर एक श्वास में होनी चाहिए। भक्ति हमारे जीवन के प्रति, भक्ति हमारे कर्मों के प्रति, भक्ति हमारे हर एक कार्य के प्रति, भक्ति अपने आप में निष्ठा और विश्वास।

विश्वास का एक रूप है, क्योंकि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास है, ईश्वर पर हम पूर्णतः विश्वास करते हैं, तो भक्ति के रूप में यह हमारे भीतर दिखाई देता है। तो हमें अपने आप पर भी विश्वास है, हमें अपने जीवन पर भी विश्वास है, हमारे कर्मों पर भी विश्वास है। तो यदि सभी चीज़ों में यदि भक्ति जुड़ जाए ना, तो मानो ईश्वर जुड़ जाते हैं।

जी हाँ, ईश्वर का नाम ही तो है जो हमें पार लगाता है। ईश्वर का नाम ही है जो हमारा उद्धार करता है। ईश्वर का नाम ही है जो हमारा कल्याण करता है।

जी हाँ, भगवान का नाम होता ही ऐसा है जिसे लेने से मानो हमारे आसपास का वातावरण अपने आप में सकारात्मक हो जाता है। मन को तो शांति मिलती ही है, मन जो है शांत हो जाता है, मन जो है एकांत में चला जाता है। क्योंकि कभी कभार आजकल की जो हमारी

जीवन शैली हो गई है, जहाँ पर हम निरंतर किसी न किसी वस्तु के पीछे, किसी न किसी इच्छा के पीछे जहाँ हम भागते फिर रहे हैं, वहीं पर थोड़ी देर के लिए कहते हैं ना, मन को शांत करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि इतने सारे विचारों के बीच कभी कभार जब सही निर्णय लेने का समय आता है तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं, सही गलत के बीच फैसला नहीं कर पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए मन की शांति बहुत आवश्यक होती है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिन के 10:52 होने को है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये विज्ञप्ति सुन लीजिए। मौसलमा तेरासिन, मौसलमा लेडी बाकले सुयाक, NHDC तेरासिन, यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि गुरुवार 25 जून को यानी कि कल, यहाँ पर सुबह के 8:30 से दोपहर के 3 बजे के बीच, सुबह के 8:30 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से, और कार्य सम्पन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक जरूरी विज्ञप्ति CEB की ओर से।

और चले श्रोताओं, भक्ति धारा इस कार्यक्रम के लगभग हम अंत तक भी आ गए हैं। सवेरे के 6 बजे से अभी तक आप हमारा साथ निभाते रहे, इसके लिए धन्यवाद। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन जो है सदा सुखमय हो, सदा आनंद से भरा हो, हर सुख आपको मिले, जीवन में हर प्रकार की सफलता आपको मिले, परिवार में अपनापन हो, परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह हो। इन्हीं सभी विचारों के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम देने जा रहे हैं। इस अंतिम आरती के साथ आज का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। और आपको बता दें 11 बजे जो है आप सैयदा की पेशकश में सुन पाएंगे उर्दू प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा, और हमारी आपकी भेंट होगी कल 4 बजे भक्ति सागर इस कार्यक्रम में। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार आप सभी को और शुभ दिन हमारी ओर से।

0: रशिया के स्टूडियो से मिलते जाते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। आज दिन के 11:30 बजे राष्ट्रीय सभा के कार्य जारी रखे जा रहे हैं। कल बजट पर बहसों के दूसरे दिन पर 19 लोगों के वक्तव्य हुए। बता दें कि प्रधानमंत्री ने पिछले शुक्रवार को अपने बजट भाषण में 15 बार रेजिलियंस मजबूती शब्द का इस्तेमाल किया। उनकी सरकार मॉरिशस के लिए यही कायम करना चाहती है और उनके अनुसार पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी के लिए यही कोशिश बढ़ाई जा रही है। इस साल बजट में कोस्टल इरोशन एडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए 4 बिलियन रुपए का प्रावधान है। इस तरह 11.5 किलोमीटर के तटीय इलाकों का पुनर्वास किया जाएगा जो देश के 17 प्राथमिक वाले स्थलों पर हैं। उस विधेयक से जुड़ी अनिश्चितताएं बढ़ी हैं जिसकी बदौलत यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को सागर द्वीप समूह की वापसी पर समझौते को अमल में लाए जाने की बात कही गई है। बरतानी प्रधानमंत्री सखेर स्टॉमर द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की घोषणा के बाद ऐसी स्थिति बनी हुई है। मस्कारिंस के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाले एक एंटी साइक्लोन का असर मॉरिशस पर पड़ रहा है और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों के लिए स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। पूरा इलाके में ठंड और अस्थिर हवाएं चलेंगी। समुद्र में दक्षिण पश्चिमी इलाकों में समुद्र खराब ही रहेगा। 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और कुछ इलाकों में समुद्र में जाना भी मुश्किल होगा। मौसम की ही बात करते हैं लेकिन इस बार भारत में जी हाँ मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश से सड़कें रेलवे ट्रक ट्रेक और सबसे जलमग्न हो गई है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। IMD ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सेंट्रल रेलवे ने बताया कि मुंबई लोकल की ट्रांस हार्बर लाइन पर ट्रक खराब होने की घटना के कारण अब तक 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और अब मौसम की ही बात करते हैं लेकिन रुख करते हैं इंग्लैंड और वेल्स के कई इलाकों में आज से अगले गुरुवार तक के लिए अति गर्मी के चलते रेड अलर्ट की चेतावनी जारी कर दी गई है। पहले से ही एम्बर अलर्ट जारी है। रेड अलर्ट गंभीर रूप से गर्मी की चेतावनी है यानी जान का खतरा भी हो सकता है। दक्षिणी इंग्लैंड में तापमान करीब 37 से 39 सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान। इंग्लैंड और वेल्स में कई स्कूल आंशिक रूप से या पूरी तरह से बंद हो गए हैं। और फुटबॉल विश्व कप के चलते आज ग्रुप ए बी और सी की टीम मैदान पर उतर रही है। आज रात कनाडा का मुकाबला होगा स्विट्जरलैंड के साथ, मेक्सिको खेलेगा चेक के साथ और ब्राजील खेलेगा स्कॉटलैंड के साथ। मौसम संबंधी संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रामारोज शामुनी में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चंद्रावती दुली जो सीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे सुनील प्रवीण दुली के घर रामारोड शामुनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौकोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:00 PM Avenue Flamboyant Isidore Rose में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंददेव जोवाता जो मुंशी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके भाई श्री हरिदेव सोवाता के घर एवेन्यू फ्लैम्बॉयं इसिडोर रोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:00 PM Chemin Mathia Clemencia में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेश राम कलावन जो दानिश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेट

0: देशी संदेश रामकलावान के घर शिव में मत्स्याक्लमासिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। रोथ रॉयल बनाकर में 101 वर्ष की आयु में श्रीमती धनमत्या भिनिक पैदाची नाम सिपुल, जो चंपा नाम से भी जानी जाती थी, और श्रीमानु भिनिक की माँ थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर गोथवायाल बनाके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बनाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: शम्मे फरोज़ा।

आऊज़ु बिल्लाही मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

सादा जिंदगी गुजारना ईमान की अलामत है और मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं ये दुनिया के सहारे। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समाअत फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम बयान नातु सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। ताखीर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह अत्तूर की तिलावत से। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

कुरान पाक से नस्बत जोड़, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कुरान नाजिल हुआ, लिहाजा वो तमाम फ़रिश्तों में अफजल करार पाए। मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ के सरदार कहलाए। उम्मत मोहम्मद को कुरान की अमानत सुपुर्द की गई, लिहाजा ये उम्मत खैर उम्मत करार पाई। माह रमज़ान में कुरान पाक नाजिल हुआ, लिहाजा ये महीना तमाम महीनों का सरदार ठहरा। शब क़द्र में कुरान नाजिल हुआ, लिहाजा ये रात तमाम रातों से अफजल करार पाए। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

0: मौजूद सामेन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:21 होने को हैं। बुध का दिन है और जून की 24 तारीख है और इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की आज 8 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। मौज़े सामीन, अब आप समाअत फरमाएंगे। ख़तीबो इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे, मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समाअत फरमाइए।
1: रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबी अजमईन। अम्मा बादु, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल अज़ीम वल फुरक़ानिल हमीद, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون। آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمه حبيبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तारीफ़ व तौसीफ़ और उनकी मदह व शताइस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस वारिद हैं। मुस्लिम शरीफ में हैं, सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीनातुल मुनव्वरा के दरमियान मकाम जुफा में ग़दीर खुम के पास खड़े होकर खुतबा फरमाया, तो पहले आपने अल्लाह ताला की हमद सना बयान फरमाई और फिर आपने हम लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाई और उसके बाद आपने रिशाद फरमाया, ए लोगों, मैं इंसान हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता भी यानी मलकुल मौत मेरे पास आए तो मैं खुदाए ताला के हुक्म को कबूल करूँगा। वाना तारिकुम फीकुम सकलान सकलैन, मैं तुम में दो नफीस और गिरा कदर भारी चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाही फीहिल हुदा नूर, इसमें पहली चीज़ अल्लाह ताला की किताब यानी कुरान मजीद है जिसमें हिदायत और नूर है। तो खुदाए ताला की किताब पर अमल करो और उसे मजबूती से थाम लो। रावी हदीस हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के बारे में लोगों को उभारा और रग़बत दिलाई, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व अहलु बैति उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैत उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहल बैत, यानी दूसरी चीज़ गिरा कदर चीज़ों में मेरी अहल बैत हैं, मैं तुम्हें अपनी अहल बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ और उससे डराता हूँ। और उस जुमले को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार फरमाया, मतलब ये है कि मैं ताकीद के साथ तुम लोगों को वसीयत करता हूँ कि मेरी अहल बैत के बारे में अल्लाह से डरो और उनके हक़ की अदायगी में हरगिज़ गुरेज न करना, कोताही न करना, बल्कि फ़राग़ दिली के साथ मेरी अहले बैत के हुकूक को अदा करना। इसी तरह से तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने हज्जतुल विदा में अरफे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि आप ऊँटनी पर सवार थे और खुतबा दे रहे थे। मैंने सुना आप ये फरमा रहे थे, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इत्रति अहल बैत, यानी ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज़ छोड़ी है कि अगर तुम उसको

को पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे, और वो चीज़ एक अल्लाह ताला की किताब है और दूसरी मेरी औलाद और ज़ुर्रियत है, मेरी अहले बैत है। इसी तरह से इमाम तिबरानी ने अपनी किताब तिबरानी शरीफ में यह हदीस नकल फरमाई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना हब्ब इलैहि मिन नफ्सिही व तकूना इतरति हब्ब इलैहि मिन इतरतिही व अहली व अहब्ब इलैहि मिन अहलिही व ज़ाति अहब्ब इलैहि मिन ज़ातिही। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, यानी कोई बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपनी जान से, मेरी औलाद हसनैन करीमैन को अपनी औलाद से, मेरी अहल को अपनी अहल से, और मेरी ज़ात को अपनी ज़ात से ज़्यादा महबूब ना रखे। यानी ये बात अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाई कि जब तक कोई बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता, लिहाजा मोमिन कामिल होने की अलामत हुजूर ये बयान फरमा रहे हैं कि तुम अपनी औलाद को, मेरी औलाद यानी हसनैन करीमैन, और मेरी अहल को अपनी अहल से ज़्यादा, और मेरी ज़ात को मेरी अपनी ज़ात से ज़्यादा महबूब रखो। अगर कोई बंदा मेरी औलाद से ज़्यादा अपनी औलाद को महबूब रखे, या मेरे घर से ज़्यादा अपने घर को महबूब रखे, या मेरी ज़ात से ज़्यादा अपनी ज़ात को महबूब रखे, तो वो मोमिन कामिल नहीं है। मोमिन कामिल उस वक्त होगा कि जब वह अपनी औलाद से ज़्यादा मेरे आका सरवर कायनात की औलाद को, अपनी जान से ज़्यादा हुजूर की जान को, और अपनी ज़ात से ज़्यादा हुजूर की ज़ात को, और अपने घर से ज़्यादा हुजूर के घर को महबूब रखे। इमाम अहमद रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत हसन और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के हाथ को पकड़ा और फरमाया, मन अहब्बनी व हब्ब हज़ैनी व उम्महुमा व अबाहुमा काना मई फी जती उमल क़ियामा, यानी जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और उन दोनों से और इनके वालिदैन से मोहब्बत रखी, तो वह क़यामत के दिन मेरा पड़ोसी होगा, मेरे साथ होगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं, यानी बंदा मोमिन मुझसे मोहब्बत करें, व हब्बा हादैनी मेरे बेटे हसन और हुसैन से मोहब्बत करें, और इनकी माँ हज़रत फ़ातिमा से और इनके बाप हज़रत इमाम अली पाक मुर्तज़ा से मोहब्बत करेगा, वह क़यामत के दिन जन्नत में हमारे दर्जे में होगा। यानी पंजन पाक से मोहब्बत रखने वाला। खूब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मेरे दर्जे में होगा, यानी खिदमत गुजारों में होगा, हुजूर का पड़ोस उसे जन्नत में मिलेगा। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि काबा शरीफ का दरवाज़ा पकड़कर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अला इन्ना मसला अहली बैती फ़ीकुम मसलु सफ़ीनति नूहिन मन रकीबा नजा व मन तखल्लफा अन्हा हलका। यानी आगाह हो जाओ, मेरी अहले बैत तुम लोगों के लिए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मानिंद है, कश्ती की तरह है। जो शख्स कश्ती में सवार हुआ उसने नजात पाई, और जो कश्ती में सवार होने से पीछे रह गया वो हलाक हो गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहदतैनहुम, यानी मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम उनमें से तुमने जिसकी इक्तदा करोगे तो हिदायत पा जाओगे। हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन रादिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बिहम्दिही ताला, हम अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत अहले बैत की कश्ती पर सवार हैं, और हिदायत के चमकते हुए सितारे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से हिदायत पा रहे हैं, लिहाजा हम लोग क़यामत के होलनाकियों से और जहन्नम के अज़ाब से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। मतलब ये हुआ कि हम न खारिजी हैं, न हम नासवी हैं, न हम राफजी हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। एक हाथ में हमारे अहले बैत इत्तेहाद रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन का दामन है, और एक हाथ में हमारे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन का दामन है। वो सितारे हैं जहाँ से हमें रोशनी मिलती है, और ये कश्ती है जिसमें हम सवार हैं। अगर बंदा कश्ती में बैठा हो, सितारों का इल्म ना हो, तो फिर भी वो पार नहीं लग सकता, और सितारों का इल्म अगर रखता हो और कश्ती में ना हो, तब भी वो किनारे को पार नहीं कर सकता। लिहाजा कश्ती भी होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ सितारों का इल्म भी होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला का शुक्र, उसका एहसान है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं, गौसो ख्वाजा रजा वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक हाथ में सहाबा इकराम का दामन है, और उन सितारों से हम रोशनी लेते हैं, और हम अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत की कश्ती में सवार हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारा बेड़ा पार फरमाएगा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव

व इत्रत रसूलुल्लाह की। हदीसें तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी रिवायतों में आया है, लेकिन एक हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूं, अहले सुनन ने रिवायत किया है, यानी ये जो रिवायतें हैं सिया सित्ता की किताबों में से है। जब अबू लहब की साहबजादी मक्का मुअज्जमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाईं तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारी हिजरत तुम्हें बेनियाज नहीं करेगी, इसलिए कि तुम जहन्नम के ईंधन की बेटी हो। जाहिर बात है अबू लहब सरकार का सगा चचा था, लेकिन इतना सड़ा हुआ था कि कुरान की वईद पूरी सूरह तब्बत यदा उसकी वईद पे नाजिल हुई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी बेटी ने इस्लाम को कबूल कर लिया। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मेरे साथ में ये इस तरह के कलिमात इस्तेमाल किए हैं कि तुम्हारी हिजरत करना मक्का से मदीना आना ये तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा, इसलिए कि तुम जहन्नम के ईंधन की बेटी हो, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सख्त नाराज़ हुए। और फिर अल्लाह के अबीब अली सलाम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बालु अक्वामिन यूज़नी फ़ी नसबी वज़बी रहमी इल्ला मन आज़ा नसबी वज़बी रहमी फ़कद आज़ानी व मन आज़ानी फ़कद आज़ल्लाह। यानी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया यानी ए लोगों क्या उस लोगों का क्या हाल है जो मुझसे मेरे नसब और रिश्तेदारों के बारे में अज़ियत देते हैं, ख़बरदार जिसने मेरे नसब और रिश्तेदारों को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमा हर एक का नसब और असब दुनिया में कट जाएगा सिवाय मेरे हसब व नसब के, ये क़यामत तक बाकी रहेगा। इमाम तिवरानी ने इमाम हाकिम ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से ये रिवायत पेश फरमाई है, और ये हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमा लौ अन्न रजुलन सईदन बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसाम सुम्मा मात वहुव मुग़मिदुन ली अहलि बैति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अगर कोई शख्स बैतुल्ला शरीफ के एक गोशे और मकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए और नमाज पढ़े और रोज़ा रखें और फिर वो मेरी अहले बैत से दुश्मनी पर मर जाए, अल्लाह की कसम है कि वो जहन्नम में जाएगा। यानी अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन की दुश्मनी उसे जहन्नम तक ले जाएगी, और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन की मोहब्बत उसे जन्नत तक ले जाएगी। अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन यानी ये वो नुफूस कुदसिया हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फ़ज़ल फरमाया। हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं इमाम हसन हुसैन तुम्हारी बरकतों से अल्लाह ताला ने हमारे सरों पर बाल उगाए हैं, और हम जो रोटी के लुक्मे खाते हैं अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बरकतों से हमें अता फरमाता है। ये शान है किसकी? हज़रत इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन शहीद करबला की। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया लौ कान रिफ़्ज़ल हुब्बु अहलि मुहम्मदिन फलियशदि ثقلین انی رافضی, यानी अगर आले रसूल की मोहब्बत ही का नाम राफजी होना है तो जिन्होंने इंसान गवाह हो जाए मैं बेशक राफजी। राफजी की मुराद ये नहीं है जो राफजी है, यानी अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अली मजमईन से मोहब्बत करने वाला। अल्लाह के वो फरमाते हैं हज़रत इमाम शाफ़ी या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फ़र्ज़ुम मिनल्लाह फ़िल क़ुरआन अनज़लहू, यानी ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ल मवद्दत फिल क़ुरबा, यानी हमारे ईमान का मदार हमारी मोहब्बतें और हमारा सारा कुछ अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन की मोहब्बतों पर है। वह बेईमान हैं बददीन हैं वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोमिन कामिल नहीं हो सकता जो अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन का बुग्ज़ अपने सीने में पकाता हो और अपने सीने में अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अली मजमईन अज़मत उसके सीने में ना हो। वो दिल ही क्या है जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत के साथ हुजूर की आल की मोहब्बत ना हो। याद रखिए हमारे दिलों में अल्लाह ताला की तरफ से चुने हुए हमारे दिल हैं और अल्लाह ताला की तरफ से सेलेक्टेड हमारे दिल हैं कि जिन दिलों में अल्लाह तबारक व ताला ने अहले बैत की मोहब्बत को डाला है खुदा की कसम ये मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी ये मोहब्बत काम आएगी, जिसके बारे में खुद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मातम
مؤمنہ, جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مؤمن مرا ہے, اور جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب اندازہ کریں یہ وہ نفوس قدسیہ جن کی عظمتیں یہ, جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری بیٹی دنیا کی حور ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بے پناہ محبت فرماتے تھے,

0: सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर जब शादी हो गई और शादी होने के बाद जब अपने घर आती थी तो कायनात का पैगंबर खड़े होकर के अपनी बेटी का इस्तकबाल फरमाता और खड़े होने के बाद इस्तकबाल फरमा करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी पर बोसा देते थे और अपनी मुसल्ले पर और अपनी मसनत पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को एहतराम के साथ बिठाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अंदाज़ा करें उन्हीं के घर में इमाम हसन मुस्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए और उन्हीं के लख्त जिगर इमाम हुसैन शहीद करबला पैदा हुए जिनके बारे में फरमा अल हसन अशबहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन अस-सदर इला रास वल हुसैन अशबहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कान अफसल मिन ज़ालिक, यानी एक बेटा सीने से लेकर सर तक हुजूर के मुशाबे था और एक सर सीने से लेकर पांव तक मुस्तफ़ा जहनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादे और इसकी तशरीह व तौज़ीह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पांव तक हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया खित्ते तआवुम में लिखा है ये दो वरका नूर का और फरमाते हैं मादूम नता साए शाह सकलैन उस नूर की जलवा गाती जाते हसनैन तमसील ने उस साए के दो हिस्से किया आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जिनकी मोहब्बत को अल्लाह के हबीब अली सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी हुब्बुहु फअहिब्बहु, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे शहजादे हैं इनकी मोहब्बत जान ईमान है इनकी मोहब्बत शान ईमान है जिन्होंने इनको खुश रखा उसने मुझको खुश रखा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान ये अजमत अपने शहजादों की बयान करना अल्लाह तबारक व तआला ये बताता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इससे आगे हम शहादत करबला इंशाअल्लाह ताला बयान करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़े सामीन अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब इमाम मस्जिद रज़ा कौंदे मास्क पावे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान रज़ा क़ादरी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपको बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिला होगा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। जुम्मा 26 जून, जी हाँ जुम्मा 26 जून सुबह 9:30 बजे अलमदीना हॉल कॉम्फो फिनिक्स में उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में महफिल आशूरा का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। अगर मुमकिन हो तो आपसे सफ़ेद कपड़े पहनने की दरख्वास्त है। इसके अलावा जुम्मा 26 जून सुबह 9:30 बजे बैतुलनूर सिद्ध मौशाल में आलिमा शमीमा सुब्राची की सरपरस्ती में आशूरा के मौके पर एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। और जुमेरात 25 जून बाद नमाज ज़ोहर अब्दुल रज़ाक प्रेयर हॉल फिनिक्स में सैयदा उनाजा फातिमा की सरपरस्ती में महफिल ज़िक्र का एहतमाम किया जा रहा है। और जुम्मा 26 जून सुबह 10:00 बजे जामिया अयूबिया रिजविया पोर्ट लुइस निकोले रोड में शैला आपा की सरपरस्ती में यौम आशूरा के मौके पर एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। बाद नमाज ज़ोहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा।

मौज़ सामेईन, इस्लामी तकवीम के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को यौम आशूरा कहते हैं। ये दिन तारीख़ी अजमत, बेशुमार आसमानी मौजज़ात और मैदान करबला की अजीम कुर्बानी की वजह से तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई अहमियत का हामिल है। आशूरा का दिन इस्लाम की तारीख में बहुत सी बरकात और अहम वाक़यात का महवर है।

मौजूद सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। जी हाँ, मोहसिन ने हमसे एक कलाम की फरमाइश की थी, इस करम का करूं, और जो कि हम चला चुके हैं। और मरहूम इद्रीस आजिम गुलाब विदेशी फैमिली के तमाम मरहूमीन, इसके अलावा मरहूम भाई रज़ा गुलाब के लिए रशीदा आजिम ने दुआ मगफिरत की गुजारिश की है, और रशीदा की बहन रेहाना उजिया और उनकी पूरी फैमिली जो कि इंशाल्लाह ताला जल्द उम्रे पर जा रहे हैं, उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक वो सात खैरियत के जाएं और सात खैरियत के उम्रा करके वापस आएं। जी हाँ, ये पैगाम हमें भेजा है रशीदा आजिम ने। लाविनिया से हाफिज़ बाबा साहिब और हुसैन बख्श फैमिलीज़ के लिए योम आशूरा के मौके पर हाफिज़ बाबा साहिब ने दुआ की गुजारिश की है।

0: को जमाना।
1: मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ए पाक परवरदिगार, अता फरमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा भरोसा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसी फरमा बरदारी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी गुनगुनाहट, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसी साबित कदमी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जैसी पाकीज़गी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसी हया, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी हिकमत, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इखलाक हमें अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

चलिए श्रोते, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम है आपकी पसंद, स्टूडियो की घड़ी में 2:30 बज रही है। तो चलिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक मैं आपका साथ निभाऊंगी। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम ये मंच है, आप सभी सुनने वालों के नाम, कुछ नए कुछ पुराने, हर तरह के गाने जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। वैसे शुरुआत करने से पहले हम आपको इशारा कर दें कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए, आपकी दिलचस्पी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको ये भी इशारा कर दें कि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 4028085। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251700। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और एक से बढ़कर एक गीत आपके लिए और व्हाट्सएप मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जो है जुड़ चुके हैं। तो चलिए पहला जो नज़ाना जो है आपके नाम हम करने वाले हैं, पुराने फिल्म अलबेला से लिया गया ये सदाबहार गीत जाने वाला है। आप हमारे साथ है शानाया और रियांश, ये सब लोग जो है वाकवा के रहने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। तो श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे, ये कार्यक्रम जो है इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक चलने वाला है। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ये प्यारा सा गीत हम आपके नाम कर रही हैं।

तो चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। 4028085 पे आप बहुत ही प्यार के साथ निभा रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं। फिल्म का नाम है चलते चलते, और इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा तराना, इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक जो है हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ जो है त्रियुलो के समस्त बंधु परिवार जुड़े हुए हैं। तो चलिए खूबसूरत सा नज़ाना जो है हम चला रहे हैं आपके नाम रेडियो मॉरिशस पे।

0: अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ संजय जी हैं, जुड़े हुए हैं, और आपकी फरमाइश पे ये अगला गाना जाएगा आपकी बहन आशा के लिए, साथ में है आपके भाई अजीत। तो चलिए गाने की ओर हम बढ़ेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी।
1: ये जो चिलमन है

श्रोताओं, 2:55 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में हम आपकी पसंद कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। और अगला गाना जो है फिल्म घायल से लिया गया जाएगा भाई धनी जी के लिए, जो कि बुआशरी के रहने वाले हैं आप। ये गीत जाएगा यश और हेमिश के लिए। तो श्रोताओ, कुछ ही घड़ी में सपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार हम आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज सुबह राष्ट्रसभा में एक संवेदनशील विषय पर चर्चा की गई, वो था विदेशी श्रम शक्ति और श्रमिकों की कमी। विपक्ष नेता जोली शोंगा द्वारा पेश किया गया PNQ विदेशी श्रमिकों की भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए बचत उपायों पर केंद्रित रहा। ये सवाल श्रम मंत्री रिजा उद्दीन को संबोधित किया गया। विपक्ष ने ये जानना चाहा कि क्या सरकार ने इस नई फास्ट ट्रैक वर्क परमिट प्रणाली की घोषणा करने से पहले किसी प्रभाव अध्ययन का सहारा लिया था। अपने जवाब में रिजा उद्दीन ने बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड की फास्ट ट्रैक सेवा अभी शुरू नहीं हुई है। पहले प्रयास के विफल रहने के बाद 12 जून को एक नया टेंडर जारी किया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विशेषज्ञता मांगी गई है। साल की शुरुआत से पुलिस ने पूरे देश पर 49 अभियान चलाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवैध रूप से रह रहे 428 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 400 को पहले ही स्वदेश वापस भेजा जा चुका है। श्रम मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अवैध रूप से विदेशी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए किसी भी नियोक्ता पर मुकदमा नहीं चलाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान कानून मंत्रालय को प्रशासनिक दंड लगाने की अनुमति नहीं देता है और इसके लिए विधायी संशोधन की आवश्यकता होगी। इस समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय ने अब वर्क परमिट के लिए किसी भी नए आवेदन या रिन्यूअल की जांच करने से इनकार कर दिया है, यदि नियोक्ता ने उन कम से कम 90% श्रमिकों की स्थिति को नियमित नहीं किया है जिनके परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी है। मंत्री के अनुसार ये कदम पहले ही परिणाम देने लगा है, विशेष रूप से कपड़ा और निर्माण सेक्टरों में। परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में वाहन मालिकों द्वारा बहु

0: प्रतीक्षित स्पष्टीकरण दिए हैं। उस्मान मोमेन ने स्पष्ट किया कि बजट में घोषित वार्षिक शुल्क केवल नई पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों पर ही लागू होगा। और विदेश में अमेरिका और ईरान ने परमाणु निगरानी सहित कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी बयान दिए हैं, जबकि वार्ताकार 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने के लिए जोर दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अंतिम समझौता होने के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टोल्स नहीं वसूल पाएगा। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 20 शाटू दो स्ट्रीट थोंगबोपोट लुई में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रागिनी रामलाल पैदाशी नाम तिलक और जो नंदी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 4 बजे उनके पति श्री देवलाल रामलाल के घर नंबर 20 शाटू दो स्ट्रीट थोंगबोपोट लुई से उठाकर थोंगबो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन विस आफ्टरनून एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: चलिए सपहर के 3:03 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में शुजाओ आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखने से पहले आइए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। Route réservoir Grand B, route Royale or route Costel, point au canonier qui rennait vers les Nivasons, qui sont situés à Jata, qui, Gurvar, 25 juin 2026, ko, din ke sare 12 baje se lekar sham ke sare 4 baje ke beech, biji ki supply mein katauti lai jayegi. इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमाप्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ अभी आप सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं।
4: आपकी पसंद
3: कार्यक्रम की अगली भेंट में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत जाने वाला है। अनिता जी के लिए फिकाफला की रहने वाली है। ये गीत उनके सभी दोस्तों के लिए, सभी परिवारों के लिए और बहुत ही पॉपुलर फिल्म है। ये प्यारा सा गीत जो है इस फिल्म से लिया गया और ये गीत जो है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ, अगली पेशकश की ओर हम बढ़ेंगे। लावण्या की रहने वाली अफेज जी की फरमाइश पे ये अगला गीत समस्त परिवारों के लिए, साथ में सभी बाबा साहेब परिवार के लिए ये प्यारा सा गीत मुकेश की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

छोटा हुए समय हमारे साथ सरिता जी है, कतोबोन की रहने वाली। अब ये बहुत ही खूबसूरत संगीत जो है उनकी फरमाइश पे हम चलाने वाले हैं, और आपकी पसंद कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे हम चला रहे हैं। तो श्रोताओं, अगर आप गीतों की फरमाइश करना चाहते हैं तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 4028085, हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700005। तो चलिए, काफ़ी लोगों के नाम जो है हम जोड़ना चाहेंगे इस गीत पे। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो है हम शामिल करने वाले हैं, और ये प्यारा सा गीत जो है अनीता जी के लिए, जो कि पची वे सैपिया की रहने वाली है। उनकी तीन बेटियों हैं, काजल, शीतल, दीक्षा। उनके दामाद है वितेश। उनके सभी परिवारों के लिए उनके पति है बालदेव जी। और बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम चलाने वाले हैं। हमारे साथ इस समय केश जी है, कतकबोन की रहने वाली। उनकी दो बेटियां हैं, नेहा, नितिशा है। साथ में है उनके दामाद एल्विन, उनके पति है आनंद जी। त्रिवेणी जी है गुडलैंड की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत समस्त मोहन परिवार के लिए, साथ में त्रिवेणी जी के पति है अनिल जी, तो उनके नाम भी ये अगला गीत। फिर माँ गायत्री जी है नूवेल फ्रांस की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो उनके नाम पे, उनके परिवारों के नाम पे ये अगला गीत हम ज़रूर चलाने वाले हैं। तो श्रोताओ, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद जो है इसे हम जारी रख रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए, गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे बरसाती मौसम है, अगर आप घर पे हैं यकीनन आप हमारा साथ दे रहे हैं, और अगर आप गर्मा गर्म कॉफ़ी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, तो हमारा साथ जो है अगले गीत को, और जी अगले गीत को आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाइए। तो चलिए, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद इसे हम बरकरार रखेंगे। ये कार्यक्रम शाम के 4 बजे तक चलने वाला है। तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, फिल्म उजाला से लिया गया गीत जाने वाला है। हमारे साथ है लीला जी बौशरी की रहने वाली, समस्त काशी परिवार है, लोचन परिवार है, और इसी गीत पे नाम जोड़ेंगे सरिता जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है।

छुटाओ अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। गिशानों की मीला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए तलत महमूद और लता मंगेशकर की मीठी आवाज़ों में फिल्म पॉकेट मार का ये सदाबहार गीत हम सुनेंगे।

चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत, ये गीत जो है फरमाइश करने वाली है इन सभी परिवारों के लिए। रेशमा है, दामाद है रवि, साथ में है याशिका, याशना, और ये सब लोग जो है पस डिफ्लक के रहने वाले हैं। ये गीत चाचा कृष्ण और चाची माला गोपाल जी के वेडिंग एनिवर्सरी के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आपके पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है इन सभी लोगों की फरमाइशें जो है पूरी करना, फिर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है जो भी गाने जो है आप फरमाइश करते हैं तो उन गानों को हम शामिल करें इस कार्यक्रम में। तो चलिए एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है हम चलाने वाले हैं, और बहुत ही प्यारा सा गीत जो है, फिल्म का नाम है आखिरी खत, और ये सदाबहार गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ जो है शोभा जी है पोम्पे मुसिस की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो उनके नाम पे ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है हम शामिल कर रहे हैं। फिल्म का नाम है आखिरी खत, और श्रोताओं आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं शाम के 4 बजे तक। 4028085 पे आप यूं ही हमारा साथ देते रहे। कार्यक्रम जो है आप लोगों के लिए हम सजा रहे हैं, हर रोज़ की भांति ये प्रोग्राम जो है चलता है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे।

भाई हरी जी है बोबासा के रहने वाले, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए अगला गीत उनकी पसंद पे, आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म से लिया गया गीत सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए श्रोताओं, सपहर के 3:50 होने को हैं, अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ जो है, जी हाँ, हमारे साथ माला जरी जो है पिछित खतखत की रहने वाली है। ये अगले गाने की फरमाइश कर रही है। ये गीत पतिश्वर के लिए, बेटा है दीपक, बेटी है रीमा और उनके समस्त परिवारों के लिए। ये प्यारा सा नजराना फिल्म का नाम है दो जासूस।

गाने की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ विश्वानी डुमन जी हैं और आप वाक्वा की है ये गीत आपकी दो बहनों के लिए इंदिरा शारदा है, साथ में आपकी सहेलियों हैं नीला प्रतिभा शोभा, साथ में है गीता गजाधर। तो इन सभी लोगों के नाम ये प्यारा सा गीत हम करेंगे।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे। अंतिम नजर सभी सुनने वालों के लिए, हमारे साथ माला सुमारू जी है काकोबोन की रहने वाले, उनके पति है सूर्य देव जी, उनके सभी बच्चों के लिए, साथ में सूर्य देवी जी है वाकवा की रहने वाली, ये गीत जाएगा दीदी ललिता के लिए। त्रियोले की रहने वाली कुशल परिवार है, सुनीता है, देविना, बिंदु, संगीता, जोराज, मलिंगा की याचना, नीरज, लक्षिता, कृषिका, रामरत्न परिवार, राम गुलाम परिवार, कुआओ परिवार, हगुबा परिवार साथ में है उनके समस्त परिवारों के लिए। और इस गीत पे नाम जोड़ेंगे उमा जी का, जो कि हमारे साथ क्यूपिप से है और उनका जन्मदिन है आज। तो चलिए एमसी की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लंबी उम्र की कामना हम करते हैं, समस्त रतन परिवार की तरफ से भी शुभकामनाएं। तो चलिए अगले गाने की ओर, अंतिम नजाना ये गीत जो है हम चलाएंगे। हमारे साथ जो है इस समय, वैसे सब लोगों के मैसेजेस जो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, फिर भी साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इस समय जो है अनीता जी है पिछ वैसे सैपिया की रहने वाली, तो ये अंतिम नजाना उनके समस्त परिवारों के लिए। गीता जी है पोंफिया की रहने वाली, उनकी बहन है मीला न्यूकोव की रहने वाली, इन सभी लोगों के लिए ये अंतिम नजाना हम चला रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही घड़ी में 4 बजने वाले हैं और आप बाकी कार्यक्रम जो है आप सुन सकेंगे। जो कार्यक्रम आप जो है सुन पाएंगे शाम के 4 बजे, आप मराठी भाषा में एक कार्यक्रम सुनेंगे। तो हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

चलिए श्रोताओं, जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। रिविया डिजांगी के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है माओ सरमा लावानी, एनाश डेसे लावानी का माओते, फुटबॉल प्लेग्राउंड स्ट्रीट एनाश डेसे का माओते, साथ में रोटोयाल बेविट लाबाक रोड के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 25 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार। आपके इस खेती बाड़ी के कार्यक्रम में आपको बहुत स्वागत है। मैं हूँ रेशमा बालगोबिन बासेनु, वल्गराइजेशन ऑफिसर फारे से। आज मैं रुजल के बारे में चर्चा करूँगी। रुजल मालवेशिया फैमिली से हैं, जैसे कि भिंडी और हिबिस्कस। रुजल पहले भारत में पाया जाता था। बहुत जल्दी ही यह पौधा अफ्रीका, अमेरिका और दूसरे जगहों में फैल गई। मॉरिशस में रुजल साल 2000 में यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और आगे जाकर फारे ने उसे लोगों तक पहुंचाया। विश्व में रुजल अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि उजै रूज, सोरेल, कोकादे, बिसाप और फ्लोरिडा क्रैनबेरी। मॉरिशस में इससे ज़्यादातर रुजल्स के नाम से ही जाना जाता है। रुजल एक ऐसा पौधा है जो यदि सही सुविधा मिले तो वो 2 मीटर तक भी बढ़ सकता है। रुजल के अलग अलग भागों का भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि उसके बीज को कॉफ़ी के जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके हरे और कोमल पत्ते को सलाद में या फिर सब्जी या पालक जैसे इस्तेमाल होता है। कागज़ इंडस्ट्री में भी रुजल की लकड़ियों का उपयोग होता है, परंतु जो भाग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो हैं उसका फूल, जिसे हम टेक्निकली कैलिक्स कहते हैं। यह कैलिक्स एक बहुत ही बढ़िया लाल रंग का और गुदेगार भी होता है। रुजल विटामिन सी से भरपूर है। हर एक ग्राम फल में 1.3 मिलीग्राम तक एस्कोर्बिक एसिड पाया जाता है। इस फल में कैल्शियम, नायसिन, रिबोफ्लाविन, आयरन और पेक्टिन भी हैं। रुजल में 3% पेक्टिन पाया जाता है, जो कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत लायक बनाता है। रुजल एंथोसायनिन और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरा है। इसके कारण यह फल को युगों से नेचुरल मेडिसिन में और आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत उपयोग की गई। रुजल एक मेडिसिनल प्लांट भी है जो इम्यूनिटरी सिस्टम को बेहतर बनाता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को कम करता है। रुजल पाचन के लिए यानी डाइजेशन के लिए भी

लाभदायक है। यह बुरी कोलेस्टेरॉल और हाइपरटेंशन को कम कर सकता है और दिल के बीमारी से राहत भी दे सकता है। अब हम मॉरिशस में रोजेल की रोपाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ रोजेल सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन में उगाया जा सकता है। रोजेल एक तंदुरुस्त पौधा है जो न सिर्फ उपजाऊ ज़मीन में उगा सकते हैं पर कम उपजाऊ ज़मीन पर भी हम उसको उगा सकते हैं। रोजेल को कटिंग्स से या फिर बीज से उपजा सकते हैं। कटिंग्स के लिए न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतली भागों को चुना जाता है। कटिंग्स से जड़ें को बढ़ावा देने के लिए आप रूटिंग हॉर्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन या फिर डायना रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जड़ें सिर्फ 2-3 हफ्ते में ही निकलना शुरू होता है। परंतु रोजेल को ज़्यादा से ज़्यादा बीज से ही उपजा सकते हैं। जब आप रोजेल का फसल करते हैं, सूखा हुआ जो बीज हैं उसको एक सूखा और शीतल जगह में संभाल कर रखना चाहिए अगले साल रोपाई के लिए। अगर बीज को ठीक तरह से नहीं रखा जाता है तो उसका जो जर्मिनेशन है वो कम हो जाता है और आप एक अच्छी फसल नहीं काट पाएंगे। रोजेल के बीज को आप प्लाटो दे सेमी में या फिर सॉफ्ट पॉट्स में या योगर्ट के पॉट्स में उपजा सकते हैं। बीज को बोने के बाद 4-5 सप्ताह में छोटे पौधे जो 15 सेंटीमीटर का है तैयार होता है। इस छोटे पौधे को ज़मीन में 30 सेंटीमीटर का खुदाई में आप रो सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक की महीने में छोटे पौधे को जो हम सीडलिंग कहते हैं उसको लगाना फ़ायदेमंद होता है। इस रोजेल की पौधे अच्छी तरह से बढ़ता है और मार्च अप्रैल की महीने में उनमें फूल होना शुरू होता है। परंतु अगर आप थोड़ा देर से जैसे कि जनवरी महीने में छोटे पौधे लगाएंगे तो पौधे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। रोपाई करते समय दो पौधे के बीच 1.5 या फिर 2 मीटर्स का फासला छोड़ना चाहिए। इससे दोनों तरफ पौधे अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे। रोजेल पौधे को बढ़ने के लिए सामान्य से बहुत खाद नहीं चाहिए, परंतु कमर्शियल रोपाई में अधिकतर फसल के लिए आपको खाद जैसे कि जिसेल हापो या फिर कंपोस्ट या फिर दोनों को लगाना चाहिए। रोपाई के समय रोपाई से 1 महीने बाद भी और फूल आने से 1 महीने पहले लगाना ज़रूरी है। पर आप अगर ऑर्गेनिक रोजेल उगाना चाहेंगे तो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र के जगह सिर्फ कंपोस्ट या फिर खाद जो हम फिमिये बोलते हैं का ही उपयोग करें। मार्च महीने में फूल आना शुरू होगा और इसके लगभग 1 महीने बाद छोटे छोटे फल लगना शुरू होंगे। जब फल अच्छी तरह मोटा हो जाएगा और कैलिक्स जो हैं थोड़ा खिल जाएगा तो मान लें कि ये फल फसल के लिए अब तैयार है। जब रोजेल का फल पक जाते हैं, फलों को सवेरे या फिर देर शाम को एक सिकातिया से काटना चाहिए ताकि पौधे में जख्म ना आए। रोजेल का फसल 5 से 8 सप्ताह तक चलता है, मई से जुलाई तक। फसल के बाद फल 1 सप्ताह तक फ्रिज में ताज़ा रह सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा दिन तक रखना चाहेंगे तो इसको साल भर कोंशेलातिया में भी आप रख सकते हैं। इसका जो वैल्यू है ट्रांसफॉर्मेशन से

भरा सकते हैं, जैसे कि आचार, जैम, जेली, मार्मलाद, एग डू, कॉन्फिचर, जूस और नेक्टर। रोजेल को आप सूर्य के किरणों से भी सूखा सकते हैं और उसके पाउडर भी बना सकते हैं। सूखा हुआ रोजेल से चाय बनती है जो स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत फ़ायदेमंद है। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप फ़ाय की एक ऑफिस में ज़रूर फ़ोन करें। हम अगले सप्ते फिर मिलेंगे। आपको शुभ रात्रि और नमस्कार।

0: अंताक्षरी अंताक्षरी
1: शाम के 5:10 हो गए हैं और आप लोग जुड़े हुए हैं AM2 रेडियो मॉरिशस की लहरों से। और आज का जो कार्यक्रम है उसका नाम है अंताक्षरी। जी बिल्कुल, और अंताक्षरी प्रोग्राम में हमेशा उषा जी और मैं साथ आते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्यवश उषा जी नहीं आ पाई हैं, तो उनकी ओर से हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों से। और आज का जो कार्यक्रम है स्पेशल म्यूजिक डे अंताक्षरी प्रतियोगिता, और वही विजेता जो जीता। तो चलिए, आज हमारे मध्य में चार कंटेस्टेंट्स यहाँ मौजूद हैं। हम गत सप्ताह आप लोगों को हमने बताया था कि आप लोग मैसेज भेजिए, एक व्हाट्सएप नंबर हमने आपको प्रोवाइड किया था और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया और हमने लकी ड्रॉ किया। और आज हमारे बीच चार प्रतिद्वंदी हैं। पहला जो नाम है, आप उनका स्वागत कीजिए घर पर। और मैं स्वागत करता हूँ स्टूडियो में अनिता लाल जी फ्रॉम मॉडल बे। जी हाँ अनिता जी, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार रोशन जी।
1: हाँ, आप कैसी हैं?
2: अच्छी हूँ।
1: हमेशा आपको सुनते रहते हैं अंताक्षरी प्रोग्राम में फोन द्वारा।
2: जी हाँ,
1: लेकिन आज आप यहाँ पर आई हैं स्पेशल म्यूजिक डे कॉन्टेस्ट में।
2: जी हाँ, बहुत सौभाग्य बात है। और सब जो सुनने वालों को सबको मैं कहती हूँ वो हमारे गाना सुनेगा।
1: अच्छा,
2: सब के गाना सुनेंगे।
1: तो हम बताएंगे कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे कॉन्टेस्टेंट की ओर, और सभी लोग उनको जानते हैं, वो है कॉटेज की आशा जानू जी।
3: समस्त श्रोताओं को और समस्त अंताक्षरी परिवार को आशा जानू की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते रोशन जी।
1: नमस्ते।
3: जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको भी कहूँगी प्यार भरा नमस्कार। और म्यूजिक डे तो बीत गया, पर फिर भी म्यूजिक डे तो हम रोज बनाते हैं, तो आई विश यू ऑल अ हैप्पी म्यूजिक डे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। तो चलिए, तीसरा जो कंटेस्टेंट है वो है भाई उदय जी। उदय जी कैसे हैं आप?
4: रोशन भाई,
1: रिव्या जी पोस्ट से उदय भाई।
4: नमस्ते।
1: हाँ जी,
4: तो हम लोगों को सुन रहे हैं।
1: सुन रही हैं, लेकिन नहीं आ पाई।
4: अनीता बहन है, उषा जी, किशन भाई।
1: हाँ जी,
4: लोगों को गुड लक।
1: ओके, धन्यवाद उदय भाई, आपको सुनते रहते हैं।
4: और जो अभी जो हमको अभी सुन रहे हैं
1: उन लोगों को भी। बिल्कुल, तो चलिए उदय भाई जी के बाद आपने सुबीर सेन भाई का नाम ले लिया है, तो चलिए आपका स्वागत है सुबीर सेन भाई कॉटरबोन से।
5: नमस्ते रोशन जी, और नमस्ते सभी लोग, और नमस्ते सभी अंताक्षरी प्रोग्राम को सुनने वाले को।
1: बिल्कुल, धन्यवाद। तो चलिए श्रोतागण, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, और आप लोग तो बहुत ही अंताक्षरी के प्रेमी हैं, तो

आइए हम शुरुआत करेंगे इस स्पेशल म्यूजिक डे अंताक्षरी कंपटीशन को, जो पहली बार के लिए चार चार कंटेस्टेंट्स आए। हम यहाँ पर रेडियो मॉरिशस के स्टूडियो में नहीं हैं, हम यहाँ एक विशेष स्टूडियो में हैं जिसका नाम है स्टूडियो डी, जहाँ पर चार महारथी अंताक्षरी प्रोग्राम में अपनी किस्मत आजमाने आए हैं और उन लोगों को MBC की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। सभी को पुरस्कृत किया जाएगा, आज कोई भी यहाँ खाली हाथ नहीं जाएगा। तो चलिए, चार राउंड्स हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देते हैं। जो पहला राउंड है वो है अंताक्षरी राउंड और शब्द राउंड, तो ये आप इनसे भली भांति परिचित हैं। तो चलिए, स्टूडियो में उपस्थित हैं जब जो सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स यहाँ पर आए हैं, जैसे सुनीता जी, नीलेश, राज, धीरज, विशालिनी, आरती, इंदिरा और कविता जी, आप लोगों का स्वागत है। हम जानते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों को सपोर्ट करने आए हैं, तो बहुत ही स्वागत है स्टूडियो में आप लोगों का। तो चलिए, हम पहला जो अंताक्षरी राउंड है, मैं एक छोटा सा टुकड़ा आप लोगों के लिए गाऊंगा, जहां जिस अक्षर से समाप्त होता है वहां से आपको शुरू करना है। आपको मिलेगा केवल 10 seconds, ओके ओके, 10 seconds मिलेगा और आपको गाना है इन 10 seconds में, ओके। जहां से शुरू, जहां से समाप्त होता है वो अक्षर, आपको उसी अक्षर से शुरू करना है। तो चलिए, आप लोग मेरे दोस्त हैं, हाँ, पहले अनिता जी, बाद में आशा जी, उदय जी, तब सुबीर भाई, ओके। तो हम शुरुआत करते हैं अनिता जी के साथ, तो सुनिए।

0: Dusty.
1: Diamond.
2: Tu tu tu tu tara, turna dil hamara. Tu tu tu tu tu tara, turna dil hamara.
0: बिल्कुल तोड़ो ना दिल हमारा, आपका दिल नहीं तोड़ेंगे हम। मनीता जी को मिले हैं 10 अंक। तो चलिए तू तू तू तू तू तारा तोड़ो ना दिल हमारा। र से दूसरा।
2: रुक

0: बिल्कुल सही जवाब, और आपको भी 10 अंक, बहुत बढ़िया। ओ राही ओ राही, तो चलिए उदय भाई, ओ राही आप तो ओ राही तो हसी, हसे अगला गाना आपको गाना है, हसी टाइमर, हसी
1: हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं।
0: कोई बात नहीं, हुस्न वाले आपका जवाब नहीं, उदय भाई भी आपका भी जवाब नहीं, वेरी गुड, 10 अंक, हुस्न वाले आपका जवाब नहीं, तो आपको भी सुबीर भाई हंसी हंसी से गाना होगा गाई।
2: हम तुम दोनों जब

0: एक नया इतिहास बनाएंगे। वेरी गुड, क्या बात है। कंपटीशन तो बहुत ही सीरियस, बहुत ही टफ होता जा रहा है। सभी के पास अभी 10 अंक है। अंताक्षरी राउंड का जो दूसरा राउंड है, जाएंगे ग से अगला गाना। ग से ग।
1: गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल हो। कहीं टूटे ना ये रातें, कहीं छूटे ना ये रातें। गाता रहे मेरा दिल।
0: बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको भी मिले हैं 10 अंक। गाता रहे मेरा दिल, आशा जी ल से अगला गाना।
1: Please.

0: आशा जी ने गाया है और आपको भी मिले हैं 10 अंक। जिंदगी आ रहा हूं मैं, म से अगला गाना। उदय भाई आपकी बारी है, म टाइमर। म
1: म मुझे
0: कोई बात नहीं, गाइए।
1: मुझे मुझे याद की जिंदगी देने वाला,
0: मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली,
1: कभी गम न देना खुशी देने वाले।
0: ओके, वेरी गुड, आपको भी मिले 10 अंक। अंताक्षरी राउंड का अंतिम प्रश्न देने वाले, ल से भाई, ल से टाइमर। ल, आपका समय शुरू होता है अब। ल, और समय है आपके पास भाई। ओ, रॉन्ग आंसर भाई, ल से। ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आपने तो अपनी दुल्हनिया ले गए थे कभी। कोई बात नहीं सुधीर भाई, ये हो जाता है कभी कभार। तो अंताक्षरी राउंड के बाद अगर हम एक टोटल करेंगे तो तालियों के साथ अनिता जी 20 अंक, आशा जी 20 अंक, उदय भाई 20 अंक और सुबीर सेन भाई 10 अंक। कोई बात नहीं, अगले राउंड में ये 10 अंक आप कैचअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शब्द राउंड की ओर बढ़ेंगे और शब्द राउंड में एक शब्द हम आपको देंगे और ये शब्द आपके गाने में होने चाहिए। ओके, ये शब्द ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में ही हो, ये अंत में हो सकता है या बीच में भी। जी अनिता हाँ। जी समझ गए, सभी लोग समझ गए। ओके देन, ओ तो हमारे जो श्रोतागण हैं यहाँ पर, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, तालियां नहीं बजा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अनिता जी आपका जो शब्द है वो है मित्रा, मित्र, मित्रा, मित्रा। टाइमर। मित्रा,
2: मेरे मित्रवा।
0: नहीं जी,
2: मित्र,
0: रॉन्ग आंसर। मित्वा नहीं, मित्रा, मित्रा। ओ मित्वा रे, मित्रा रे, लग जा मुझसे गले, मैंने दिल रख दिया, मैंने जान रख दी तेरे कदमों के तले। कोई बात नहीं अनिता जी, इस राउंड में आपने कोई अंक नहीं कमाया है, सुबीर भाई बहुत खुश हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आशा जी की ओर और आपका जो शब्द है वो है विभोर, विभोर।

0: शोर से आत्मा विभोर हो गए।
1: ओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपने गाना ठीक तरह से पकड़ा। और लेकिन इसके लिए हम आपको 5 अंक देते हैं। ओके,

0: गई, कोई बात नहीं आशा जी, लेकिन आपने 5 अंक तो कमाए यार, क्या बात है। चलिए उदय भाई, आपके लिए जो शब्द है वो है दामन, दामन, और आपका समय शुरू होता है अब। समय, टाइमर, दामन। नहीं, उदय भाई
1: मैं गा सकती हूँ,
0: लेकिन आपको कोई अंक
1: नहीं
0: मिला। कौन सा गाना?
1: मेरा दामन
0: रास्ते मेरी बाहें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उदय भाई को इस बार कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं सुबीर भाई की ओर, और सुबीर भाई आपका जो शब्द है वो है मकाम, मकाम, और समय शुरू होता है अब। मकाम। नहीं याद आ रहा आपको?

कोई बात नहीं, इस शब्द राउंड के बाद अब देखते हैं कौन क्या उन्होंने क्या अंक कमाया है। अनीता जी 20 अंक, आशा जी 25 अंक, उदय भाई 20 अंक और सुबीर सेन भाई 10 अंक। यानी शब्द राउंड के बाद आशा जी अभी लीड कर रही हैं 5 अंकों के साथ, अनीता जी 5 अंकों के साथ पीछे हैं। और कोई बात नहीं, अभी तो और राउंड्स आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड राउंड का, जो फर्स्ट सब राउंड है उसका नाम दिया गया है फिल्म राउंड। फिल्म जहां पर मैं आपको फिल्म का नाम दूंगा और इस फिल्म से लेकर लिए आपको एक गाना गाना है। अच्छा। कोई भी गाना कर जाते हैं इस फिल्म से। हाँ। अगर मैं आपको कहूँ आशिकी तो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये फिल्म का नाम नहीं आपके लिए। तो चलिए आपका जो फिल्म का नाम है वो है कॉलेज गर्ल। कॉलेज गर्ल सचिन थे उस फिल्म में, है ना। अच्छा गाइए।

0: चाहिए।
1: बहुत ही अच्छा, और आपको मिलते हैं 10 अंक। बहुत ही बढ़िया अनीता जी, येसुदास जी का गाना है, आपने खूब अच्छी तरह से गाया। चलिए हम बढ़ते हैं अब आशा जी की ओर, और फिल्म का नाम है हंसते जख्म। कोई भी गाना हंसते जख्म फिल्म से, जिसमें नवीन निश्चल जी नजर आए थे, और आपका समय शुरू होता है अब। हंसते जख्म,
0: मेहनत हमारे ऐसा नहीं।
1: ओ, और रॉन्ग आंसर, कोई जानता है?
2: कवाली है,
1: कवाली है, और ये गाना भी है,
2: मशहूर है,
1: जीप में गाते हैं। तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है कि जहां मिल गया। कोई बात नहीं, लेकिन आशा जी फिर भी आपने बहुत कोशिश की। चलिए बढ़ते हैं अब हम उदय भाई की ओर, और आपका जो प्रश्न है, फिल्म गैम्बलर से कोई भी गाना, गैम्बलर, देवानंद वाला गैम्बलर, समय शुरू होता है अब। गैम्बलर नहीं याद आ रहा आपको? ओ उदय भाई, ओ कोई जानता है गैम्बलर का गाना?
0: शायद वो गाना, चोरी नहीं मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना।
1: कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश की है उदय भाई, ये तो एक खेल है। फिर भी आप फिर से काशअप कर सकते हैं, आप अपने आप पर विश्वास रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम सुबीर सेन भाई की ओर, और आपकी फिल्म का नाम है मंजिल, जिसमें अमिताभ बच्चन जी नजर आए थे। मंजिल, मंजिल, केवल मंजिल, जो अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने नजर आए थे। ओ, जानते हैं?

तुमने गाना शुरू किया तब आपने कहा ओ ये गाना था, फिल्म का नाम भी तो जानना था। कोई बात नहीं सुभिसेन भाई, और फिल्म राउंड के उपरांत अब हम देखते हैं कैसा नज़ारा है टोटल का। और पहला जो पहले श्रोता यानी पहले कंटेस्टेंट अनीता जी, आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स और आशा जी को मिले हैं 25 अंक, उदय भाई को 20 अंक और सुभिसेन भाई आप 10 अंक पर हैं अभी। और अभी के लिए जो सबसे पहले स्थान पर हैं वो है अनीता जी। ओके अनीता जी, अब हम बढ़ेंगे म्यूजिक राउंड की ओर। ओके, और म्यूजिक राउंड की ओर हम बढ़ते हैं, तो चलिए एक धुन आपके लिए चलाएंगे। म्यूजिक आप सुनिए और पहचानिए और शुरुआत से गाइए। म्यूजिक प्लीज लुडोविक।

वेरी गुड, और आपको मिले हैं 10 अंक, क्या बात है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आशा जी की ओर, और आपका जो धुन इस प्रकार है।

0: दुनिया में जरूर।
1: बहुत ही बढ़िया, आपने जैसे तैसे पकड़ लिया। कोई बात नहीं, लेकिन इस परफॉर्मेंस के लिए आपको मिले हैं 10 अंक। आपके जो सपोर्टर्स हैं कहते हैं ओ टॉप, बहुत ही बढ़िया, यू जस्ट हैव डोंट हैव टू स्टॉप। चलिए हम उदय भाई की ओर बढ़ते हैं और आपका धुन इस प्रकार है।
2: प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। ओ
1: वेरी गुड, तालियों की गूंज आप लोगों के लिए, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है ना। ओके, तो 10 अंक भाई उदय जी के लिए भी। अब हम बढ़ेंगे सुबीर सेन भाई की ओर और आपका धुन इस प्रकार है।

0: समय शुरू होता है अब, टाइमर। नहीं पता आपको? सुबीर भाई
1: पता है मुझे, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है।
0: ओह क्या, कौन सा गाना है?
2: तर्जन माय तर्जन, आजा मैं कुछ कहूँ तुझे प्यार कैसे हो।
0: लुडोविक भाई वहाँ पर देख रहे हैं, उनको भी पता चल गया था। कोई बात नहीं, लेकिन सुबीर भाई कोई बात नहीं। म्यूजिक राउंड के बाद अब हम एक टोटल करते हैं। कुल मिला के अनीता जी को प्राप्त हुए हैं 40 पॉइंट्स, आशा जी को मिले हैं 35 पॉइंट्स, 35 अंक, उदय भाई को 30 अंक और सुबीर सेन भाई को 10 अंक। लेकिन अभी भी आप दूर नहीं है भाई सुबीर जी। ओके तो अनीता जी आप अभी फिर से पहले स्थान पर हैं। तो चलिए ये जो दो राउंड्स हैं समाप्त हो गए हैं, इसमें दो दो सब राउंड्स थे। अब हम बढ़ेंगे तीसरे राउंड की ओर, और ये जो तीसरा राउंड है बड़ा ही दिलचस्प है। आपको ठीक तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और आपको हम 4 विषय देंगे क्योंकि आप सबसे पहले हैं अभी 40 पॉइंट्स। आशा जी दूसरे स्थान पर हैं, तीसरे स्थान पर उदय भाई और चौथे स्थान पर सुबीर भाई हैं। तो सुबीर भाई आपको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, जो बचेगा आप ही के लिए रहेगा। तो चलिए हम आपको सभी विषय बता देते हैं। तो अनीता जी आपका जो आज का विषय है वो है स्पेशल ट्राइब्यूट 2026। इसका यह अर्थ है कि जो कलाकार 2026 में इस साल वो गुजर गए, उनका देहांत हो गया, उन पर आपको हम प्रश्न पूछेंगे। उन पर 3-3 प्रश्न रहेंगे हर एक विषय के लिए। ओके तो आप या तो ये चूज करेंगी या फिर आप चयन करेंगी स्ट्रेंज जोरीज ऑफ इंडियन सिनेमा। जोरी नहीं बल्कि स्ट्रेंज जोरीज, हो सकता है कि एक अभिनेता ने एक अभिनेत्री से प्यार

0: प्यार किया होगा रियल लाइफ में, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई. ऐसे ऐसे जोड़ी जिनकी कोई नहीं, जो जोड़ी नहीं बनी, ये स्ट्रेंज जोड़ीज, ओके. या तो फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में हम पूछ सकते हैं आपसे, या फिर सरप्राइज. सरप्राइज में क्या रखा है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो सरप्राइज है. तो चार विषय हैं, स्पेशल ट्रिब्यूट 2026, स्ट्रेंज जोड़ीज ऑफ इंडियन सिनेमा, फिल्म फेयर अवार्ड्स, या फिर सरप्राइज. इन चारों में से जल्दी से बताइए कौन सा विषय का चयन करते हैं आप, कौन से विषय का. पहला स्पेशल ट्रिब्यूट 2026. ओके, तो इस टॉपिक में आपके पास तीन प्रश्न, हम आपसे तीन प्रश्न पूछेंगे और बारी बारी से आपको गाना पड़ेगा, ओके. और हर एक प्रश्न के लिए 10 अंक सही जवाब के लिए और 10 सेकंड्स. चलिए, पहला, आशा जी का निधन इसी साल हुआ अप्रैल महीने में, आशा भोसले जी का. तो चलिए, आशा जी, उन्होंने नीलम जी के लिए एक गाना गाया था. नीलम एक अभिनेत्री थी जो 1980 के दौर में बहुत ही प्रचलित थी, ये अभिनेत्री. तो कोई भी गाना जो आशा जी ने नीलम जी के लिए गाया था वो गाना गाइए, और आपका समय शुरू होता है अब.
1: नीलम नीलम की नहीं याद,
0: नहीं याद आ रहा आपको?
1: नहीं,
0: नीलम. ओ क्या हो गया? ओ लला,
1: मैं गा दूं?
0: गा दीजिए.

0: कोई बात नहीं, लेकिन आपको अंक नहीं मिलेगा आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये केवल आप ही का टॉपिक है
1: जी।
0: सुमन कल्याणपुर
1: जी,
0: आप उनको जानती हैं
1: जी? हाँ।
0: ओके। उन्होंने रीना रॉय जी के लिए गाना गाया था, रीना रॉय जी के लिए। ओके
1: जी।
0: तो कोई भी गाना जो सुमन कल्याणपुर जी ने रीना रॉय जी के लिए गाया है
1: जी।

0: सचमुच आप अपने इम्तिहान में पास हो गई हैं, जोरदार तालियां, क्या बात। चलिए इसके लिए आपको मिले हैं 10 अंक। एक अंतिम प्रश्न आपका हम आपसे हम पूछते हैं, और एक गाना आया है जो सुदेश कुमार एक अभिनेता थे, सुदेश कुमार
1: जी।
0: 95 ईयर्स के ओल्ड में उनका निधन हो गया। ओके, 95 ईयर्स के ओल्ड में उन जून महीने में उनका निधन हुआ। तो कोई भी गाना जो मुकेश दा ने सुदेश कुमार जी के लिए गाया है, और उस गाने में वो ये शब्द हैं, सारंगा सारंगा,
1: ये फिल्म गाना है सारंगा फिल्म।
0: अब आपको गाना है, देखेंगे। मुकेश जी ने सुदेश कुमार जी के लिए गाया है,
1: सारंगा तेरी याद में

0: बार में
1: नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन आपको मिले हैं 5 अंक क्योंकि आपने पूरा गाना नहीं गा पाए, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है। ओके, तो 5 अंक आपको मिले हैं, तो इस राउंड में आपको कुल मिला के 15 अंक हासिल हो गए हैं। ओके, अब हम बढ़ेंगे आशा जी की ओर, क्योंकि आप दूसरे स्थान पर थे सेकंड राउंड के बाद। तो चलिए अब हम आपसे पूछेंगे, स्ट्रेन जोरीज ऑफ इंडियन सिनेमा, फिल्म फेयर अवार्ड्स या फिर सरप्राइज? स्ट्रेंज जोरीज ऑफ इंडियन सिनेमा। ओके, तो आपके पास अभी, अच्छा बहुत ही बढ़िया, एक स्ट्रेंज जोड़ी है इंडियन सिनेमा में, तीन प्रश्न हैं। एक जोड़ी है इंडियन सिनेमा में, वो है अमिताभ बच्चन जी और वाहिदा रहमान। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने वाहिदा रहमान जी के साथ काम किया था और उन्होंने उनको अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में, लेकिन बाद में चलकर वाहिदा रहमान अमिताभ बच्चन जी के माँ का रोल निभाने लगे, ये कैसे जोड़ी?
2: जी हाँ।
1: तो कोई भी गाना किसी भी फिल्म से जहाँ पर वाहिदा रहमान जी और अमिताभ बच्चन जी साथ साथ नजर आते हैं, बताइए।
3: जी,

0: बहुत ही बढ़िया, और आपको मिले हैं 10 अंक। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न में एक जोड़ी है, एक अभिनेता है जो 60 ईयर्स के ऊपर थे जी। और उन्होंने एक अभिनेत्री से उन्होंने एक रोल किया था, किरदार निभाया था, साथ साथ फिल्म में नजर आए थे, जो 18 साल की थी
1: जी।
0: जान गए वो कौन है?
1: सारा बानो और दिलीप कुमार।
0: ये इतना ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, 18 साल वाली थी तीना मुनिम और 60 साल वाले थे देवानंद जी।
1: हाँ जी।
0: अच्छा, कोई भी गाना जो ये दोनों जिस फिल्म में नजर आए थे उसी फिल्म से कोई गाना।
1: जैसा देश वैसा भेस, फिर क्या डरना, और जल्दी से चलो करिए काहे डरना, मैं नहीं करना यू नहीं बनना।
0: बिल्कुल, और 10 अंक, क्या बात है। और एक अंतिम प्रश्न आपके लिए, जहां पर एक अभिनेत्री है जो सभी उनको जानते हैं, माधुरी दीक्षित, जिन्होंने विनोद खन्ना जी के साथ काम किया था और बाद में चलकर उसके बेटे के साथ भी काम किया, कैसी जोड़ी अक्षय खन्ना जी के साथ भी उन्होंने काम किया
1: जी।
0: तो कोई भी गाना जो माधुरी दीक्षित और अक्षय खन्ना ने साथ साथ किस फिल्म में काम किया है, उसी फिल्म से कोई भी गाना आप गा सकती हैं।
1: ओ जाने, ओ बेबी ब्रेक माय डॉग, ब्रेक माय हार्ट, आई विल ओ बेबी डॉग, ब्रेक माय हार्ट, आई विल जाने जाना मैं तुझे प्यार किया, तुझे प्यार
0: समय तो समाप्त हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको 5 अंक तो प्राप्त हुए, कोई बात नहीं, यही गाना आप गा सकते। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आशा जी ने क्या खूब खेला है, वाह। और इस राउंड में आशा जी को कुल मिलाकर 25 अंक प्राप्त हो गए, क्या बात है। तो अब हम बढ़ते हैं उदय भाई की ओर। ओके उदय भाई, तेरा क्या होगा रे कालिया आपके पास है फिल्म फेयर अवार्ड्स या फिर सरप्राइज? सरप्राइज, ओ सरप्राइज, तो कोई बात नहीं, आपके लिए हम एक अंतरा गाएंगे। हाँ। वो अंतरा सुनकर आपको शुरुआत से गाना है। ओके, बहुत ही आसान है। अच्छा।

0: कोई, बताइए कौन सा गाना है? समय, टाइमर, बहुत ही आसान है। नहीं याद?
1: मैं गाऊं, मैं गाऊं, मैं गाऊं, पॉइंट तो नहीं मिला, मैं गाऊं।
0: कोई बात नहीं।
1: चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहां।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश की है। रफी जी का गाना है। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न आपके लिए, आपको बताना पड़ेगा। हम मैं वो गाना जो है मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन बोल के, ओके? मैं केवल वो बोल के, यानी मैं उस शब्द को मैं गाऊंगा नहीं, केवल बोलूंगा। आपको गाना है, ओके? जैसे मैं कहता हूँ सांसों की जरूरत है, जैसे क्या कहेंगे आप? सांसों की जरूरत, ओके? आपने आप समझे, ओके? तो मैं आप बोल के आपको बताता हूँ, आपको ये गाना पड़ेगा, ओके? और ये गाना शुरू होता है ऐसे, दिल के झरोकों में तुझको बिठा कर, यादों को तुझ तेरी मैं दुल्हन बनाकर।
1: दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाओ उदास।
0: क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत ही बढ़िया। यही है सरप्राइज आपके लिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम बढ़ेंगे एक अंतिम प्रश्न की ओर, क्योंकि एक सरप्राइज है, और सरप्राइज आपने चुना है या तो बहुत ही कठिन या तो बहुत ही आसान। कोई भी गाना आप गाइए जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी और राजेश खन्ना जी साथ साथ नजर आए थे, कोई भी गाना, कोई भी गाना। समय,
1: ओ कहीं

0: चुपके से आए।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इस राउंड में उदय भाई को मिले हैं 10 अंक। चलिए सुबीर भाई, आपके पास तो कोई चारा नहीं है, आपको फिफा वॉइस ही सुनना पड़ेगा। तो चलिए, आशा जी का निधन इसी साल हुआ और उन्हें 7 बार फिफा अवार्ड्स प्राप्त हुआ, 7 बार। तो चलिए, जो अंतिम बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड्स प्राप्त हुआ था वो 1978 की एक फिल्म है जिसका नाम है डॉन, जिसमें हेलेन जी, हाँ।

0: परवाना। बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां। आपने आपने तो मुझे मौका नहीं दिया प्रश्न पूछने के, तुरंत आप गाने लगे, क्या बात है।
1: चाहिए ना।
0: अब फिंस अवार्ड से एक और प्रश्न है आपके लिए इस टॉपिक में, इस विषय से जुड़ा हुआ ये जो दूसरा प्रश्न है वो है, फिंस अवार्ड के इतिहास में जो फीमेल सिंगर सबसे ज्यादा जवान है वो थी नाजिया हसन, और उन्होंने कुर्बानी के लिए गाना गाया था, उसे बेस्ट सिंगर, 15 साल की उम्र में वो बेस्ट सिंगर बन गई थी। उस गाने को आपको गाना पड़ेगा अब,
1: कुर्बानी का,
0: कुर्बानी का जो जिसमें नाजिया हसन जी को मिला था बेस्ट टाइमर। नहीं याद आ रहा।
2: आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए।
0: लुडोविक कह रहे हैं कि क्या हो गया।
1: मैं लुडोविक के के तरफ देखना चाहता
0: हूँ। लुडोविक नहीं बोलेगा, लेकिन वो खुद प्रोफेशनल है इस मामले में। और लुडोविक का मन ही मन नाराज हो रहे हैं कि यहाँ पर एक दो लड़की हैं और दो लड़के हैं, लड़कों को क्या हो गया। चलिए एक अंतिम प्रश्न आपके लिए, एक गाना है जिसके लिए कुमार सानू को मिला था फिल्मफेयर अवार्ड की तरफ से बेस्ट सिंगर, और उन्होंने शाहरुख खान के लिए गाया था, शाहरुख खान को भी मिला था बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर फिल्म बाजीगर में, तो कुमार सानू का कौन सा गाना है शाहरुख खान के लिए वो गाते हैं और उसे बेस्ट मिलता है, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलता है?
1: बाजीगर हो बाजीगर।
0: सच, आपके पास समय है अभी, और समय है,
1: ये गाना तो नहीं है।
0: टाइमर।
1: ये तो रहा तो
0: नहीं याद आ रहा। ओ लला,
2: ये काली काली आंखें,
0: ये गोरे गोरे गाल। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो राउंड रहा बड़ा ही मजेदार रहा, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले राउंड को, लेकिन उससे पहले बता दें आपको, अनीता जी को प्राप्त हुए हैं 55 पॉइंट्स, 55 अंक। ओके, आशा जी को प्राप्त हुए हैं 60 पॉइंट्स, यानी 60 अंक, 5 अंक आगे। उदय भाई को मिले हैं 40 अंक, 40 पॉइंट्स। और सुबीर सेन भाई, आप आगे बढ़े हैं, आपको मिले हैं 20 अंक। चलिए एक अंतिम फाइनल राउंड हो जाए, 5:48 हो गए हैं और हमारे पास बहुत कम समय रह गया है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी अनिता जी की ओर। अगला जो प्रश्न रहेगा उसमें कोई लाइफलाइन नहीं है, ऐसे तुरंत हम बढ़ेंगे, तो चलिए हम बढ़ते हैं अनिता जी की ओर, और आपको लाइफलाइन है, अगर आप ये प्रश्न नहीं जानना चाहते हैं तो आप इसे बदल भी सकते हैं अगर आप चाहती हैं तो। ओके, शैलेंद्र सिंह आज एक्टर एंड सिंगर इन फिल्म अग्निमैथ। अग्निमैथ में एक फिल्म है जिसमें शैलेंद्र सिंह जी ने काम किया था, और वो एक सिंगर भी हैं, गायक भी हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा गाना

0: गाया था इस फिल्म में और खुद वो अभिनेता है इस फिल्म में, कौन सा गाना है वो? टाइमर,
1: टाइमर वो करेंगे दूसरा गाना
0: नहीं, आप चेंज करेंगे? ओके, आप चेंज करेंगे, कोई बात नहीं, तो आप चेंज करेंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए इस प्रकार है, ओके, कोई भी गाना आप गाइए जिसमें शब्द तमन्ना है।
1: मेरी तमन्नाओं के तकदीर को,
0: तमन्ना मैंने कहा, तमन्नाओं नहीं, तमन्ना,
1: तमन्ना,
0: हाँ तमन्ना, आपका समय शुरू होता है अब, तमन्ना,
1: तमन्ना को याद नहीं आ रहा है, मेरी तमन्ना,
0: तमन्ना,
1: जान जान जिगर ओ जान तमन्ना।
0: क्या बात, क्या बात है, वक्त रहते ही आपने पकड़ लिया, जोरदार तालियां, क्या बात, और आप निकल गए 5 अंक आगे। ओके, अब हम बढ़ेंगे आशा जी की ओर, जल्दी जल्दी। सफेद लिबास में अनिल कपूर, पर तबू रहे दूर दूर, हीरो चाहे मधुर मिलन, पर हीरोइन देखे धरती गगन, कौन सा गाना है ये? सफेद लिबास में अनिल कपूर, तबू रहे दूर दूर, हीरो चाहे मधुर मिलन, पर हीरोइन देखे
1: धरती गगन। बदल दीजिए, प्लीज बदल दीजिए,
0: बदल दें,
1: हाँ।
0: गाना तो यही है, पायली चुनमुन चुनमुन, कोई बात नहीं। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और जो अगला प्रश्न है इस प्रकार है, बहुत आसान सा है, कोई भी गाना गाइए फिल्म वारिस में जिसमें अमृता सिंह जी नजर आई थी।
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम,
0: मैं तेरे नाम से शुरू
1: और तेरे नाम पे खत्म।
0: बहुत ही अच्छा, और आपको मिले हैं 10 अंक, क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं अब उदय भाई की ओर, और आपका प्रश्न फाइनल राउंड में इस प्रकार है, एक गाना आया था फिल्म ऐतबार में जिसमें राज बब्बर जी और डिंपल कपाडिया थे, और गायक कलाकार हैं भूपिंदर जी और आशा भोंसले जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है दोनों, वो गाना आप गाइए, और उसमें एक शब्द आता है नजर, समय शुरू होता है अब,
2: चेंज
0: चेंज, ओके, किसी नजर को तेरा, कोई बात नहीं। एक फिल्म आई थी हाथ की सफाई जिसमें रफी साहब और लता जी ने खूब अच्छी तरह से गाया है, विनोद खन्ना और सिमी ग्रेवाल पर, वो गाना गाइए हाथ की सफाई।
3: तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, होने नहीं,
0: ये तो प्रोफेसर प्यारेलाल है, वादा कर ले साजना, कोई बात नहीं। सुबीर सेन भाई, आपके लिए अंतिम प्रश्न, और इस कंपटीशन का अंतिम प्रश्न रहेगा, और आप हमें बताइए, नाव में बैठा राजेश खन्ना, हाथ में शीशे का पैमाना, सुहानी सी थी वो रात्रि, पर उनके मन से निकले चिंगारी, कौन सा गाना है वो? नाव में राजेश खन्ना जी बैठे हैं और चिंगारी की बात कर रहे हैं, बदलेंगे या यही प्रश्न पर जाएंगे?
2: नहीं बदलिए,
0: बदलेंगे, कौन सा गाना है?
3: चिंगारी कोई भर के,
0: कोई बात नहीं। तो चलिए, आपके लिए अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, कोई भी गाना आपको गाना पड़ेगा जिसमें नसीरुद्दीन शाह जी नजर आए थे। नसीरुद्दीन शाह जी, नसीरुद्दीन शाह, और समय शुरू होता है अब,
2: नहीं पता,
0: नहीं पता,
1: मैं गाऊं, मैं गाऊं,

0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सुबीर सेन भाई, ये खेल है और आप लोगों ने इस खेल को खेल कर दिलों से बढ़ा दी है मेल। तो चलिए आज का जो म्यूजिक डे अंताक्षरी स्पेशल कंपटीशन है यहाँ पर संपन्न हो गया। हम लुडोविक को बहुत धन्यवाद देते हैं, टेक्नीशियन के रूप में उन्होंने खूब हमारी सहायता की। और बता दें आप लोगों को कि आज जिसकी जीत हुई है आपको बताएंगे। तो पहले सुबीर सेन भाई को मिले हैं 30 अंक 30 पॉइंट्स, उदय भाई को मिले हैं 40 अंक 40 पॉइंट्स, अनिता जी को मिले हैं 65 पॉइंट्स 65 अंक, और आज का जो ग्रैंड विनर ऑफ दिस म्यूजिक डे कंपटीशन वो है आशा जी 70 पॉइंट्स 70 अंक, यानी 5 अंक केवल। अगर आप अच्छी तरह से गा लेती तो आपको 5 अंक मिल जाते, तो एग्जेको हो जाता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आशा जी, अनीता जी, उदय भाई और सुबीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा MBC की ओर से। चारों को मिलेगा डेलिजो पिज़्ज़ेरिया एंड कैफेटेरिया की ओर से 500 रुपीज़ का फूड कूपन, और आपको भेजा जाएगा MBC की ओर से और पुरस्कार। और इसी के साथ समाप्त होते हैं आज का कार्यक्रम। श्रोतागण, बैठे बैठे आप लोगों ने खूब इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, हमारे साथ आप लोगों ने घर बैठे खेला होगा अपने परिवार के साथ। हम जानते हैं कि अंताक्षरी प्रोग्राम आप बेहद ही पसंद करते हैं, हमेशा उषा जोर मेरा साथ देते रहे हर बुधवार की शाम को। और कोई कोई तो कहता है कि ये बुधवार है ही नहीं, ये तो अंताक्षरी वार है। तो चलिए उदय भाई, सुबीर सेन भाई, अनिता जी और आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम कितना धन्यवाद करेंगे उतना ही कम होगा। आप लोग यहाँ पर आए अपना कीमती समय निकाल कर, और जो स्टूडियो में बैठे सभी सपोर्टर्स को हम कहेंगे कोटिशा धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए, अपने सभी परिवार का आप लोगों ने मान बढ़ाया और हौसला भी बढ़ाया और मेरा भी काम आसान कर दिया। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि,
1: धन्यवाद, थैंक यू।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के ठीक 6 बजे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सूखे और कम वर्षा के कारण देश में जलापूर्ति चिंता का विषय बन गई है। मुख्य जलाशय मोवाक्वा केवल 43% क्षमता पर है। स्थिति से निपटने के लिए CWA पानी के टैंकर, वाल्व प्रबंधन और सुदृढ़ कॉल सेंटर के माध्यम से जलापूर्ति बनाए रखने में जुटी है। लक्ष्य, उपभोक्ताओं की जरूरतों को सुनते हुए उपलब्ध पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना है। आज राष्ट्रसभा में विदेशी श्रमिकों की भर्ती पर हुई PNQ के दौरान मंत्री रिजाउतीम ने बताया कि EDB ने नई और पारदर्शी भर्ती प्रणाली के लिए दोबारा टेंडर जारी किया है। साथ ही इसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के आकलन के लिए ILO से तकनीकी सहायता ली जा रही है। भोपाल में 2015 के 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रवासी हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया था। इसी कड़ी में इस वर्ष के 6ठे संस्करण का सम्मान पहली बार मॉरिशस के साहित्यकार डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ को उनकी पुस्तक मुझे लहरों से बातें करनी है के लिए दिया गया। और विदेश में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह 2 में वर्ष 2026 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पेश अब समाचार विस्तार से। सूखे की इस अवधि में देश के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। द्वीप का मुख्य जलाशय मोवाक्वा अपनी क्षमता का केवल 43% ही भरा हुआ है। इस नाजुक स्थिति और लंबे समय से बारिश न होने के कारण CWA जलापूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था हो, वाल्व का प्रबंधन हो या कॉल सेंटर को मजबूत करना, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टीमें हर मोर्चे पर जुटी हुई हैं। मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की बात सुनना और इस संसाधन का यथासंभव समान वितरण सुनिश्चित करना है। हमारी टीम कल प्लेन विलियम्स गई थी, जो वर्तमान प्रतिबंधों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। अब्दुल्ला की करुणा लालू।
2: 43% ये मोवाक्वा का वर्तमान जल स्तर है। ये स्तर चिंताजनक है, जो पिछले कई महीनों से वर्षा की कमी को दर्शाता है और पेयजल वितरण नेटवर्क पर भारी दबाव डाल रहा है। प्लेन विलियम्स में स्थिति खास रूप से कठिन है। कई इलाकों में निवासियों को रोज केवल 5 से 6 घंटे ही पानी सप्लाई की जा रही है। ओकुले में हमने CWA की एक टीम का अनुसरण किया, जो निवासियों की सहायता के लिए तैनात हैं। इस पानी की टंकी के चालक के लिए कार्य दिवस लगातार लंबे होते जा रहे हैं। थोड़ा आगे उटन में CWA की तकनीकी टीमें वाल्वों का संचालन कर रही हैं,

0: ताकि जल का यथासंभव समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण कड़ी CWA का कॉल सेंटर है। इस कक्ष में एजेंट लगातार शिकायतों, हस्तक्षेप मांगों और जलापूर्ति संबंधी मांगों का निपटारा कर रहे हैं। सौंद्रा शॉल ने कहा, ग्राहकों को सुनते हैं ये जानने के लिए कि उनकी शिकायत क्या है। इस असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए CWA ने अपनी सभी टीमों को पूरी तरह सक्रिय रखा है। सुनील गोपाल ने कहा, 5 से 6 घंटे पानी देने का ये जो उपाय किया गया है, यदि इसे ठीक से प्रबंधित कर सकें, स्थिति में स्थिरता ला सकें तो कुछ राहत होगी। वर्तमान में 43% जल स्तर में 15% कीचड़ है। ये जल भंडार सितंबर महीने तक के लिए
1: हैं।
0: अधिकारियों ने सामूहिक जिम्मेदारी की अपील की है। बचाया गया हर लीटर पानी जरूरी है, क्योंकि जब तक बारिश महोबाकवा जलाशय को फिर से नहीं भर देती, तब तक पानी का प्रबंधन मॉरिशस के हजारों परिवारों के लिए एक दैनिक चुनौती बनी रहेगी।
2: आज राष्ट्रसभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन के केंद्र में विदेशी श्रमिकों की भर्ती का मुद्दा रहा। मंत्री रेजा उतिम ने घोषणा की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विदेशी श्रम शक्ति की भर्ती के लिए एक सरल, पारदर्शी और आधुनिक प्रणाली स्थापित करने हेतु नया टेंडर जारी किया गया है। एक पिछला प्रयास विफल रहा था। रेजा उतिम ने यह भी घोषणा की कि मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों की भर्ती के सामाजिक आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तकनीकी सहायता मांगी गई है। उल्लेखनीय है कि भर्ती परमिट प्राप्त करने के मुद्दे पर तीखी बहस के बाद PNQ सत्र को कुछ मिनटों के लिए स्थगित कर दिया गया था।
0: मॉरिशस कुछ सेक्टरों में श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी कामगारों को भर्ती करने के लिए तैयार हैं। देश में अभी लगभग 50,000 विदेशी कर्मचारी हैं। इस बीच अधिकारियों का कहना है कि इन कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय कामगारों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। कंपनियों को विदेश की ओर रुख करने से पहले मॉरिशनों की भर्ती एवं ट्रेनिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
3: Can the honorable minister inform the house whether government has a long-term?
0: विपक्ष नेता ने पूछा, क्या श्रम शक्ति में मिसमैच को पाटने के लिए एक दीर्घकालिक स्ट्रेटजी है?
4: There's a series of measures that has been identified which will take effect to
0: श्रम मंत्री ने कहा, कई उपाय देखे गए हैं जिससे स्किल्स मिसमैच की समस्या से निपटा जाए। HRDC के माध्यम से ट्रेनिंग में भारी निवेश और स्किल मिसमैच के शिनाख्त के लिए नए सॉफ्टवेयर का विकास इनमें शामिल है। अब ये नियम स्पष्ट हैं, यदि आप ये दिखाएंगे कि स्थानीय स्तर पर भर्ती करने में असमर्थ हैं तो विदेशी कर्मचारी की अनुमति दी जाएगी। अनुमति की शर्त भी मॉरिशनों की रक्षा के लिए है। अधिकारी गैर कानूनी तरीके से रहने वालों से निपटने के लिए निरीक्षण को और मजबूत करने की भी योजना बना रही हैं। जनवरी 2026 से 428 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।
4: My ministry has taken a policy decision that we will not
0: कोई वर्क परमिट जारी नहीं की जाएगी या रिन्यू नहीं की जाएगी यदि एम्प्लॉयर द्वारा कम से कम 90% तक नियमों का पालन न किया जाए।
4: Of the workers who is under his employment and whose work permit has been expired.
0: भर्ती परमिट पाने के निकषों पर अतिरिक्त सवालों के समय सदन में तीखी बहस हुई।
3: Can the honorable minister therefore explain to the house how this company, which has been incorporated on the 22nd October 2025, has been able to submit financial statements for the last 3 years as required in the application form to be able to obtain a recruitment license for foreign labor.
4: There were 54 recruitment licenses. So we came and we put an order Now, how we determine the financial resources of a company who has just been set up?

0: And how can we not discriminate against a company that has just been set up? The answer is that you provide us with a business plan. All companies which are licensed to recruit foreign workers to work in Mauritius are required to deposit a guarantee of 1 million rupees.
1: Honourable Minister, are you aware that there's a sole director in that company and that that gentleman is only 21 years old? Does he have any experience with regard to recruitment of foreign workers?
0: As a minister, I don't know and I don't get involved in any issue of recruitment licenses. So if the shareholder, maybe a young person, but if he has a senior official who is going to do the work, what do? I discriminate against our youngster. I tell them, don't invest, don't start a business.
2: Speaker ne budget par charcha phir se shuru karne se pehle kuch minute ke liye satra suspend bhi kar diya.
3: बजट भाषण और पेंशन सुधारों पर लगी रोक अभी भी ट्रेड यूनियनों को एकजुट किए हुए हैं। इस बुधवार नेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन और स्टेट एंड ओवन एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मीन्स टेस्टिंग के विकल्प पेश करने और इसे पूरी तरह से समाप्त करने की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पब्लिक गवर्निंग एक्ट में संशोधन के जरिए प्रस्तावित नए दंडों की भी आलोचना की गई और उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने वाला बताया गया। MSM ने आज पोटवी स्थित अपने मुख्यालय में बजट 2026-2027 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दल के नेता प्रवीण जगनाथ ने बजट के कई कदमों, विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन की नई प्रणाली की आलोचना की। फाकुनाई याचना मिश्रा।
4: MSM के सदस्यों की मौजूदगी में पार्टी के नेता प्रवीण जगनाथ ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने नई पेंशन प्रणाली से संबंधित कदम का कड़ा खंडन किया। प्रवीण जगनाथ ने कहा कि यदि MSM सत्ता में वापस आती हैं, तो 60 साल की उम्र में पेंशन प्रणाली वापस कायम की जाएगी।
5: Aussi une question qui reste sans réponse autour de ce qui vient d'arriver.
4: कई सवाल बिन जवाब रह गए हैं। सरकार कह रही है कि मीन्स टेस्ट रोकी जा रही है, लेकिन परिणामों पर कुछ नहीं कहा गया। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि कौन सी पेंशन प्रणाली कायम की जाएगी। यदि आप 65 साल की उम्र में पेंशन प्राप्त करेंगे, तो क्या जीवन भर आपको उतनी ही रकम मिलेगी? MSM ने सरकार द्वारा शागस मुद्दे के संचालन के तरीके की भी आलोचना की। अन्य विषयों में बड़ी बजट वाली परियोजनाएं जैसे हब ब्रिज, पब्लिक गैदरिंग्स एक्ट में सुधार तथा खाद्य सामानों और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल हैं।
3: अन्य खबरों में वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदी साहित्य और सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया था। इसी पहल के तहत प्रत्येक 2 वर्ष में उत्कृष्ट प्रवासी हिंदी साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है। हिंदी आज विश्व भर में भारतीय प्रवासियों की सांस्कृतिक पहचान का सशक्त माध्यम बन चुकी है। इस वर्ष इस छोटे संस्करण के अंतर्गत पहली बार के लिए मॉरिशस के साहित्यकार डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ को उनकी पुस्तक मुझे लहरों से बातें करनी है के लिए ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में महात्मा गांधी संस्थान में एक विशेष साहित्यिक समारोह आयोजित किया गया। अशिता रघु।
6: महात्मा गांधी संस्थान में आयोजित इस समारोह में महात्मा गांधी संस्थान अप्रवासी साहित्य सृजन सम्मान के 36 संस्करण के अंतर्गत पहली बार मॉरिशस के साहित्यकार डॉक्टर सोमदत्त काशीनाथ को उनकी पुस्तक मुझे लहरों से बातें करनी है के लिए प्रदान किया गया।
7: मुझे लहरों से बातें करनी है, यह मेरी पहली पुस्तक थी, तो उसी को मैंने इस सम्मान के लिए प्रस्तावित किया था। इसमें व्यक्ति हैं जिसने सब कुछ हार दिया है, उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और वो समुद्र के पास बैठकर लहरों से बातें करता है और उसे यह अनुभव होता है कि वे अपनों से बातें कर रहा है।
6: इस अवसर पर डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को समर्पित वसंत विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। वहीं रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग के तत्वावधान में आयोजित वसंत एवं रिमझिम साहित्यिक प्रतियोगिता 2025 में लगभग 120

0: 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तृतीय स्तर की कविता प्रतियोगिता में तिश्मा देवी जलू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
1: मैंने कविता प्रतियोगिता में भाग ली थी जिसका शीर्षक था भारत मॉरिशस मैत्री। भारत हमेशा से मॉरिशस का समर्थन करता आया है और हमेशा मॉरिशस इसके अंतर्गत विकसित ही होता आया है। इस तरह हम भारत से हमेशा मैत्री के संबंध ही रखते हैं।
0: माध्यमिक स्तर पर युवाओं और ड्रग विषय पर निबंध लेखन के लिए प्रिवेश सिंह अलकोई को प्रथम पुरस्कार मिला।
2: मैंने अपना निबंध ड्रग्स और आदि पर लिखा है जो ड्रग्स हमारे युवकों को बहुत प्रभावित कर रहा है। मुझे वसंत प्रतियोगिता के लिए ये पुरस्कार मिला है।
0: वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के उपयोग पर लिखे गए निबंध के लिए गीतिका देवी प्रसाद को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
3: मैंने अपना निबंध AI पर लिखा था। AI के महत्व और दुरुपयोग के बारे में लिखा था क्योंकि हम AI को अपने जीवन में यूज करते हैं।
0: रचनात्मक लेखन एवं प्रकाशन विभाग की प्रमुख ने हिंदी के विकास में साहित्यिक प्रकाशनों और प्रतिभागियों की अहम भूमिका पर जोर दिया।
4: इस वर्ष की एक मॉरिशसीय लेखक को यह आप्रवासी सम्मान प्राप्त हुआ है। यह हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है क्योंकि उनका जब आप कहानी संग्रह पढ़ेंगे और जिस तरह से जो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्यों ने जब निर्णय लिया तो उसमें जो विशेषताएँ पाई इससे दिखता है कि मॉरिशस में भी वह खूबी है। लेखकों में जो प्रतिभा होनी चाहिए वह धीरे धीरे विकसित हो रही है, तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक पहल है। और इसी के बहाने मैं दूसरों को भी संदेश देना चाहूंगी कि आप सृजनशील बने, इसी तरह सतत लिखते रहें और एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी।
0: समारोह के मुख्य अतिथियों में शामिल भारतीय उच्चायोग के प्रथम सचिव श्री रंजन कुमार सिंह ने कहा कि भारत और मॉरिशस का संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। साहित्यकारों को सम्मानित करने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने वाले इस आयोजन ने हिंदी के उज्जवल भविष्य की एक नई तस्वीर पेश की। ये पहल न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही है बल्कि नई पीढ़ी को अपनी भाषा और सांस्कृतिक जड़ों से भी जोड़ रही है।
5: अब फुटबॉल की बात करते हैं। विश्व कप 2026 ग्रुप एल में क्रोएशिया के खिलाफ अपनी शानदार जीत के बाद इंग्लैंड इस बार लड़खड़ा गई। घाना के साथ 0-0 से ड्रॉ खेलने के बाद इंग्लैंड की टीम को विश्व कप के अगले दौर के लिए अपनी आधिकारिक योग्यता सुनिश्चित करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अरविंद बिसेसर।
6: इंग्लैंड के थ्री लायंस को लगा झटका। हार तो नहीं हुई पर गाना के सामने द थ्री लायंस को ड्रॉ मैच से संतुष्ट होना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ धुआंधार शुरुआत थी पर गाना के आगे बेसुरा। गाना के खेल में अनुशासन था। द ब्लैक स्टार्स 90 मिनट और इंजरी टाइम तक भी डटकर इंग्लैंड के अनगिनत प्रयासों को नाकाम करते गए। फॉक्सबोरो में बरसात हो रही थी पर गोलों की बरसात नहीं हुई। इंग्लैंड के मैच में पकड़ मजबूत रही कुछ समय के लिए पर गाना के चट्टान जैसे डिफेंस को पार नहीं कर पाए। सेकेंड हाफ में कुछ अच्छे मौके मिले पर गोल बनाना मुश्किल था। अंतिम पलों में हैरी केन को कुछ अच्छे मौके मिले पर गेंद पोस्ट से ऊपर उड़ गई। गाना के ब्लैक स्टार्स अंत तक मजबूती से काउंटर अटैक पर काम करते रहे जहां गोलकीपर पिकफोर्ड को पड़ा अपनी टीम को बचाने के लिए। अंतिम नतीजा गाना 0-0। दोनों टीमों के पास 4-4 अंक हैं।
5: विश्व कप 2026 ग्रुप ए बी और सी के तीसरे और अंतिम दिन के साथ जारी हैं। आज की शाम बेहद निर्णायक हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण मुकाबले होने हैं। मेजबान देश मैदान में उतरेंगे जहां कनाडा का सामना स्विट्जरलैंड से, मेक्सिको का मुकाबला चेक गणराज्य से होगा और सबसे महत्वपूर्ण ब्राजील के लिए स्कॉटलैंड के खिलाफ ये मैच जीतना या हारना जैसा है।
6: ग्रुप स्टेज के आखिरी राउंड के मैच आज से शुरू होंगे। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के मैच। मुख्य आकर्षण होगा ग्रुप सी वाला मैच जहां ब्राजील का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। 2 बजे ये मैच खेला जाएगा। ब्राजील की टीम अपने पहले मैच में ड्रॉ करके दूसरे मैच में जीत हासिल की थी आईसी के खिलाफ। कार्लोस अंसेलोटी की टीम, उनकी किस्मत उनके हाथ में है। ये लोग ग्रुप का पहला स्थान लेना चाहते हैं। विनिशियस जूनियर, मैचिस कुन्हा, ये लोग हैं नेमा बेंच पर हो।

0: होगा, राफिना चोट के कारण नहीं खेल पाएगा। स्कॉटलैंड से बच के रहना होगा क्योंकि इसमें भी स्टार खिलाड़ी हैं। एक जीत के साथ स्कॉटलैंड के पास 3 अंक हैं, तो ये टीम भी क्वालिफाई हो सकती है। ग्रुप ए में दक्षिण अफ्रीका का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। बफाना टीम के खाते में केवल 1 अंक है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास है 3 अंक। एक ड्रॉ सॉन युनमिन की टीम के लिए काफ़ी हो सकता है। ये मैच सुबह 5 बजे आप देख पाएंगे MBC TV के स्पोर्ट्स 11 पर। इसी ग्रुप में मेक्सिको की टीम, जो पहले ही अपना टिकट बुक कर चुकी है, उसके सामने है चेक रिपब्लिक। एक जीत के साथ मेक्सिको पहला स्थान ले सकता है। ग्रुप बी में कनाडा और स्विट्जरलैंड के बीच टकराव, ये ग्रुप ए का न्यूमेरो इनो यानी पहला स्थान लेने के लिए। कनाडा की टीम अपनी सरजमीन पर है, अपने फैंस के सामने ये लोग जीतना चाहेंगे और आगे आत्मविश्वास के साथ बढ़ना चाहेंगे।
1: विदेश की खबरों में ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ का कहना है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने का समझौता किसी दबाव या जबरदस्ती का परिणाम नहीं था। इसराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि सेना लेबनान से पीछे नहीं हटेगी, भले ही अमेरिका ऐसा करने की मांग करे। भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 131 व्यक्तियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया।
2: भारतीय सिनेमा, संगीत और खेल जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियों को इस वर्ष पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिग्गज अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके दीर्घ और उल्लेखनीय योगदान को इस सम्मान के माध्यम से राष्ट्रीय मान्यता दी गई। प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय क्रिकेट के प्रमुख चेहरों में शामिल रोहित शर्मा को खेल जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया। अभिनेता आर माधवन भी उन विशिष्ट व्यक्तियों में शामिल रहे जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। पद्म अवार्ड्स केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का सम्मान नहीं है, वे उन व्यक्तियों के लिए भारत की कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने अपने कार्य, प्रतिभा और समर्पण के माध्यम से समाज, संस्कृति और देश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। इन सम्मानों के जरिए भारत सरकार ये संदेश देती है कि उत्कृष्टता, सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान सर्वोच्च स्तर पर मान्यता दी जाती है।
1: और अब आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल याचना मिश्रा के साथ।
3: मस्करींस के दक्षिण दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण से हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को आसमान साफ रहेगा, कल सुबह देश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों तथा सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, कहीं कहीं पर कोहरा छाया रहेगा जिस कारण से विजिबिलिटी भी कम होगी। दोपहर बाद पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, कोहरा छाया रहेगा खासकर ऊंचाइयों पर। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समंदर तथा लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 और अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 7:45 बजे और शाम को सूर्यास्त 5:39 पर होगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम शिव को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:23 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

लीजिए शोक समाचार सुनिए। एक्स एयरपोर्ट रोड प्लानमानियों में 90 साल की 90 इयर्स ओल्ड की श्रीमती देवलतिया लुकमन, पैदाइशी नाम बिरिज और जो बाबुई नाम से भी जानी जाती

Hati Munauti Dasarat, Paidaishi Naam Ramphal, और जो बिदरा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं, वे सर्विया जिलनी स्ट्रीट रेजिडेंस सोकोजी लॉज काट्रोबोन रहती थी। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे लाशापेल और दोंतेरियन संसरा रोड बोबासन से उठाकर अली ब्रियन कास्टेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

सीबी अपनी ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मौसलमा तेरासिन, मौसलमा लेडी बॉकली, सुयाक और NHDC तेरासिन में कल गुरुवार 25 जून को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक, और गुरुवार 25 जून दिन के 12:30 बजे से लेकर दोपहर के 4:30 बजे तक रू रिजर्वोआर ग्रांबे, रूट रॉयल और रूट कोस्टल पॉइंटो कानूनिया में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और गुरुवार 25 जून को सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम के 5:00 बजे तक रिविये देजांगी और आसपास के इलाकों में मौसलमा लावानी, NHDC लावानी, कामोटे, फुटबॉल प्लेग्राउंड स्ट्रीट NHDC कामोटे और आसपास के इलाकों में जैसे कि रूट रॉयल B8, ला बाराक रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो कल गुरुवार 25 जून को 2026 सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम के 5:00 बजे तक रिविया डेजांगी में और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मौसलमा लावानी, NHDC लावानी, कामोटें, फुटबॉल प्लेग्राउंड स्ट्रीट NHDC कामोटें और आसपास के इलाकों में जैसे कि रूट रॉयल B8 ला बाराक रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतज़ाम करने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार्थ प्रकाश प्रचार मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में इन इन स्थानों में यज्ञ और प्रवचन का आयोजन किया गया है। गुरुवार 25 जून को

वाशरी आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 3 शाम के 5 बजे, विदानंद भगवान कुटेज ब्रांच शाखा नंबर 7 शाम के 5:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, और वेद माता मंदिर पृथ्वीपा के मोताई ब्लाउंस शाखा नंबर 22 और शाम के 5 बजे से लेकर रात्रि के 7:30 बजे तक। सत्यार प्रकाश के मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस गुरुवार 25 जून को फुलबासिया आश्रम शिमेग्रेन्य में दोपहर के 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यर प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

Cause she

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: श्रोताओं आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। समस्त सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में हम चलाएंगे चैन्य भक्ति गीत। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं भगवान गणेश का नाम लेकर। तो चलिए, कहते हैं ना, जिस हृदय में प्रभु का वास होता है यहाँ भय नहीं केवल विश्वास और प्रेम का प्रकाश होता है। तो इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

बजरे प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। श्रोताओं, कहते हैं सच्ची भक्ति मन को शांति और आत्मा को संतोष देती है। अच्छे कर्म ही प्रभु की सच्ची पूजा है। प्रेम, दया और सेवा से जीवन में दिव्यता का अनुभव होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं। चन्न भक्ति गान आपकी सेवा में।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम आपकी सेवा में। प्रभु का स्मरण मन को शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देता है, तब उसके भीतर दया, विनम्रता, क्षमा और सेवा जैसे गुण विकसित होने लगते हैं।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम और अच्छे कर्मों में भी दिखाई देती है। तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारी तकनीकी सहायिका अंजू को धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

अल्लाह हमारे घरों को खैर बरकत वाले बना दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों को हिदायत और तकवा वाले घर बना दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों को पर्दापोशी और हिफाजत वाले घर बना दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों को खुशी और मुसर्रत वाले घर बना दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों को मगफरत और रहमत वाले घर बना दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों को इत्मीनान और सुकून वाले घर बना दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों को कामयाबी और फलाह वाले घर बना दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों को तस्बीह और इस्तग़फ़ार वाले घर बना दे। आमीन। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार।

0: संगते लोग घड़ी मिला ये बखत रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुनत एमबीसी रेडियो रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस
1: कंटीन्यूअस म्यूजिक
2: 819 किलोहर्ट्ज़ दिस इज रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस
3: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
0: सब संगतियालों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हर मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस के फ्रीक्वेंस 719 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो मनोरंजन 94.95 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है बुधवार की रात, बुधवार 24 जून 2026। जून महीना थोड़ा सुन दिक्कत नहीं, देरी कराता जाए कि हाली हाली नहीं जाता। और बोला तो संगत यार लोग लेता हूँ कैसे अलग बात लोग लगे मौसम कैसे बात धीरे बता बाप हाई कहते ठंडा कराता भैया हड्डी हड्डी में ठंडा हिलाता का कर भैया सर्दी के महीना बात है मौसम ऐसे ही रही तो लोग अपन गर्मा गर्म कपड़ा पहन ले रही जा। और हमने के साथ दिया बोझ बोचर का प्रोग्राम अभी से लेके रात के 9 बजे ले अभी से लेके रात के 11 बजे ले मुँह फुला गई दिख रहा ना। शाम के 6 बजे से 9 बजे रेडी सर रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर नई सोच जिनों की आवाज़। और अब है भोजपुरी तड़का अभी से लेके रात के 11 बजे ले थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमैया क्या जगह दे विद जगह विद सैंक या फिर यहाँ पर टिकटॉक पेज पर हमने के दिखा था वजह तो यहाँ पर सकब अपन मिसाज टाइप करे याद रखे प्रोग्राम चलाता लाइव टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर जहाँ पर हमने के दिखा था वजह और रेडियो मॉरिशस पर सुना था वजह रेडियो मनोरंजन पर भी। तो पहल का गाना जोली छोकरी से प्यार कर हीरा कुणाल हिरीलाल ये भोजपुरी के राजा हवन है। गीत चली वनीस वनीषा खातिर साथ में नीटू बुटू खातिर फिर वीर बहादुर रवि सुकना और है गीत चली प्रतिमा खातिर लकी वुमन साथ में रू आदर्श बिहारी गंगा दीन मनीष वर्षा दुर्गा श्रेष्ठ दशरथ पटेल तेज सुनातन सुभावती हीर बबीता अंबर लामा सिलवाना और भी और संगतिया लोग कादेर भगालू है गीत हो खातिर जोंगो सुमन करिश्मा और गीत चली सुनीति सहाय बीना भी बीना के प्रोग्राम बड़ी अच्छा लगता है वो खूब नाचता से कमरवा डुलावता रेखा रामा नमस्ते जी है गीत तोहर नाम सुनील अमृत है गीत तोहर नाम चलाओ जा

Angelia 123 hai ki toro khatir bariba Akshay Kanai ji hai ki toro naam thar sab parivar khatir Shashi ji hai ki toro khatir Madira Vishal Manda Bitli se awan hello Vishal bhai ye hai ki toro khatir Suraj Bimal Salman Shabniz Veer aur Ritish Uzir Fauzi chala sab radio marshals aur रेडियो मनोरंजन के संगतिया लोके नाम पहल का गाना और बोलते हैं कि प्रोग्राम में केवल गीत नहीं चली बॉलीवुड न्यूज़ कहानी नाटक चुटकुला ढेर कुछ जानना ही था ये प्रोग्राम में अभी से लेके रात के 11 बजे ली तो दुलार दुलार परिवार के नाम भी अगला गीत चली साथ में एक लोकांचो गीत हरो नाम सिंधी रमेश सुबोनी रोशनी तो जितना कोई अभी उनके टिकटॉक पेज पर दिखा था रेडियो मोशस के और रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर सुनाता था गीत लोग के नाम जोली छोकरी से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जीला कैसे बदला बोके गीतवा गेले हवन कुणाल हिरीलाल

सुनने में आ गया कि अलका याग्निक के स्वास्थ्य आजकल उतना ठीक नहीं बा। अलका याग्निक भारत के जो है बॉलीवुड सिंगर, ढेर फिल्म में गीत गए लेवन, पर गलासौते आजकल उतना अच्छा नहीं बा और थोड़ा बीमार रहन। धीरे धीरे थोड़ा रिकवर हुआ था और कल नई दिल्ली में उगा रहल ओकरा मिलल बा पद्म भूषण अवार्ड। यस, ये मिलालो के प्रेसिडेंट के हाथ, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कर हाथ द्वारा करकर कमलों द्वारा अलका याग्निक के ई पद्म भूषण अवार्ड देवल गल बा। और बोलल जा रहा, मानल जा रहा कि जो पद्म भूषण अवार्ड है एगो बहुत ही बढ़िया अवार्ड है, जो आक्टर एक्ट्रेस के मिलेगा या कोनो व्यक्ति जो बड़ा काम कैला भारत में तब लोग के मिला पद्म भूषण अवार्ड। क्या बात है। सो कंग्रेचुलेशन अलका याग्निक जी, और अलका याग्निक के स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं बा, प्रार्थना करब से कि स्वास्थ्य ठीक हो जाए बहुत जल्द। सो सकब यूट्यूब पर टाइप करके देखे अलका याग्निक रिसीविंग पद्म भूषण अवार्ड इन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। और द्रौपदी मुर्मू आर एल मॉरिशस संघ के याद बा, और बेशक ओकरे कर कमलों द्वारा अलका याग्निक के पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त होल बा। रात के 9:12 और अगला गीत सजनिया आजीश ठाकुर प्रसाद गीत वा गेले, वन गीत चावती सा योगेश राम प्रसाद के नाम, फिर सरबर देवयानी सुका सलीमा, और है ये गीतवा चुन है प्रवीण बुधन के नाम, वैष्णा रामबर क्लोदेल जाक पी एम के साधे उथन, शंकर थापा मीता राम खिलावन और प्रतिमा तीना दीना गीत और खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ, और रीता भी रीता सितालू साधे उथन गीत कर बेटा शैलेश बेटा शैलन बहुरानी बहु रेशमा, फिर पोती अनुष्का परी और सब कर परिवार के नाम, और वीर बुधू जी हमने के साथ देवतन सलोनी गया दिन गीत और नाम बहुत बहुत प्यार के साथ। और जितना कोई खुशी रह गीत सुने के सजन न्याय गीत तलो के नाम आदेश ठाकुर प्रसाद की जुबानी

आजकल देखा जैसे ढेर कोई की सर्दी खांसी जुकाम होता तो ये सब बच्चे खातिर चैनल तो ढेर मना विटामिन से खाए के जैसे कि मौदागिन बा बंगसाई बा व्यागामुद बा ये सब के प्रयोग करके अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और ग्लासे उसे नहीं पिया अभी खातिर खाए के बढ़िया ठंडा करता आजकल। और रात के 9:17 हुआ था और बेशक हमी तुल के साथ देवते रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर रात के 11 बजे रही। और अगला गीत है ललिता पुनीत की गावल हमर हमरो ससुरवा और एक गीत चली रूपचंद मिर्जा खातिर आसिया बुधू और दंगली दाही थे तो और नाम भी संजय बिहारी गीत और कहते तो और पत्नी तो और सब परिवार के नाम सत्यम सुबोल इमानुएल लॉन्गचिल एसएसएस में बैग से वन है गीत और कहते तो और सब परिवार के नाम। और जयान कैसे वह भाई जी जयान गीत और कहते तो सब परिवार के लिए रिहाना हवन फिनिक्स से नतोदाम से रिहाना और सब रिहाना के ऊपर परिवार के नाम है गीत चली नंदिता है गीत और नाम बहुत बहुत प्यार के साथ हमरो ससुरवा अब की कर ससुर के कौन सी बोल चले एक साथ सुने ललिता पुनीत की आवाज़ में

0: एक से एक बढ़िया भोजपुर गीत तलो के मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर। अगला गीत सुमन के गमत गीतों चलाते थे विषम गंगा दिन खातिर चांदो दादी खातिर श्रियान खातिर गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ कृष्णा थारू गीत और नाम रूपचंद मिर्धा गीत और खातिर और दादी चांदू बड़ा जोर नाचता अपनी के संगे संगे पामेला खातिर भी गीत चली बाबूला शीला राम बिचन लो दे गीत और नाम राम तुलसा एल बीसा बारीमत गीत और खातिर जानी क्यूचिगल हेमा दया प्रीतिशा अमीशा धन बहादुर और जी के नाम भी बहुत बहुत प्यार से गीत चलावत साधना भी हमने के देखा था वन और सुना था वन बहुत बहुत प्यार से बतन प्रताप जी प्रोग्राम एकदम चकाचकबा मंगल सुरेंद्र जी है गीत और खातिर करिश्मा रामचाल मंगल सुरेंद्र देव है गीत और नाम एस एस बी एम के साथ देवतावन प्यार से सुना था वन जा बहुत बहुत धन्यवाद अंजल बीना गीत और नाम राजमन्ना जी हमने के साथ देवतावन राजमन्ना जी गीत और खातिर चिबुग लोंग राजा और प्रवीण भैरव स्टीव और सब परिवार लोग हमने के साथ देवतावन सरोज बूबन जी है गीत और नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और हाँ रूपचंद मिर्धा बोलते ने को नेपाली सॉन्ग नहीं भोजपुरी प्रोग्राम है ये नाम बा भोजपुरी तड़का ध्यान से सुनिए जा प्रोग्राम कैसे है प्रोग्राम ई है कि थोड़ा अच्छा भोजपुरी गीत मांगे कि नेपाली सॉन्ग कैसे चली बोलता है एगो संगतिया बा लाइन पर कैसे मिल जा हेलो जी नमस्ते के हवा जा
1: कल्याणी
0: तो स्वागत बा कल्याणी कैसे समाचार ठीक ठाक
1: धन्यवाद जितना तेल उतना आचार
0: अब कौन कौन सी के आचार पीमा के आचार आम के आचार
1: अब कैसे हो
0: हम ठीक हैं तू कैसे हो
1: जी
0: और अगला
1: एक गाना मांग
0: हाँ बोला
1: मांगना चाहती
0: हूँ
1: बरकी मसाला पिसेला
0: था सुन गा दम नहीं खातिर
1: नहीं जाने रहा के गाय का कहीं
0: आले पाफ़ने बरकी मसाला पीसेला ना
1: बरकी मसाला पीसेला
0: और छोटकी
1: रहा देखेला
0: हम तो छोटकी नाचेला
1: नहीं मैं छोटकी हूँ वो बरकी है
0: अब आले बोला गीत क्या कर खातिर
1: ये गाना मेरे लिए मेरे दोस्त के लिए और सभी सुनने वालों को भी आपको भी
0: अभी कितना बज रहे रात के 11 बज रहे उनके साथ दिया जा
1: जी जी और मेरी भगिनी गायत्री के लिए सब हदम ये
0: कहाँ रहे गायत्री कहाँ रहे
1: गायत्री जो नुवेर फ्रांस रहती है उसके बेटे अजय के लिए
0: ओके जी तो जरूर चलाओ अब जा
1: अच्छा जी
0: ओके
1: शुभ रात्रि
0: शुभ रात्रि तो और बोलते जा और बेशक दमन अपी गादू हमने के देखा था वन लाइव टिकटॉक पर कैसे भैया प्रोग्राम अच्छा बुझाता ना मन करता नाचे के तो सुमन के गमट और बरकी मसाला पिसेला बैक टू बैक डू गाना चला अब सर हाई की तो चली सुरेंद्र मंगल देव कुमार के नाम साथ में अमीर खान जो नवन गीत सुने खोता तो चल एक साथ सुने गीत दो गीत बैक टू बैक एगो रही सुमन के गमट और दूसरा रही बरकी मसाला पिसेला

बड़की मसाला पीसेला, छोटकी भी काम करेला और देर को हमने के साथ जो होता भी रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और हमने के टिकटॉक पेज और रेडियो मॉरिशस पर भी देर को हमने के साथ जो होता तब हमने तलो के सुनाओ जाए एगो कहानी सापेरों रोज है गीत सुन ले ना हाँ तो आगे के जमाना में रह लेगी जो कहानी देखो छोकरी रहल को नाम रहा सापेरों रोज तो अपन दादी के बड़ी खुशी रहे तो एक दिन ओकर दादी बीमार पड़ गल तो ओकर माँ सापे अंगूज के बोले तो बेटी एगो एगो पैया में गाटू तो दलक बा और बोलक भाई दादी के जाके दिए दादी बीमार बा तो सापे अंगूज जन है एगो लाल लुगा पहन लगे वैसे जोड़ी रखेला तो वो जंगल के सीमा में जाता तो जब जंगल के सीमा में जाता तो वहाँ एकाएक लेलू चला तब लेलू के देख के छोकरिया डर गल तो छोकरिया बोलता लेलू बोलता कहाँ जाते हुए तो साफे अंगूज बोले जाते हैं मर दादी लगी बोले चल दादी कहाँ बोले हाउ देख हाउ जो घरवा बना वहाँ पर जो बरता पीछे नाली में आओ वहाँ पर मर दादी रहेला हम जाते हैं बीमार बा हम जाते हैं एक बार खातिर गाते छोरे तो साफे बोले जा जा मर लेका ए तब मर लेका बस लेलू का कर लग लेलू वहाँ से इतना जोर भागल वो कहाँ घर उ घर दादी लगे वहाँ जाके का कर लग वहाँ जाके उ दादी के खा ले लग अब दादी के कपड़ा पहन के लीली में अनोजे और बार तो सापे अंगूज गते गते चुकरिया जाता गते गते गते गते गल वहाँ पर ही तो लाफो तापे करता तब बोला था लाभवा जो लेलू पर लाभवा समझे करके बोला था के हे बता सापे अंगूज हैं हो तो हर नातीन तो बोले आओ आओ भीतर और जब सापे अंगूज भीतर गए तो देखा था दादी के लीली में तो दादी के थोड़ा थोड़ा दौड़ लौकता बड़ा बड़ा आँख लंबा लंबा दांत लंबा लंबा नाखून तब बोला था दादी दादी तोहरों कहे इतना बड़ा बड़ा बा बोले तो के देखे खातिर बेटी तब बोलता दादी दादी तोहर कान कहे इतना बड़ा बा बोले तो के सुने खातिर बेटी तब बोले दादी दादी तोहर दांत कहे इतना बड़ा बा जैसे उसे बोललक तो बोले तोरा खाए खातिर तब लेलू तब झपटलक सापे अंगूज पर और सापे अंगूज के खा लेलक खा

मतलब मुख्य आवाली कर दिलक सालू कर दिलक अब का होल तो वहाँ पर एगो शास्य रहल एगो हंटर तो उधर से गुजरतल तो वही सब तमाशा सुनलक जब तमाशा सुनलक तो आल वहाँ पर घरवा में हिलल तो का कहल लीलू के पेट काट के निकालेला साफे वहाँ घुस कर ओकर दादी के तब पेटवा में होश डाल के सी देवेला और लीलू जब उठेला तो के बुझा ओकर पेट ढेर भारी बा गति गति जाला जैसे जाला एगो नदी के पास और नदी में गिर जाला तो लीलू मर जाला और साफे वहाँ घुस अपन दादी संगे जोन है वहाँ पर कहानी वहीं खत्म होला तो है जोन कहानी है साफे वहाँ घुस ये छोटा सा हमने सुन नहीं सा और आजकल के लड़का लोग के भी हमने इच्छा बताया कि एगो बहुत ही सुंदर कहानी है कैसे एगो लड़का अपन दादी के जाला दिखे और ओकर खातिर अपन जान जोखिम में डाल के जाला तो कहानी के बाद अब सुनब चाहे एगो गाना गिरीश रूपचंद गीत गेले वन तो हर जवानी अर गीत श्रवण बुजैल के नाम ज्ञान श्याम गीत हो नाम फिनाज विनोद भंडारी ये गीत हो खातिर अशिता गीत हो नाम तेजू इम्तियाज प्रभु सिंह संतोष राय है गीत हो खातिर शंभू और दाविस गीत हो खातिर बेफिक्र बॉयज लुकमान खान और जितना कोई अभी हमने के देखा था और सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मोशस पर गीत लोग के नाम तो हर जवानी

जिंदगी में सब समय एक समान नहीं रहेगा, कभी कभू तो समय अच्छा रहेगा तो दिखेगा सब कुछ अच्छा जाला, पर कभी कभू समय जब बुरा जाला तो सब कुछ बुरा लगेगा, हाँ कि नहीं। अगला गीत पूर्णिमा फकीरा खातिर चला गीत, गीत मंगलेवन करुणा और एगो संगतिया मंगलेवन गीत भी भाई भाग गल कसिया लबाकार सितुर की बसंत सुपोल के आवाज़ में। चला क्रिएशन खातिर गीत संध्या कैसे व समाचार श्रवण वुजैल गीत हो खातिर लक्ष्मण बिस्ता नजीर बिहारी बहुत बहुत प्यार से गीत और खातिर चली भागल खसिया लबकार सितुर की इंदिरा खातिर वे गीत इंदिरा लौतन गीत हो खातिर ओके स्वस्ति की ओर से गीत चली कर सब परिवार के लिए भागल खसिया लबकार सितुर के भागल खसिया लबकार सितुर के अब लबकार सितुर के अरे खांसी कहाँ भागता बाबा स्वस्ति देखिए खांसिया थोड़ गए थे क्योंकि बांध के रखिए प्रताप अभी आवा तो के ले जाए उमा दर्शन भी बड़ा जोर नाचा था उनके संगे हाय शिनी है गीत और नाम चली बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना को ये भी सुना था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन है गीत तो लोग के नाम बसंत सुपोल की आवाज़ में भागल खसिया लबकर सितूर के

वर्ल्ड कप फीफा 2026 के आज कल को नशा सबको पल चढ़ रहा बा, छोटा से लेके जवान ले, जवान से लेके बुढ़ा ले, सब कोई लेके खोज कौन पे क्वालिफाई हुई और फिनाल में जाई। और कल 26 जून के कौन कौन मैच खेला जाए फीफा वर्ल्ड कप 2026, कल गुरुवार कल बीफे की मैच खेला जाए, नॉर्वे अगेन फ्रांस, फिर सेनेगल इराक के खिलाफ खेली, उरुग्वे स्पेन, फिर कप वर्ल्ड राउडी सऊदी अरब, न्यूजीलैंड बेल्जियम और मिस्र ईरान। और कई बजे सब मैच खेला जाए कल, नॉर्वे अगेंस्ट फ्रांस कल दिन के रात के 11 बजे कल, और सेनेगल और इराक रात के 11 बजे खेली मैच, उरुग्वे और स्पेन फजीर के चार बजे, कुवैत और सऊदी अरेबिया फजीर के 4 बजे, न्यूजीलैंड और बेल्जियम फजीर के 7 बजे, और नहीं 26 जून के दो मैच रही, एगो है नॉर्वे अगेंस्ट फ्रांस रात के 11 बजे, फिर 26 जून के सेनेगल और इराक रात के 11 बजे, 26 जून के रही उरुग्वे और स्पेन फजीर के 4 बजे, कुवैत और सऊदी अरेबिया 26 जून के फजीर के 4 बजे, न्यूजीलैंड और बेल्जियम 26 जून फजीर के 7 बजे, और मिस्र और ईरान खेली 26 जून के फजीर के 7 बजे। और अब ज़रा

0: बचाव अब जाके ये सब जो मैच हुआ था और इतना पे भाग ले हुआ था तो जो है एक में ढेर पैसा है बेसियर बा और दुनिया भर से जो है एक में स्पोर्ट्स एथलीट फुटबॉल लोग भाग ले हुआ था तो जो है बहुत खुशी की बात है कि दुनिया भर से सब कोई देशवन लोग भाग ले हुआ था और है जो वर्ल्ड कप है ये कर जो नशा है ये सब कोई पर छाल रहेला और बेशक जैसे बोल दी सक है जो वर्ल्ड कप है तय कर में ढेर कोई खुशी नहीं रहा देखे कि स्वीप करे कि ढेर कोई मौका मिलेगा तो लोग जालन से देखे भी जहाँ पर ही हुआ था हों कि नहीं है और बेशक है जो मैच है तो जब ढेर बना पे ही भाग ले मिला और ढेर कोई सब मैच स्वीप कराता पर लेता ऊँच है अब ढेर कोई काम करे जालन से तो लेता नहीं मिलेला पर जब शांत के आवलन से तो लोग दिखेलन सा और सब कोई बबी यही बात बोला था कि पे ही पुगाई सा खूब जी मोन ला जो फीफा डिबिल बैंसी सब जो स्वर्ण थी है के मिली तो कोई बोलता लाफ्रांस कोई बोलता ऑस्ट्रेली कोई बोलता अंग्लिते कोई बोलता कनाडा तो अभी कोई नहीं जन लगभग कहे कि अभी 11 जून के शुरू हुआ जिसने ज्वेत लेक चली तो जिसने ज्वेत के पता चल जाए कि कौन पे ही शॉम्पियो निकाली तो सबको अपन पे ही के वोटिंग करता तो हम नहीं चल अगला गीत सुनब जा राजकुमार चिंतामणि गई लेवन की तू ही हमार दिल तू ही हमार जिगर हुआ है गीत तो हम चला होती सर सोनिया के और शेखर माता जी खातिर है गीत चली अश्वन के और शेखर पत्नी कर दुगो बेटी और सब परिवार के नाम और है गीत तो हमने चला होती स रोशन की ओर से कर पत्नी कड्डू बेटा और सब आगा बहन परिवार के नाम और अभी को संगता बाल लाइन पे ओकर से मिले जा हेलो नमस्ते हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते प्रताप जी
0: के हवा जा
1: दीदीमती
0: सुयाक से
1: हाँ
0: कैसे समाचार दादी
1: समाचार सब ठीक है
0: तूने देखा तो फुटबॉल
1: हाँ नहीं फुटबॉल राजू सुनीला
0: राजू
1: सुनीला राजू सुनीला
0: आर कौन आज कौन बम मिनी पकेला बोला था चाची
1: आज तो लासू बोल बा लासू
0: ए ताकेले अकेले लासू बा खा लेला
1: लासू खा लेली अकेले अकेले सब ले गिम डाल के
0: ए ता
1: लासू बनर बा रोटी संगे खाई
0: तोर तोर बगल बड़ी ठंडा दादी इससे
1: ठंडा कर रहा था बहुत ठंडा हुआ था बहुत ठंडा पालतू डाल के कूलर डाल के पुलु डाल के सब सही सूते के पुएट लेके होड़ के
0: बड़ी ठंडा
1: बहुत ठंडा
0: और अगला गीत चाची के घर खातिर
1: हाँ डाल दिया अच्छी के गीत वहाँ भोजपुरी गाना अच्छी के आवल गीत है माँ आओ आयो भुला जाते हैं ना नमुआ अच्छी भोज
0: बाप दादा लोग के बोली है भोजपुरी भाषा
1: देखा तो है ना बतियाला बतियाला
0: ना ये चाची हम तो हमेशा याद रखिला
1: डाल दिया है गीत हम कहते सब परिवार लोग कहते संजमुनी परिवार और सुजा के लिस्कालिये के मोहित परिवार सब कहते डाल दिया और आपके लिए भी और आपके टीम के लिए भी गीत चला देना
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद दादी
1: मुझे सुनने के लिए आपको भी
0: ओके शुभ रात्रि
1: शुभ रात्रि आपको
0: अरे बाय बाय चाची ललिता कुशल हुवन त्रियोले से चाचा आत्माराम सब कलकतिया परिवार के नाम सब हर को परिवार के नाम जो नहलन त्रियोले और लाफ्लोगा से शालिनी हीरू हमने के साथ देवतन का पति बा विशाल कड्डू को बेटी और सब हीरू परिवार के नाम अगला गीत चली और है गीत तो हमने चलाते सब बैन की ओर से वानिसा के नाम और गीत चली साइलेंट और हिरीश के नाम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स अवन सर और हमेशा एक दूसरे के साथ देवलन सर जिगरी दोस्त साइलेंट की ओर से कर दोस्त जिगरी दोस्त लंगोटिया यार हिरीश के नाम बाप दादा लोग के बोली

0: बाप दादा लोग की बोली है भोजपुरी भाषा बेशक। और रात के 10:09 होता, तू सुना तो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन, तो लोग के पसंदीदा प्रोग्राम चला था भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
2: भोजपुरी तड़का प्रोग्राम चलाता है रात के 10:10 पर। अभी 11 बजे रितलो के साथ रही और ये प्रोग्राम जारी बा जहाँ पर एक से एक चकाचक भोजपुरी गीत चलाए जैसे तो लोग के पसंद पर का जगह देवी जगह विद सैंग पर फोन कॉल्स या फिर हमने के टिकटॉक पेज पर अपन तेज का सक बजा भेजे जोश में आके आगे पीछे बहुत ही प्यारा सन गाना गीत चलाए। से पहले बता दे रहा कि आजकल हमने की जो अभिनेत्री है रेखा जी वो फिल्म में आजकल नज़र नहीं आवा था पर हाल ही में सुनाल बा कि आमिर खान के प्रोडक्शन बानर थली वेंसैंक कैमरान भी ऐसे रखल था वहाँ गरल और आमिर खान से बोलन कि उकरा मन बा आमिर खान संगे को फिल्म करे कि बहुत जल्द। तोरा बता दे रहा जाए कि रेखा जो है उकरा 71 हो बा पर ओके देखबा तो पार्ट कर जैसे जिस बीतों के छोकरे का है कि वो अपन अपन लाइफस्टाइल अपन डाइट फॉलो करेला मेडिटेशन प्राणायाम ये सब

और ढेर मना अर्टिस्ट लोग जैसे दिखब तो बुझेरा लाज में चलन सब रेखा के दिखब भी ये लाज में तो बुलब जैसे कि वो भी जवान में बा तो रेखा जी अपन ब्यूटी पर ध्यान देवेला अपन ब्यूटी पार्लर जाला स्किन थेरापी सब फॉलो करेला ई खातिर जुन है उतना जरूरी लोग किरा तो जितना भी रेखा के फैंस के भी रात के देखता और सुनता तो बता दे जाए रेखा के मन बा आमिर खान संगे को फिल्म करे के और बहुत जल्द ये फिल्म जो है बनी ये फिल्म के डायरेक्शन करियन स्वयं आमिर खान साहब कब से जो फिल्म निकली आमिर खान और रेखा तक ऐसा चली कहे कि रेखा और आमिर खान कबू हीरे हीरोइन के रोल नहीं कर लेवन से एक साथ में हाँ कि नहीं तो अगला गाना चली अगला गाना है जोश में आके राजकमल चिंतामणि ग्यावल गीत है गीत चली क्यूटी गर्ल एंजल खतीर अफ्ताब हैदर ज़ेबिया तुराब गीता नेर नफीना अनु रुशिल दुमन वेनिता दिव्या दिशा सबरीना मर्दन लिया वीना जंदू बॉब हेमा संगीतन मरियम गुलामल आर्यान मीमा करण भवानिया है गीत चलाओ अपस खासम खास पूनम बंधु खतीर विशाल अक्षिति कविता लव बॉय शर्मिला मुथु आश विकी और है गीत चली दीश्वरी बिहारी जी के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ अक्षय साभवन और फिर वनीश्री बंधुआ कतिबा मंगर और सब संगत यारों के नाम जो अभी हमने के देखा था वन टिकटॉक पेज पर और जो हमने के सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर जोश में आके आगे पीछे चला गीता सुनब जा

अर्जुन दुनिया जलीजील हो रहा है इंडिया में एक दो में हो रहा और हमनी के देश नंबर वन निकल रहा सब इफ्रव में क्या बात है आली मोरिस ये पर गीत निकल रहा हूँ कि नहीं अब बोलब से कि समय की जो धारा है उसका साथ यहाँ चले कि क्या कि समय आगे बढ़ते जाता टिक टिक टिक टिक घड़ी की सुइयां इशारा करता कभी मॉरिशस में रात के 10:19 होलबा अभी 11 बजे हमने चलो के संगे संगे नाचब सा यगरा की टिक टिक टिक सुनबावती बिजमावती गीतवा के गेलक बा बिजमावती सांपत गए बा गीतवा माफ करिया गीता चाहते से विनय गणपत खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ जाजी खातिर कोदा दिन सलमा गीतोरो नाम फिरोजा और ही गीत चलाब से संगीता दसोई देवन नदी वाला आप हवन कनाडा में हमने के साथ देवत हवन बहुत बहुत प्यार से ओतवान एटवेल है गीत और खातिर अजीता सितोहल है गीत और नाम हाय फरजाना सलाम अलैकुम संजीवनी है गीत और खातिर जोवानी मिनेव वो भी हमने के साथ देवत हवन हमने की टिकटॉक पेज पर सो नेक्स्ट गाना फॉर यू अंजू मीता रोडियो है गीत और खातिर लोहा रोज फिर सर्वर और चेता कोई के लाइन नाम ही रहता तो बस हमने के टिकटॉक पर देखा था वह तक गीत थोड़ो नाम संध्या बुद्धराम जी है गीत थोड़ो नाम चली बहुत बहुत प्यार से टिक टिक बोला था घड़ी की सुइयां अब घड़ी की सुइयां कौन सी बोला था टिक टिक टिक टिक चल एक साथ सुने

समय जुना के चला चला फिर से नहीं आवेला भैया, समय बड़ा बलवान, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। कर्मन इंसान हुआ जुन समय के साथ चलेगा तो समय जाया नहीं करिया। अनिता पर तो अगला गीत तोहर खातिर और तोहर सब परिवार खातिर, लखन अश्मित हवन मेबक से, जी हाँ अपन मामा के याद करत हवन, अगर मामा रहलन और जे मधु और बहुत बरिस ले और जे मधु काम करलन के रेडियो पर संगी हिलरी से काम के याद बा हम और जे मधु। और बेशक एकदम जो जो प्रोग्राम करे पर अफसोस वो भगवान के प्यारा हो गल। त लखन अश्मित अपन मामा के याद करता और मामा के हमेशा याद करियन, कह के एगो माँ जो है वो हमेशा अपन लड़का के दिल में रहे रहो कि नहीं। तो अश्मित लखन बहुत ख्वाश और बोला तय का सका बोले बेटा दुनिया में सब कोई आ रही से सब कोई एक दिन परी जाए के दुनिया से का कब सस बारी बारी से हमियों के तू आए। पर चेहरा ढेर को आवाज है कि आज की दुनिया में और जो लड़का के माँ नहीं रहे हमने जानी ना सर बहुत कठिन बुझाला। पर का सकब जा करे भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं सकब सक रे अश्मित। तब बोश मामू तोरा ढेर मना प्यार भेजता हमार और से ढेर मना प्यार और आशीर्वाद भगवान करी तो अपनी व्यस्त निमन से पास हो के एगो निमन काम करब और तू बड़ा आदमी बनब। ई मामू तोरा दिल से आशीर्वाद देवता। इंदिरा हवन हेलो नमस्ते, दामिनी मिमी गीत और खातिर, अभिसन जी नमस्ते, अगला गीत और खातिर हमार दोस्त मच्छी मार और ये गीत चाहते इस जी हाँ वंदना खातिर, वंदना बहुत प्यार से हमने के देखा था सुना था वन। ईसा पोलो भी हवन, शाया फिर इरफान खान, गियोम और स्वेनाल स्वेनाल तिलक कैसे समाचार है गीत तोहरों नाम तोहर सब स्टूडेंट्स तोहर तू एगो अध्यापिका हो कॉलेज में पढ़ावे ला तो है गीत तोहर खातिर तोहर कॉलेज लोग के नाम तो लोग तोहर स्टूडेंट्स के नाम भी। अर्जुन शंकर है गीत तोहर खातिर, रेशमा भी हमने के साथ देवत हवन और जहाँ ले हमने की आवाज़ पहुँचा था और जहाँ ले हमने की टिकटॉक पेज पर सब कोई हमने की फॉलो करा था तो है गीत तोहर खातिर। राजेश उगर है गीत तोहरों नाम चली, हमार दोस्त मच्छी मार। ये मच्छी मार जो है ये मच्छी मरवा लोग फजीर के ढेर बोनेरे जा रहा कहते हम लीवे है बा कहते हम कौन सी फजीर के बोनेरे एक बजे दो बजे बातों लेके चल जा रहा सा लामेर में मच्छी खोजे और दिन भर मच्छी बेचे रहन सा अपन पेट पाले रहन सा अपन परिवार के देखभाल करे रहन सा। अखिलेश हरंगी है गीत तोहरों खातिर, अनिता प्रताप है गीत तोहरों नाम और जितना कोई अभी रात के काम करता है बोलते सब बों कुआज अभी लेकर लोग रिविजन करता होमवर्क करते वन सा रिविजन करते वन सा देखो यूनिवर्सिटी के काम करता या स्कूल कॉलेज के काम तो बस बों कुआज बोला था और चला

अगेटत सब कोई खातिर मेरे दोस्त मच्छी मार। गीतों गेले वन सुनानो यान।

रात के 10 बज के आधा हुआ था। तू सुना तो चकाचक प्रोग्राम भोजपुरी तड़का रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। अगला गीत नया सिरे लखन अश्मीत, थोड़ा गीत बड़ी पसंद पड़ता, थोड़ा मन करता सुने के। तो बेटा गीत बहुत बहुत प्यार मामू की ओर से तोहर खातिर। कितना हम निको सी रली सा दिख ले आज छोटा छोटी हुवत बा। और बेशक गीता तोहर खातिर सब लखन परिवार के नाम अश्मित और निमी बीम की शादी हुआ था। वन काजी संदेश ओके और साथ में है गीतो हमने चलाओ सा ओवन खातिर। फिर रिवियर डिजोंगी एसएसएस कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग के नाम। फिर आयान

0: प्रवेश जीतन और आशा खाती। तो चलो एक साथ सुने है गीत जुन है कितना हम निको सीरली सा है दिविका है गीत औरों का दे पूर्णिमा नत्यू है गीत तो नाम भूमि जय गोविंद है गीत औरों नाम चलावती सा और एको संगत या लाइन पे कर से मिलब जा हाँ तो जब लाइन में इतना बच्चे यह है नहीं कि टेलीफोन के टेलीफोन काट दे बजा बी केयरफुल। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी प्रेमिला जी नमस्ते।
1: नमस्ते
0: प्रेमिला काठमांडू से।
1: जी हाँ
0: हाँ कैसे समाचार।
1: समाचार थोड़ा ठीक थोड़ा
0: हाँ इतना चलते रहे ला इतना दुनिया के काम है ना।
1: कर रही थी।
0: और आज के दिन कैसे बीतल घर
1: आज के दिन
0: ही रहला गाँव घर रहला घूमे।
1: मैं घर ही रही जहाँ गंगा दशहरा रहला ना
0: आज पानी पानी रहल।
1: हाँ पानी पानी रह थोड़ा
0: आज पूजा रहल मंदिर में करल मंदिर में पूजा करे।
1: मंदिर के मालूम नहीं होने गई हो
0: घरे
1: घर
0: भी हाँ तो जहाँ भी जब भगवान तो चारों ओर माता जी कहूँ भी सब बैठ के पूजा करे। बोलो अगला गीत के कर खातिर।
1: हाँ है गीता दलिया फटी गई मरे साजन की
0: फट गई मोरे साजन की देवल सारी फट गई थी।
1: हाँ उधर 6 साल तो याद हो गए तो इसे मांगे थे
0: आरे आरे चला दियो अब से गीतवा।
1: तारीख के धर गरला तो इसे याद सब उनकर बेटा बेटी
0: और आजकल नहीं जाला कहूँ घूमे परिवार लोग गन लगे नहीं जाला सर नहीं।
1: हाँ जाइला जाइला परिवार मोताबा नहीं आवा था लेकिन परिवार बना मैंने
0: और सीनियर सिटीजन बगल से जाला सब पिकनिक के सब जाते हो जा
1: नहीं नहीं जाइला उतना
0: उतना लोग काजो नहीं मिली रहा।
1: अरे समय रामायण सत्संग में इस समय जाइला लेकिन पिकनिक का उतना नहीं मन लगेला जाए के
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं तगला गीत और खाती तो सब परिवार के लिए
1: हाँ
0: ओके।
1: सब परिवार एगो जितना लोग बीमार हो जाए अस्पताल में सबके लिए और सब कैसे बोली जितना लोग काम करत जा रात की भैया
0: सबको की बों को आज बुरा था।
1: हाँ बहुत खुआज उन लोग के भगवान
0: जी हाँ बहुत धन्यवाद। और शास्त्री बन माली है उनके साथ देवदन बहुत बहुत प्यार के साथ सुनीता राम फल जी सुनीता राम तोहल जी गीत और खतीर और कृष्णा गीत तोरो नाम चली बहुत बहुत प्यार के साथ। तो जैसे लखन अश्मित गीत मांगले रहा नया सिरे के तो गीतवा चला दे जा।

आज स्वास्थ्य के लिए के सबको ये जुनहर ढेर प्रकोशन लेवेरा का कि चिकनगुनिया बा डेंग बा लाफी बा ते सब बीमारी से बचे खातिर चहला अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दे के और खान पान पर टू ईट ए बैलेंस डाइट चाहे रोज के एग्जरसाइज करे के चहला समय खोज के नहीं बोलिए कि ठंडा करता तो एग्जरसाइज नहीं कर पा ये बात झूठा है। अक्षय कुमार खड़ा को शो में टीवी शो में बोले रहा कि व्यक्ति अगर थौंट में चाहे एक घंटा नहीं सके निकाले अपन लासौती खातिर तो कौन से अच्छी आदमियाँ जिया था तो लंबी आयु तक जिए जब हम की लासौती हमने की स्वास्थ्य अच्छा रही तब स्वास्थ्य अच्छा खातिर चाहला हमने की बैलेंस डाइट खाए के एगो मौ से गिरी भाई देशम हल एग्जरसाइज कसरत करे के ख्वाजम स्ट्रेस से दूर रह के चौथा है कि हमने की शरीर की चेना हमेशा एक्शन में रहे के मूवमेंट में रहे के तब हमने सबसे लंबी आयु की लंबी आयु हो। अब खाली खाइब पीब एग्जरसाइज नहीं करब कालोगी नहीं जरेब तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा रही है ये बोल जाता अगला गीतवा में स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा है गीतवा गैले हवन साहिल जगारू स्वास्थ्य जेकर अच्छा बा है गीत सूरज जद्दू खातिर बिना भैरव कद्दू को बेटा और हबी खातिर भी गीत चली है गीतवा चलाई सब मनीषा खातिर हाय मनीषा या है गीत तोरों खातिर जोसेफ भी हमके साथ देव तो क्लोविस लोगों है गीत तोरा नाम कैलाश स्था है गीत तोर खातिर पतोब संगीत दालिदा है गीत तोरों नाम आदर्श दयाल गास्पो जेसन हमके साथ देव तो गीत तोरों नाम केमशा हेलो है केमशा गीत तोरों नाम प्रकाश डांगी है गीत तोरों खातिर चली स्वास्थ्य जिकर अच्छा न न न न न न न किशन और केवा कृष्णा है गीत तोरों नाम चले साथ सुने स्वास्थ्य जिकर अच्छा बा

अब शादी की बात कर अब सर, कहे कि आजकल देखा रहे से ढेर कोई शादी नहीं खोजता करे कि शादी चाहे ना करे कि भैया शादी करवा तब ना परिवार आगे बढ़ी और परिवार में नया सदस्य लगाई और जब शादी की बात से सुख रह रहा गीत गवाए सामने के हड्डी दिवास की शादी लेंदी के चौथारी है गीतों बात चौथारी पर तो चौथारी में कौन चोला छोकरा जो छोकरा दुल्हा है वो अपन परिवार के लेके संगतिया करके जाला छोकरे के चौथारी करे और छोकरे के दिन के चौथारी होला खाना पीना मौज मस्ती और फिर में सांझ के छोकरा छोकरी के लेके अपन लगे वाला था सांझ के छोकरा लगे रिसेप्शन होला था ये बोला था माचे चौथारी की कहानी तू कौन सी में जाला जैसी हल्दी में शादी में कि चौथारी में बोला था तो गीतवा चौथारी वाला है गीतवा चली यादव खातिर बिन मुदा खातिर मोहम्मद खातिर दालिदा है गीतवा तोरो नाम विक सिपासन है गीत तोरो खातिर रजनी है गीत तोरो नाम मनीषा है गीत तोर नाम कविता झरी ये गाना आपके नाम भी राजू अहमद है गीत तोरो खातिर दालिदा डीजे दान भी उनके साथ होता है।

DJ Dan, Ryan Sahab, GRK है गीतरों नाम, सुभाष कांजा, मनोज और नुहवीन भानु, आदर्श दयाल है गीतरों नाम और है गाना कुमार बसर के नाम भी। चलो सुनो सर चौथारी की कहानी।

अब जरा बात कर सर पैसा के बारे में। आजकल दुनिया में पैसा के बड़ा मोल बा, कोनो भी देश में जी बट पैसा पैसा पैसा। अच्छा देव जी बोधन प्यार से गीतवा गए दे वन पैसा के बारे में, और ये पैसा नहीं रही।

तक कुछ नहीं भैया, थोड़ा मन करता है कुछ जोड़ी कपड़ा खरीदे के, थोड़ा मन करता है यूनिवर्सिटी जाए कि दूसर पे ही, तब पैसा चेहरा पूजा पाठ के सामान के वो भी पैसा चेहरा, तब पैसा जो है ओके हमने लक्ष्मी बोला सर। अब ढेर को बोला हाथ के मैल है, कोई बोला लक्ष्मी है, कोई बोलेला पैसा चेहरा चाहिए कि, कोई बोला पैसा से का हो, नहीं पैसा ज़रूरी है ऐ कार के कोई बीमार पड़ जाए परिवार में, तब पैसा नहीं रही था कैसे इलाज करब, बोला था तो पैसा के ओकर आदर करिया है, पैसा इस्तेमाल करिया जहाँ चेहरा करे के पैसा गास्पिए नहीं करिया। मान नबूती गैरा एगो कौन आशों बा तो कौन सी लेबे महीना के ऊ लिया, नहीं कि जहाँ देख रहा जोड़ी चीज़ तो लेके अपन काजी में डाल दे रहा, नहीं ई नहीं अच्छा है। जब तू जाता वह कहूँ पर शॉपिंग चेहरा करे कि हर महीना सब कुछ ज़्यादा शॉपिंग करे, आजकल महंगाई के ज़माना बाय फ्लाशों बा दुनिया भर में फ्री सब मोती होता है हम जानी ना सर, पर जब तू शॉपिंग करत हुआ तो एगो लालिश करिए जैसे दिमाग की ज़्यादा बाजार ले गिम किने, तो एगो लालिश में लिख दिया कि दूरी भर पुल जामुन, एक तिबर जारी कोतान, दूरी भर पियाज, आधा कार पीमा कुछ चेहरा, तो जब लालिशा करब सर तब पैसा ज़ाया नहीं करब। अब कौन पैसा निमन से इस्तेमाल करब तो बुरा समय में पैसा के काम आवेरा, हाँ कि नहीं। तो चल अब अगला गीत सुनब, जब पैसा के पीछे न भाग हो, गीत रेशमा खातिर रह लंतायाक भीम साहब भवन, गीत और नाम मांबा, गीत और खातिर शशिका राम सहाय, दिनेश हरी, फिर रेशमा हवन और स्कॉट साहब, फिर बिराही मगर, मिंता हवन कौच मिलते से सोनम गौर, और हई गीत हमने चलावते इस बिंदिया के नाम। चल एक साथ सुने पैसा के कौन मोल बा।

संगतिया लोग चंद्रदेव जी बोधन के गावल हई गीत के संगे पैसा के पीछे न भागो हो हई गीतवा के संगे भोजपुरी तरकार प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त हो जाए। रात के 11 बजे सुन बजा सुनने पर प्रोग्राम, सांझ के 6 बजे से अभी भी हमने के साथ रजा रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर। हमने के तो लोग मुलाकात हुई कल गुरुवार के कल बीफे के सांझ के 4 बजे से 5 बजे तो और से मिल अब जा रेडियो मनोरंजन पर। प्रोग्राम रही दिल से मिले दिल रोमांटिक गीतों की पेशकश। तो कल तक हमने की इजाजत दे और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सब कोई की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि बाय बाय।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जिंदगी के सफर में कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते, और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हर दौर में दिल को छू जाते हैं। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम, मैं हूँ आपका दोस्त जो साथ देने आ गई है इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल, जहाँ हर सुर के साथ जुड़ी है एक याद, एक एहसास, एक कहानी। तो चलिए लौट चलते हैं उस हसीन दौर में जहाँ बॉलीवुड के गीत दिलों पर राज करते थे।

चांदनी रात हो, हल्की सी हवा हो और साथ हो पुराने बॉलीवुड गानों का जादू, तो फिर क्या बात है दोस्तों। स्वागत है आप सभी के म्यूजिक लवर्स का इस खूबसूरत से शो में। और अगले कुछ एक घंटे के इस सफ़र में हम आपका हम सफ़र तो बन ही गए हैं, तब तक आप बस हमारा साथ दीजिए और एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत नगमों को।

हर गीत एक अफसाना है, हर सुर एक नया नजराना है, जो दिल में उतर जाए वही तो असली तराना है मेरी जान। बिल्कुल जी, शुरू तो हो चुकी है ये खूबसूरत सा शो, और जहां हर गाना आपको ले जाएगा यादों के खूबसूरत सफर पर। तो बस हमारे साथ ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स गेट बैक टू सम लवली मेमोरीज।

पुरानी यादों की खुशबू आज फिर हवाओं में घुलने वाली है, क्योंकि ये सुनहरे पल में हम ऐसे गिने चुने नगमे लेकर आए हैं जो सीधे आपके दिल पर राज करे। बिल्कुल जी, बॉलीवुड के वो अनमोल गीत जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और अगले नगमे को आप दिल से एंजॉय कीजिए।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया का जमाना था दोस्त, फिर भी मोहब्बत के पैगाम दिल तक पहुंच जाते थे। उन्हीं हसीन लम्हों को फिर से महसूस करने के लिए आपके लिए सुनहरे पल में हम कुछ बहुत ही प्यारे गिने चुने नगमे लेकर आए हैं। तो ये अगला नगमा खास कर आपके लिए, और आप उस इंसान को याद कर लीजिए जिनको आपने जिंदगी में सबसे पहला खत लिखा था, वो भी प्रेम पत्र।

फूलों की महक हो या बारिश की बूंदे, पुराने गीत हर मौसम को और भी हसीन बना देते हैं। हम हैं गिनिशा जो बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस, जहां हर गाना एक खूबसूरत तोहफा लगता है।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेश चतुर्थी से गुड बाय टू यू। उम्मीद करते हैं कि आपने हर एक गाने को दिल से एंजॉय किया। मिलेंगे फिर से एक और खूबसूरत से शो में, सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस, रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। आप हमें इजाजत दीजिए, आराम थोड़ा सा कर लीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: बारिश की चंद बूंदे पड़ी तो मची इस तरह धूम, सभी जवां दिल सभी हसी दिल।

0: दिलवाला दे दे प्रेम दे, दे दे प्रेम दे, प्रेम दे, प्रेम दे, दे दे प्रेम दे।
1: जा जा, ठाव है, तुझे तोड़ना तबड़ के बड़, आर नस्तिज ही बड़ बड़, तुझे तोड़ना तबड़ के बड़, आर नस्तिज ही बड़ बड़, नहीं खरी तुला कड़ कड़, चल हट जा माग बड़।
0: माझ्या काळजाला लागली कळ, पाहणी थेंब थेंब गळ हा।